पार्टी मिले। पहचाना, मेरा नाम है हलीमा, प्यार से लोग मुझे कहते हल्लो। तुम्हारा नाम क्या है? बाके हल्लो।

ऐसा ना, मेरा नाम है हलीमा, प्यार से लोग मुझे कहते हैं हलू। जब मैं पैदा हुई पूछो ना बात, ना दिन था ना रात, घड़ी के दो कांटे हुए, तभी एक ही कांटा नजर आ, ना इधर ना उधर, किसे थी खबर बड़ी होकर मैं क्या बनूं। फिर जब मैं बड़ी हुई मेरी चाल बदलने लगी, हाय जब मेरी कंबल लटकने लगी, ऐसे ऐसे मैं गली गली भटकने लगी। फिर एक दिन वो मिला, क्या नाम था माटी मिले का, हाँ महमूद मिला। फिर तो हातिम हातिम लल्लू लल्लू टेबू नजीर फकीर गब्बर सिंह।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन। आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ऐतिहासिक सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झक्कास रेडिओ स्टेशन पुणेरी आवाज ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा.
1: आप सुन रहे हो पुणेरी आवाज 107.8 FM. मैं हूँ RJ शिवप्रिया. आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर. श्रुति हो, मनुष्यों के जीवन में जब भी कठिनाइयां आती है तब मनुष्य परमात्मा से कहता है कि परमात्मा कृपा करो, संकट से निकालो. लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मैं तुमको संकट से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता हूं, उस रास्ते पर चलना तुम्हें ही है. परमात्मा कहते हैं तुम्हें सबसे पहले अपने आप पर कृपा करनी है. अगर हम परमात्मा के दिखाए रास्ते पर चले ही नहीं, सिर्फ कृपा मांगते रहे, तो हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती. भगवान के दिखाए हुए रास्तों पर हमें चलना है. सही राह दिखाना यही परमात्मा की कृपा है. लेकिन उस राह पर चले ही नहीं, सिर्फ कृपा मांगते रहे, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा. हम कृपा मांगने तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं, लेकिन हम खुद अपने साथ क्या करते हैं? कभी खुद पर खुद कृपा करने का हमने सोचा ही नहीं. बाहर वाले लोग हमारा इतना नुकसान नहीं कर सकते जितना हम अपना खुद का नुकसान करते हैं. सुबह से रात तक हम कितना अपने मन को निगेटिव व्यर्थ विचारों में बिजी करते हैं. भूतकाल में लोगों के व्यवहार कर्मों को देख देख कर जो मन में हमने घाव बनाए हैं, सोच सोच कर उस घाव को भरने की कोशिश ही नहीं करते. कई सालों तक उस घाव को खुदेड़ खुदेड़ कर याद करते रहते हैं और घाव ताजा करते रहते हैं. घायल रहने की जैसे आदत सी बन गई है. सुखों की बातें ज्यादा याद नहीं आती. किसी ने कभी दुख दिया वही बार बार क्यों याद आता है? क्योंकि हमने अपने मन के घावों को भरा ही नहीं. दुख देने वालों ने हमारा इतना नुकसान नहीं किया जितना हर बार अपने घावों को खुदेड़ कर याद कर हम बार बार दुखी होकर हमने अपना नुकसान कर लिया. दूसरे कैसा व्यवहार करेंगे ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह तो हमारे हाथ में है ना. दूसरों से प्यार से बात करने की उम्मीद रखने के बजाय अपने आप से ही प्यार से बात करने की उम्मीद रखी होती तो क्या हम दुखी होते? दूसरे हमसे अच्छा व्यवहार करें इस उम्मीद के बजाय क्या हमने अपने आप से अच्छा व्यवहार किया? दूसरे हमारे बारे में क्या बात करते हैं इस पर ध्यान ज्यादा आ जाता है. लेकिन मैं अपने बारे में क्या बात करती हूँ, क्या सोचती हूँ, दूसरों को जज करने में समझने में जिंदगी चली जाती है, लेकिन खुद को समझना भूल जाते हैं. दूसरों से अच्छी बातों की, व्यवहार की अपेक्षा के बजाय क्यों ना मैं अपने आप से अच्छी बातें करूं, अच्छा व्यवहार करूं. अपने को समझने में, अपनी कमी कमजोरी खत्म करने में समय लगाऊं, अपने आप को बेहतर बनाने में समय लगाया जाए. आज तक हमने ऐसा कुछ भी तो अपने साथ नहीं किया. सिर्फ अपने आप को याद दिलाते रहे कि दूसरों ने हमारे साथ क्या किया, लेकिन एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मैं अपने साथ क्या कर रही हूं? अपने मन के घावों को भरना, अपने मन में अच्छे संकल्पों को क्रिएट करना, दुनियावी बातों से मन को हटाना, निगेटिव व्यर्थ बातों से मन हटाकर सकारात्मक श्रेष्ठ बातों में मन को लगाना, अपने मन का सच्चा मित्र बनना, अपने मन की उदासी को दूर करने के लिए ज्ञान की अच्छी खुराक देना, बार बार मन को भूतकाल के दर्द में जाने से रोकना, वर्तमान में कुछ नवनिर्माण के काम में बिजी रखना, यही तो है ना अपने आप पर कृपा करना। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, बहुत से लोगों को एकांत में रहना बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि बाहर का शोर खत्म होते ही मन का शोर शुरू हो जाता है और हम अपने ही मन के शोर से दूर भागना चाहते हैं, इसीलिए एकांत हमें पसंद नहीं आता। लेकिन मन के शोर को दबाने से या बाहर की दुनिया में भटकाने से मन के घाव नहीं भरेंगे। जैसे ही एकांत मिलेगा ये फिर शोर करने लगेगा और तब तक करेगा जब तक हम इसके घाव नहीं भरते। मन के घाव भरते हैं परमात्मा के ज्ञान और परमात्मा के याद से। हम बार बार भूल जाते हैं कि हम कलयुग में हैं। कलयुग में सतयुग जैसा व्यवहार तो मिलेगा नहीं। गर्मियों में स्नोफॉल की उम्मीद करना बेकार है, गर्मी में गर्मी ही पड़ेगी। कलयुग में सभी बीमार हैं। बीमार लोगों से सतयुग के व्यवहार की अपेक्षा करना बेवकूफी है। कोई क्रोध के कीटाणु से बीमार है, कोई लोभ से बीमार है, कोई नफरत से बीमार है, कोई स्वार्थ के कीटाणु से बीमार है। किसी के अंदर ईर्ष्या के जर्म्स इतने फैल गए कि बेचारा वो खुद ही खुश नहीं रह पाता। किसी में काम वासना के कीटाणु है। अपने चारों ओर सिर्फ बीमार ही बीमार नजर आते हैं। किसी में भय के कीटाणु है, इनसिक्योरिटी के कीटाणु है। जब ये कीटाणु बढ़ जाते हैं तो वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करता है और हम परेशान होते हैं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, और दुखी होकर बार बार हर्ट होने की बीमारी हम खुद को दे देते हैं। बार बार दुखी होना यह भी भावनात्मक बीमारी का रूप लेता है। आजू बाजू सारे ही पेशेंट है, अगर हर एक के विकारों के कीटाणु हम देखने लगे और उसका चिंतन करने लगे तो यह कीटाणु हम में भी आएंगे और हम भी बीमार हो जाएंगे। ऐसे कलयुगी विकारी दुनिया में अपने आप को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? परमात्मा कहते हैं, बीमार लोगों को माफ कर दो, कमजोर लोगों को दुआ दो, इनके प्रति शुभ भावना रखो। सुनने के बाद थोड़ा मुश्किल तो लगता है कि जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया उन्हें माफ करना, दुआ देना, उनके प्रति शुभ भावना भी रखना। लेकिन परमात्मा ने हमें बीमारी से बचने का रास्ता बताया है। माफ नहीं करेंगे तो दुखी होते रहेंगे, दुआ नहीं देंगे तो बद्दुआ देकर खुद को भी बीमार करेंगे, शुभ भावना नहीं रखेंगे तो बदले की भावना रख खुद का भी नुकसान करेंगे। खुद की खुशी, शांति, एकाग्रता सब गवा देंगे। परमात्मा ने रास्ता तो बता दिया, लेकिन सिर्फ कृपा मांगने से कुछ नहीं होगा। इन रास्तों पर हमें चलना होगा। अगर हम इतने कमजोर हो गए हैं जो परमात्मा के दिखाए हुए रास्तों पर चल ही नहीं पाते, हमारे कदम लड़खड़ाते हैं, तो परमात्मा कहते हैं, बच्चों मुझे याद करो, स्वयं को शरीर के भान से मुक्त कर आत्मा समझ परम आत्मा को याद करो, तो तुम्हें शक्ति मिलेगी और तभी तुम सद्मार्ग के रास्तों पर चल पाओगे। ज्ञान हमें रोशनी दिखाता है कि इस राह पर चलना है, और परमात्मा की याद हमें उस राह पर चलने की ताकत देती है। बिना ताकत के हम चल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम भी तो कभी न कभी नफरत के कीटाणु के कारण बीमार थे। जब जब किसी ने हमारे साथ बुरा किया, तब तब हमने भी तो उससे नफरत की। पहले वो बीमार थे, फिर उनके संपर्क में आकर हम भी तो बीमार हुए। शक्ति घटाई, अब शक्ति बढ़ानी है तो परमात्मा को याद करना होगा। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, देहधारी मनुष्यों की यादों को भुलाकर एक परमात्मा को याद करना, यही अपने ऊपर की गई सबसे बड़ी कृपा है। मन की दुखों की आदत सी हो गई है, बार बार दुख देने वालों को याद करता है, और जो सुखों का सागर परम आत्मा है उसे याद करना भूल जाता है। कई जन्म हमने कलयुग में लिए हैं, कई जन्मों में दुख देखे हैं, कई बार सुना भगवान को याद करो, लेकिन मन और बुद्धि से भगवान को याद करना तो हमें आता ही नहीं था। मन भगवान के बारे में विचार करे और बुद्धि भगवान के स्वरूप को देखे, इसी को यथार्थ याद करना कहते हैं। कमाल है ना मन की, दुख देने वाले को याद करता है, पर सुख देने वाले, प्यार देने वाला, साथ निभाने वाला परम पिता परमात्मा को याद नहीं करता। मनुष्यों को याद करने से दुख मिलेगा, भगवान को याद करने से सुख मिलेगा। अपने मन को परमात्मा की तरफ मोड़ना, यही है अपने ऊपर सच्ची कृपा करना। मन हमारा बच्चा है और ये बच्चा कलयुग में रहते रहते बीमार भी हो गया है, कमजोर भी हो गया है, घायल भी हो गया है, इसीलिए शोर करता है। टीवी मोबाइल देकर हम इसका शोर थोड़ी देर के लिए बंद तो करते हैं, लेकिन बेचारे के घाव नहीं भरते। कब से घायल है, हम मरहम नहीं लगाते, कब से बीमार है, परमात्मा ज्ञान की दवाई नहीं खिलाते। कमजोर होकर रोने लगता है तो हम अपने ही मन को चुप नहीं कराते, उसे घंटों घंटों रोने देते हैं। किसी की दुख भरी यादों

को याद करना, किसी के बुरे व्यवहार को याद कर दुखी होना, यह भी तो मन का रोना ही है। पुरानी बातों को याद करके जो निगेटिविटी मन में कई सालों से पकड़ रखी है और उसी से वो खुद को ही घायल कर रहा है, हम उससे वो निगेटिविटी छीन कर सकारात्मकता का खिलौना अपने मन को नहीं देते। औरों ने जो किया सो किया, अपनी अपनी बीमारी के कारण, लेकिन हमने अपने आप को ठीक करने का, खुश रखने का कोई भी उपाय क्यों नहीं सोचा? परमात्मा कहते हैं, कलयुग के अंत में सभी के अंदर की बीमारी बढ़ेगी। क्रोधी व्यक्ति और क्रोधी बनकर उल्टे कर्म करेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत के कीटाणु इस दुनिया में बढ़ेंगे। अंत में सब अति में जाकर फिर इस कलयुग का अंत होना है। कलयुग में विकारों के कीटाणुओं का तूफान चारों ओर है। अगर अपने आप को बीमारी नहीं करना है तो ज्ञान का मास्क और परमात्मा याद की इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई लेनी पड़ेगी। संसर्गजन्य बीमारी बाहर फैली हुई है तो खुद की केयर करने की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। जैसे अगर नॉर्मल दिन होगा तो घर दिन में एक या दो बार साफ किया तो भी चल जाता है, लेकिन अगर धूल मिट्टी का तूफान चल रहा हो तो घर बार बार साफ करना पड़ता है। सतयुग में तूफान ही नहीं था तो वहां केयर करने की जरूरत नहीं थी। द्वापर में एक दो बार साफ करना पड़ता था, लेकिन कलयुग में तो तूफान बार बार आते हैं। कलयुग में खुद को बार बार साफ करना पड़ता है। क्या पता कौन से बीमारी का जम हम अपने साथ ले आते हैं। अपने मन को बार बार साफ करना अर्थात परमात्मा द्वारा प्राप्त ज्ञान सुनना, जितने बार मन मैला होगा दूसरों के कीटाणुओं का चिंतन करके, उतनी बार ज्ञान सुनकर मन को साफ करना पड़ेगा। परमात्मा की याद की दवाई खिलाकर मन की शक्ति बढ़ाना पड़ेगा ताकि मन बार बार बीमार ना पड़े, बार बार रोए नहीं, बार बार शोर नहीं मचाए। यही है अपने आप पर सच्ची कृपा करना। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं दुख के कीटाणु हमेशा गंदगी में पनपते हैं। जो दिल साफ होगी, अर्थात जो दिल सबको क्षमा करेगी, सबको दुआ देगी, सबके प्रति शुभ भावना रखेगी, ऐसे साफ स्वच्छ दिल में दुख के कीटाणु नहीं पनपते। जब हम क्षमा करना सीख जाते हैं तब हमारा मन साफ होता जाता है। जब हम दुआ देते हैं, शुभ भावना रखते हैं, तब हमारा मन स्वच्छ होता है। जहाँ नफरत होगी, ईर्ष्या होगी, स्वार्थ होगा, वहाँ दुख के कीटाणु जन्म लेंगे। गंदगी में हम कभी सुकून की सांस नहीं ले सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह गंदगी है। जब हम इनसे छूटने का प्रयत्न करते हैं तब हम अपने ऊपर कृपा करते हैं। हर मनुष्य चाहता है कि वो शांत रहे, खुश रहे, लेकिन इन विकारों के कीटाणु ने उसके अंतर मन में प्रवेश कर लिया है और ये कीटाणु उसे शांत खुश रहने नहीं देते। जब हम परमात्मा को याद करने लगते हैं तब हमारे अंदर के ये कीटाणु मरने लगते हैं और हमारे अंदर के आत्मा के ओरिजिनल संस्कारों का उदय होता है। ज्ञान, प्रेम, शक्ति, सुख, पवित्रता, आनंद, शांति का। परमात्मा के याद के बिना हम इन कीटाणुओं से छुटकारा नहीं पा सकते। हमें ऐसी दुनिया में रहना है जहां विकारों के कीटाणुओं की बीमारी चारों ओर फैली हुई है। अगर हमने अपना ध्यान नहीं रखा तो हम भी बीमार हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ हर दिन कोई ना कोई तो आएगा ही दुख देने, कटु वचन बोलने, निंदा करने, गुस्सा करने। परमात्मा कहते हैं तुम्हें कलयुग में रहते हुए अपने सुंदर व्यक्तिमत्व की मूर्ति तैयार करनी है। मूर्ति तैयार हो रही है तो छैनी हथौड़े के वार तो होंगे ही, अर्थात बीमार लोगों द्वारा गुस्सा, कटु वचन, निंदा, अपमान मिलेगा ही। परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम्हें कलयुग में सब कुछ सहन करना है। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, सर्दी, गर्मी सब सहना है, क्योंकि सहनशीलता का फल सतयुग में बहुत ही मीठा मिलता है। सहनशीलता भी हम में तब आएगी जब हम परमात्मा को याद करेंगे। बिना परमात्मा याद के हम छैनी हथौड़े के घाव सह नहीं पाएंगे और टूट के बिखर जाएंगे। परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम्हें टूटना नहीं है, सहन करना है। कभी भी खंडित मूर्ति की पूजा भी नहीं होती और गायन भी नहीं होता। हमें परमात्मा के लिए ऐसी मूर्ति बनना है जो खंडित ना हो। थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर हम रोज ज्ञान सुने और परमात्मा को याद करें तो हम

फिर से ऊपर उठाना है और फिर से चलना है। अब यश भी मिलेगा, कभी कभी लगेगा कि सहन नहीं होता। किसी के कटु वचन, किसी का गुस्सा, हम जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन अपने मन को समझाना है कि सामने वाला बीमार है, इसलिए तो ऐसा कर रहा है। अगर हम भी रिएक्ट करते रहेंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे। अपने मन को खुद ही समझाना पड़ता है। सच्चाई राह मुश्किल जरूर है, लेकिन इन्हीं राहों पर परमात्मा का असीम प्यार, कृपा और मंजिल मिलती है। लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, आपका आत्मविश्वास तोड़ने की भी कोशिश करेंगे। कभी-कभी तो आप हार कर सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार को रिएक्ट भी कर दोगे, लेकिन फिर वापस अपने आप को ही समझा कर खुद को ही परिवर्तन करने के लिए तैयार करना है। सामने वाला तो नहीं बदलेगा, अब बदलना हमें ही है। लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश तो करते रहेंगे, आपका आत्मविश्वास तोड़ने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब की परवाह नहीं करनी। अगर परवाह करनी है तो पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की करनी है। लोगों को खुश करने की, उनसे अच्छाई का सर्टिफिकेट पाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना जरूर ख्याल हो कि जब मैं परमात्मा के सामने जाऊं तब मेरा सर झुका हुआ ना हो। यही है अपने ऊपर की गई सच्ची सच्ची कृपा। श्रोते हो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कितना आसान था ये सब कुछ समझना, लेकिन हम सोए हुए थे, हमें पता ही नहीं चला, हमने सारी जिंदगी निकाल दी और जान ही नहीं पाए कि ये छोटी छोटी चीजें ही तो थी जिन्हें बदलना था और जिंदगी बदल जाती। इतनी मुश्किलों से गुजरते रहे थे हम। आज एक बार फिर रिश्तों को नई पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं और घर से बाहर निकल चुके हैं, अब एक दूसरे परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं, वो परिवार जो हमारा कर्म क्षेत्र है, जहां हम काफी वक्त गुजारते हैं और हम अच्छा भी महसूस करना चाहते हैं। हम सिर्फ अचीव ही नहीं करना चाहते, हम वो हर पल जो वहां होते हैं वो खुश और सुखी होकर गुजारना चाहते हैं। तो क्या है वो गुरु मंत्र, क्या है वो छोटी छोटी बातें जो उन सिचुएशंस में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो सुख जिसे हम तलाश रहे हैं अपने कर्म क्षेत्र में वो भी हमें मिल सकता है। हर बार की तरह इस सफर के हम सफर हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर पिछली कड़ी को याद करें तो बहुत अच्छी आपने बात दी थी, मैं कहूंगी गुरु मंत्र था कि एक परिवार से निकलकर अगर हम दूसरे परिवार पर जाने की, वहां पर जाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक प्रेशर होता है, एक सुबह सुबह का जो प्रेशर होता है, जो हमने कहा था कि हफ्ते भर फिर another week, वो हट जाता है।
1: You look forward another week, you know, just the whole attitude changes to going back to the same place. Yeah.
0: And if I remember, हमने ये भी बात की थी कि अगर मुझे appreciate नहीं किया जाता, क्योंकि अब मैं परिवार में आ गई हूँ, एक नए परिवार में, एक ऐसा परिवार जो मेरा अपना ही choose किया हुआ है, हो सकता है वो लोग जिन्हें मैं अपने रिश्तेदार हैं और जो यहाँ जो हैं वो अलग हैं, लेकिन उनके साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तो मेरा रहेगा ही, और उन सिचुएशंस को अब मैं कैसे हैंडल करूंगी। तो एक सिचुएशन तो थी कि अगर मुझे अप्रिशिएट नहीं किया मेरे बॉस ने, या कहीं कुछ जो मैं चाह रहा था कि मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा या मेरी अचीवमेंट होगी, आगे बढ़ूंगा, वो नहीं हो पाया, उसको भी कैसे हैंडल करें। एक और सिचुएशन जो आम देखी जाती है जब हम काम पर जाते हैं वो ये कि जेलस फैक्टर, वो मुझसे बहुत जलते हैं, मैं जितना भी अच्छा कर लूं, वो मेरा कोई बॉस नहीं है, मेरे कॉम्पिटिटर हैं और हर बार मेरे खिलाफ मेरे बॉस के या लोगों के कान भरते हैं, उनको कैसे हैंडल करूं?
1: हमें समझना पड़ेगा कि जेलसी क्या होती है, ईर्ष्या क्या है और कौन मेरे से ईर्ष्या करता है। नॉर्मली वी फील के ये जो ईर्ष्या कर रहे हैं कि यू नो इट्स सम काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एक्चुअली, क्योंकि आपका मुझसे ईर्ष्या करना अर्थात आपका अपने काम पर कॉन्फिडेंस नहीं होना। यू नो समवेयर दैट मे बी आई कैन डू बेटर देन यू एंड दैट इज व्हाट क्रिएट्स जेलसी। सो इफ मुझे पता चल गया कि यू आर जेलस ऑफ मी, आपको ईर्ष्या है, तो मुझे अब उस पर परेशान होने की पहली बात कोई बात नहीं है। दूसरा, गुस्सा आप पर करना ये तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आई विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आप बहुत ज्यादा पेन में हैं, यू नो आप बहुत ज्यादा पेन में हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डर में हैं, आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं। तो अब अगर आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं या अगर मेरे अंदर वो कंपैशन है तो मुझे समझना पड़ेगा कि इफ यू आर जेलस एंड आप जेलसी वश कुछ ऐसे कर्म कर रहे हैं, कुछ लोगों से बोल रहे हैं, तो मुझे आपके प्रति सिंपैथी होनी चाहिए, क्योंकि यू नो नॉर्मली हमें नफरत आने लग जाती
0: है, इरिटेशन, यू डोंट लाइक, आई डोंट वांट टू बी यू नो विद द पर्सन हु इज जेलस ऑफ मी,
1: राइट, बट यू विल हैव टू लुक एट दैट पर्सन एज अ वुंडेड पर्सन, जिसे चोट लगी है, जो अपनी कैपेबिलिटी पर अब ध्यान नहीं देकर सारा ध्यान मेरे कैपेबिलिटी पर देखकर अंदर ही अंदर घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है। अब आपके एंगल से अगर देखो, जिसको ईर्ष्या हो रही है, तो उसके लिए नुकसान ये हो रहा है कि उसकी जो लेट्स से माय यू नो योर कैपेसिटी इज हियर एंड आपको लग रहा है कि माय कैपेसिटी इज लिटिल हियर या माय वर्क इज अ लिटिल बेटर, तो आप मेरे वर्क को देखते जा रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि आप भी उधर तक पहुंचते जाए या मेरे जैसे करने लग जाए। नॉर्मली जेलसी में क्या होगा कि हम उनके जैसा करने लग जाएंगे कि वो कैसे करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे औरों को यू नो खुश रखते हैं, व्हाटएवर डिफरेंट वेज दैट वी वांट, तो हम इनके जैसा बनने की कोशिश करते रहते हैं। एंड क्योंकि ये नेचुरल है कि हम किसी की तरह बन तो सकते ही नहीं है, लेकिन हम अपने ऊपर ध्यान न देकर अपनी विशेषताएं, अपनी शक्तियों को सारा भूलकर,
0: अपनी ओरिजिनलिटी भूल जाते हैं,
1: अपनी ब्यूटी उसको भूलकर इनके जैसा बनना शुरू कर देते हैं। एंड इनके जैसा तो बन नहीं सकते, लेकिन जो अपना था वो भी खो जाते हैं। एंड इन द प्रोसेस आई एम नीदर हियर नोर आई एम हियर एंड आई एब्सोल्युटली कोलैप्स। तो जेलेसी से जो हम औरों के प्रति वर्णन करते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं और अंदर खुद ही खुद खुलते जाते हैं, तो हमारी जितनी कैपेसिटी थी हम उससे भी ज्यादा नीचे आ जाते हैं। तो हमें अगर किसी और के अंदर कोई कैपेबिलिटी दिखाई दे रही है तो एक तो डरना नहीं, सी दैट इट इज दैट फियर विच ऑटोमेटिकली मेक्स मी यू नो स्टार्ट गोइंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक। फियर सबसे बड़ा इंस्टिगेटर है गलत की तरफ जाने के लिए। लेकिन अगर मेरा फोकस बहुत क्लियर है कि मुझे खुशी चाहिए, वो मेरे जीवन का हिस्सा होगी इररिस्पेक्टिव केस ऑफिस में कितने भी लोग आ जाएं। अब उस खुशी को मेंटेन करने के लिए अगर मुझे अपने परफॉर्मेंस पर भी ध्यान देना है, तो अब अगर मुझे लग रहा है कि somebody is better than me, maintaining my positivity, go and try and learn if you want to learn. उसके लिए हिम्मत चाहिए, requires lot of courage कि आप जाकर दूसरे से सीखते हैं। अगर वो कर ले तो नथिंग लाइक इट। जेलेसी तभी होती है जब सामने वाले के अंदर कोई ऐसी चीज है जो हमें फील कर रहा है कि हमारे अंदर नहीं है, और मुझे लगता है कि उस चीज के लिए लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, मुझे वो अप्रिसिएशन चाहिए और इसीलिए मुझे उनकी वो वाली चीज चाहिए, और क्योंकि मुझे उनकी वो वाली चीज नहीं मिलती तो मैं उनके बारे में,
0: जो मेरे प्रति कोई जेलस है, मैंने तो गलती नहीं की, इट इज नॉट आई एम नॉट एट फॉल्ट। उनकी जेलसी ने मेरे लिए मेरी जिंदगी मुश्किल कर दी कि मैं उस माहौल में ही नहीं रह पा रहा, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी।
1: राइट, अब अगर आपने जैसे कहा कि उनकी जेलसी है तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, तो सबसे पहले तो ये मेंटेन करना पड़ेगा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा जिस तरह से चल रहा था वो ठीक था। तो अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो मुझे कुछ प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, दैट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। क्योंकि ज्यादातर आप इमेजिन करिए एक सीन कि ऑफिस में बहुत सारे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, यू नो यू एंटर एंड यू सी पीपल टॉकिंग अबाउट यू, और यू कम टू नो कि यू नो सो एंड सो वाज सेइंग सो एंड सो थिंग अबाउट यू। तो अब हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम एक एक को जाकर अपनी पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं, एंड समटाइम्स हम भी उसी गेम में चले जाते हैं कि अपनी पॉइंट को प्रूव करने के लिए
0: दूसरे को डाउन करेंगे,
1: दूसरे की you know, बुराई करने की शुरू कर देते हैं। एंड इफ आई स्टार्ट डूइंग दैट, तो मैंने तो अपनी विशेषता को खो दिया। तो अगर आपको फेथ है कि जो आपके बारे में कहा जा रहा है दैट्स नॉट ट्रू, देन डोंट इवन बॉदर, डोंट बॉदर, बिकॉज यू आर स्पेशल, यू आर इम्पोर्टेंट, everybody wants your quality and that's why they're talking about it, don't bother, keep on working on that quality even more. bilkul bhi is cycle mein jana hi nahi chahiye, because hum kabhi bol kar apni baat ko sidh nahi kar sakte, aur jo baat again if it's the truth agar wo right hai to

0: उसको सिद्ध करने की कोशिश नहीं करें। एक छोटा सा फेज आएगा बीच में जहां आपको फील होगा कि आप अकेले पड़ गए हैं।
1: बहुत ये इसी में सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसी में आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसी को निकालना मुश्किल हो जाता है।
0: तो ये फेज तो आएगा, दैट्स ओके, बट सी अगेन क्योंकि आपके पास वो विशेषता है तभी तो सारे उस तरफ चले गए एंड दे आर सो कॉल्ड जेलस ऑफ व्हाट यू हैव। लेकिन इफ यू नो व्हाट यू हैव, मेंटेन इट। तो वो छोटा सा फेज आएगा, लेकिन हमें निश्चय रखना होगा कि ये सिर्फ एक छोटा सा फेज है। अब इस छोटे से फेज में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी स्टेप, ईगो नहीं, अगेन देयर इज अ वेरी थिन लाइन हियर, सेल्फ एस्टीम, ईगो। एक सेल्फ एस्टीम मेंटेन करके रखेंगे उस व्यक्ति की क्या निशानी होगी, सेल्फ एस्टीम हाई है, इंटरनल डिस्टर्बेंस कोई नहीं है कि ठीक है जैसा चल रहा है, मुझे जाकर एक एक को प्रूफ नहीं करना है कि पता है मैंने ऐसा नहीं किया था, वो गलत बोल रही है, वो झूठ बोल रही है, मैंने, आई डोंट नीड टू डू ऑल दैट। और दूसरा, अगर सेल्फ एस्टीम हाई है तो मैं उस व्यक्ति के प्रति जो मेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं या उन सारे लोगों के प्रति जो मेरे अगेंस्ट होकर एक दूसरी साइड पर हो गए उनके प्रति कुछ नेगेटिव नहीं सोचूंगी। दैट विल बी द साइन ऑफ अ सोल विच हैज हाई सेल्फ एस्टीम, क्योंकि उस आत्मा को ये पता है कि ये खुद सब दर्द में है। तो जो खुद ही दर्द में है, जो खुद ही कमजोर है और डरे हुए हैं, उनको क्या डराना, वो ऑलरेडी इतने डरे हुए हैं, उनसे क्या नफरत करना या उनको क्या गुस्सा करना जो ऑलरेडी बाहर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो बहुत स्ट्रांग है लेकिन इंटरनली वो बहुत डरे हुए हैं।
1: जिस तरह से आपने कहा कि वो एक फेज आएगा जब मैं अकेला पड़ जाऊंगा और उसके बाद फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ऐसे में जो अपॉर्चुनिटीज मिस हुई कहीं ना कहीं वो पूरे मेरी वर्किंग पे इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि कहीं लोनलीनेस या एक मैं बार बार नहीं जा रहा अपने आप को प्रूव करने, तो मैं अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज ऐसा फील होता है कि मिस होती है।
0: अपॉर्चुनिटीज कभी नहीं मिस होंगी लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे, जस्ट क्योंकि आप अपनी इनर स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाएंगे। उस समय लगेगा, अगेन यू नो ये इल्यूजन सारे क्रिएट होंगे कि ये मेरे हाथ से जा रही है, ये अपॉर्चुनिटी मेरी होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि इस समय सारे मेरे अगेंस्ट हैं,
1: मुझे नहीं बुलाया
0: तो ये मुझे नहीं दिया गया काम, ये किसी और को दिया गया, इट्स ओके, मेंटेन दैट पेशेंस वो थोड़े से टाइम के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो व्यक्ति ये मेंटेन कर पाएगा उसका नुकसान हो, ऐसा हो नहीं सकता। दिस इज लॉ ऑफ कर्मा कि अगर आपने पॉजिटिविटी, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल नेगेटिविटी उन लोगों के प्रति, यू नो एक होता है, क्योंकि इसमें जो थिन लाइन आती है, एक है मेंटेनिंग इनर स्टेबिलिटी और दूसरा है विड्रॉ। ये विड्रॉ नहीं है, ये विड्रॉ नहीं है, आप वही हैं, आप सबके साथ ही हैं, आप इंटरनली सबके लिए वही शुभ भावना रख रहे हैं।
1: यू नॉट हेटिंग देम, यू नॉट डिसलाइकिंग देम,
0: दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट,
1: दे आर बीइंग बैड टू मी, आई डोंट लाइक देम,
0: दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कौन कर पाएगा जिसको ये फेथ होगा कि मैं राइट हूँ, जो मैंने किया वो राइट है या जो मेरी विशेषता है वो है, इन लोगों को उस विशेषता से प्रॉब्लम हो रही है, मेरी विशेषता में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादातर डाउट अपने ऊपर जब आने लग जाता है, दैट इज लो सेल्फ एस्टीम। और वो लो सेल्फ एस्टीम किसको होगा, जो खुद को ही नहीं पहचानता और जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कि और लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि सेल्फ एस्टीम क्रैश होने का कारण, अपने स्वमान क्रैश होने का कारण सिर्फ ये है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, आजकल मेरा क्या इम्प्रेशन है सबके ऊपर, यू नो वी थ्रो दिस वर्ड इम्प्रेशन क्या है, तो इट्स मोर इम्पोर्टेंट मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। तो इफ आई एम ओके with that quality, just carry on. And if I'm okay and I come to know कि there is a negative undercurrent, never mind. I feel compassion कि कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा. In fact, मैं indirectly भी उनको वो जो चीज है जो वो शायद सीखना चाहते हैं या चाहते हैं, I can share even if they don't ask. Normally withdraw हम कर लेते हैं, अपनी विशेषता को अपने तक सीमित रखते हैं एंड हम कोशिश करते हैं कि ये चीज मैं किसी को नहीं बताऊंगी। यू नो एक होती है विशेषता, एक होती है कोई स्किल, आपके अंदर कोई स्किल है, कोई टैलेंट है जो आप औरों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप औरों को वो चीज सिखा सकते हैं, लेकिन डर क्या होता है कि अगर मैंने इनको सिखा दी
1: तो मेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी,
0: आज सारे ऑफिस में मेरी इम्पोर्टेंस इस स्किल की वजह से है, एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर ये जो कंपटीशन आता है. तो हम उस स्किल को अपने तक रखते हैं, जैसे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं किसी को नहीं सिखाऊंगी. अगर कोई पूछ भी लेता है तो उसको गोल गोल घुमाकर इनडायरेक्टली कुछ कर देते हैं, उसको अपना पूरा का पूरा जो आपको आता है वो नहीं सिखाते हैं. दिस इज साइन ऑफ इनसिक्योरिटी. अगर हमें अपने पर कॉन्फिडेंस है, हमें जितना आता है पूरा एंड टू एंड उसको पूरा का पूरा बता देना चाहिए. ये फेथ होना चाहिए. दिस इज फेथ ऑन द सेल्फ. ये पूर फेथ होना चाहिए कि किसी और को सिखाने से मेरा कुछ कम नहीं हो जाएगा, उल्टा वो विशेषता और भी बढ़ती जाएगी. अगर कोई और आगे बढ़ेगा, दिस इज व्हेन वी अंडरस्टैंड थिंग्स ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल. अगर हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक लेवल पर सोचते हैं तो हमारी थिंकिंग क्या होती है कि कोई अगर और आगे बढ़ेगा तो मैं पीछे रह जाऊंगी, बिकॉज वी लुकिंग एट थिंग्स ओनली ऑन दैट लेवल. मटेरियल प्रोग्रेस में भी अगर हमने किसी को आगे बढ़ाया है तो शिव बाबा हमेशा हमें ये बताते, किसी को आगे बढ़ाना मतलब खुद ही आगे बढ़ जाना. एंड ये हमने मतलब हर स्टेप पर इसका अनुभव किया है. तो किसी को आगे बढ़ाना नॉट विद द इंटेंशन कि ताकि हम आगे बढ़ जाएं, नहीं, लेकिन सच में किसी को आगे बढ़ाने का वो फील आना कि सब लोगों को ये आ जाए. जो मुझे आता है आई वॉन्ट टू जस्ट शेयर इट विद एवरीबडी. परमात्मा ने दिया है, आई वुड वॉन्ट टू शेयर इट विद एवरीवन. वो आगे बढ़ेंगे, उनके आगे बढ़ने में मेरा आगे बढ़ना अपने आप समाया हुआ है. बिकॉज अगर हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो उससे मुझे क्या मिलेगा? लॉ ऑफ कर्म. सो मेनी ब्लेसिंग्स, सो मेनी गुड विशेस, जिसको कहते हैं दुआओं का खाता. इतना जमा होता है कि वो दुआओं का खाता, अगर हम अपनी विशेषता से चलते तो हम इस स्पीड पर चलते, लेकिन अगर जब हमें इतनी सारी दुआएं मिल जाती हैं तो हम इस स्पीड पर नहीं चलते. वी जस्ट
1: एनर्जी एक और मिल जाती है
0: हमें, अपनी एनर्जी नहीं, सिर्फ
1: सबकी एनर्जी,
0: सबकी एनर्जी मिलती है. और वो जो इतनी सारी एनर्जी हमें सबकी मिलती है, इट जस्ट पुशेस अस वे अहेड इवन इन टर्म्स ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि आपको वो मटेरियल प्रोग्रेस मिला, लेकिन साथ साथ आपकी इंटरनल स्टेट बहुत हैप्पीनेस की थी.
1: लेकिन शिवानी, यहाँ एक बात मैं जानना चाहती हूँ कि हमने किसी दूसरे को सिखा दिया इस इंटेंशन से कि सबको आना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने उसी का इस्तेमाल करके मेरे पोजीशन को नीचे कर दिया, और ये बहुत बार देखा गया. यही प्रॉब्लम है, तभी लोग जो हैं वो नहीं सिखाते या अपने पास ही रखना चाहते हैं, कि कहीं ना कहीं वो बाकी सारे तामझाम या जो भी पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं उनका इस्तेमाल करते हुए, जो मैं चाहे मैं इनर स्टेबिलिटी में भी रहा लेकिन वो आगे पहुंच गया, तब मेरा क्या रिएक्शन?
0: अगर मैंने किसी और को किस इंटेंशन से कुछ सिखाया था, उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हुए ये नहीं सिखाया था, देन आई एम ऑलवेज गोइंग टू लाइक कि हमने उनको सिखाया, क्योंकि मेरी भावना है देने की. वी अंडरस्टूड एट एवरी स्टेप कि आत्मा का नेचुरल संस्कार है देना, लेना नहीं. लेकिन हमने आज उसको चेंज कर दिया कि हमें सारा दिन लेना है, देना कुछ भी नहीं है. तो देने के बाद हमेशा अच्छा लगेगा. अब अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है जो आप कह रहे हैं, मे बी इट इज पॉसिबल कि ऐसा हो जाए कि वो व्यक्ति आपसे बहुत आगे चला जाए, बट देन हाउ डज दैट मैटर? विद व्हाट इंटेंशन डिड आई गिव इट? डिड आई नॉट शेयर इट विद दिस इंटेंशन कि आगे बढ़े? एक पेरेंट अपने बच्चे को किस इंटेंशन से सब कुछ सिखाता है? इसी इंटेंशन से सिखाता है कि मेरा बच्चा मेरे से भी आगे चला जाए. तो अगर मैंने भी उस भावना से सिखाया होगा कि ये भी सीखे, ये भी सीखे, ये भी आगे बढ़ जाए. एक टीचर एक स्टूडेंट को किस भावना से सिखाता है? नेवर सेज के आप मेरे को जितना आता है आप उससे कम रहो. नो. एंड फिर वो टीचर को कितनी खुशी होती है, पेरेंट को कितनी खुशी होती है जब वो आगे बढ़ता है बच्चा. तो उसमें कोई उनका नीचे होना नहीं होता है. वो बच्चा हमेशा अपनी सफलता का डेडिकेशन किसको देगा?
1: पेरेंट.
0: उन्हीं को देगा, टीचर को देगा. अब इन दिस केस मे बी यू विल नॉट गेट इट, दैट काइंड ऑफ ग्लोरिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इंटरनल
1: डीप विद इन आई थिंक द पर्सन नोज कि क्या,
0: द पर्सन नोज फ्रॉम वेयर आई हैव गॉट, एंड सूनर और लेटर यू विल स्टिल गेट इट बैक इन टर्म्स ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस. लेकिन जहां तक इनर फीलिंग की बात है वो तो आपको ऑलरेडी मिल गई है.
1: बिकॉज़ व्हेन यू गिव इट गोज थ्रू,
0: इट गोज थ्रू यू. अब अगर उसके बाद आप हर्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब यू हैड गिवन इट
1: विद इन इंटेंशन.
0: तो हर कर्म में इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किस इंटेंशन से गिरे. अगर आपको डर है कि कहीं आगे निकल जाए, फिर मत दीजिएगा, बिकॉज देयर इज अ चांस कि वो आपसे बहुत अच्छा सीख ले,
1: क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी कितनी है.
0: बट दैट्स ओके, व्हाई नॉट. अगर मुझे खुशी हो औरों को आगे बढ़ता हुआ देख, एंड दैट विल हैपन व्हेन आई एम नॉट इन अ रेस. जो उनकी स्पीड उनकी है, मेरी स्पीड अपनी है, दैट्स ओके. आई एम गोइंग टू मूव एट दिस स्पीड, आई लाइक माई सेल्फ एट दिस स्पीड. लेकिन इफ दे गो फास्टर, इट्स इज फाइन. आई एम हैप्पी सीइंग अदर कार्स गोइंग अहेड ऑफ मी, देन इट्स फाइन. लेकिन अगर डर है तो फिर नहीं देना, देन कीप इट टू योर सेल्फ. बट इट्स अ वेरी लिमिटेड फीलिंग. आप सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं, अपने लिए ही करते हैं, और इसमें कभी खुशी नहीं अनुभव हो
1: सकती. हमने घर की बात की थी तो मूल्यों की बात की थी. कहीं ना कहीं गिरते मूल्य हम घर में बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें बच्चों के सामने आना है, हमें बच्चों को देने हैं. लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं, वहां मूल्य ताक पे रख दिए जाते हैं. अपने मूल्य हम बचाने की कोशिश भी करें ऑफिस पहुंच कर, लेकिन जब माहौल ऐसा देखते हैं तो मूल्य जिनमें करप्शन एक बहुत बड़ी बात आ जाती है, या और भी सारे अगर जीवन मूल्यों को देखते हैं, और हम ये मान लेते हैं कि जो माहौल है उसी के साथ मैं भी उसी में इन्वॉल्व हो जाऊंगा तो तभी मैं जी सकता हूँ. तो ऐसे माहौल में अपने मूल्यों पे कायम रहना वो बहुत मुश्किल आज के वक्त में लगता है. और अपने मूल्यों को सही रूप में पहचानना, ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें.
0: ये तभी हम कर पाएंगे अगर हमने अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज कर दिया है. अगर हम अपने आप को सिर्फ एक शरीर समझते हैं, अगेन सोल कॉन्शियसनेस पर बहुत इम्पोर्टेंट आ जाता है कि अगर हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो हम समझते हैं इतना सा ही तो जीवन है. इस जीवन में जो कुछ मिल जाए यही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो कुछ प्राप्त करना है जल्दी कर लो. सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जस्ट कीप गेटिंग गेटिंग गेटिंग, दिस इज हाउ मच यू हैव टाइम, यू वॉन्ट टू गेट, यू कैन गेट एवरीथिंग. जब ये एटीट्यूड होगा तब हम उसके लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं. तो मतलब हम छोटी से छोटी चीज के लिए भी अपनी वैल्यूज को गिव अप कर देंगे. जब हमें समझ में आ जाता कि ये शरीर है, मैं इसको चलाने वाली शक्ति आत्मा हूँ, आत्मा की वैल्यूज है, आत्मा के गुण है, आत्मा के संस्कार है, खुशी जो है वो मुझे इन मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं मिलने वाली, वो मुझे इंटरनल जो मैं एक एक कर्म करूंगी, किन वैल्यूज पर बेस्ड करूंगी, वो तब मुझे मिलने वाली है. अब मुझे अपनी लाइफ को डिसाइड कर लेना चाहिए कि अगर मुझे एक प्रमोशन, एक मतलब बंगला, गाड़ी, व्हाटएवर दीज थिंग्स, ये सब मिलने वाली हैं एट द कॉस्ट कि मेरी खुशी जाएगी. क्योंकि वैल्यूज को साइड पे रख के प्राप्त की हुई वस्तु मन की स्थिति को खुशी कभी नहीं दे सकता, क्योंकि बीज नेगेटिव था. तो हर एक के लिए अलग अलग है. वी आर नॉट गोइंग टू से हियर और वी आर नॉट हियर टू टेल एनीवन कि दिस इज रॉन्ग और दिस इज राइट. दिस इज फॉर यू टू डिसाइड. अगर आप कहते हैं नहीं जी करप्शन के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, दैट्स योर डिसीजन. एब्सोल्युटली आपका निर्णय है ये. प्रेशर लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसी वायुमंडल में लोग हैं जो इस चीज के लिए झुकते नहीं है. भले आप समझें कि बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन अगर एक भी कर सकता है
1: तो सब कर सकते.
0: तो हम सब कर सकते हैं. लेकिन शायद उस एक व्यक्ति को जो इसके अगेंस्ट जाता है उसको थोड़ा सहन करना पड़ता है. शायद उसको वो मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, वो भी इफ यू फील नहीं मिलेगी, शायद नहीं मिलेगी. बट उसके लिए वो इनर सैटिस्फैक्शन शायद ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो हमें अपने लिए और अपने परिवार के लोगों को प्लीज पूछ लीजिएगा एक बार. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मेरी मानसिक स्थिति होगी वो सबको मिलने वाली है. तो अगर कल को मैं परेशान रहूं और बच्चे भी, घर के लोग और भी परेशान रहे, और वो कहें ऐसा किया ही क्यों, एंड आई से आई डिड इट सो दैट आई कुड बाय यू द कार, दे माइट से वी डोंट नीड द कार. सो व्हेन यू टेक द डिसीजन ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर वैल्यूज, टेक द डिसीजन विद योर फैमिली, अपने परिवार, बिकॉज वी हैड डिसाइडेड कि जो राइट और रॉन्ग हम सेट करने वाले हैं वो परिवार की राय के साथ मिलजुल कर हम सेट करने वाले हैं. तो अपने परिवार में, चाहे बच्चे बहुत छोटे हों लेकिन जो भी बड़े आपके साथ हैं, आस्क देम, डू वी वॉन्ट ऑल दिस एट द कॉस्ट ऑफ वैल्यूज, या क्या हम अपने वैल्यू सिस्टम को इंटैक्ट रखें. एंड 99.9% आई वुड थिंक कि आपको मिलेगा कीप इट इंटैक्ट. ये हम कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं ये सोच के, नहीं नहीं नहीं मेरे परिवार को ये चाहिए, मेरे बच्चों को ये चाहिए, अगर मैंने अपने बच्चों को ये नहीं दिया तो वो यू नो अपसेट हो जाएंगे. नहीं, एवरीबडी वॉन्ट्स हैप्पीनेस एंड नोबडी वॉन्ट्स टू लूज देयर हैप्पीनेस एट द कॉस्ट ऑफ मटीरियलिस्टिक कम्फर्ट्स. हम सोच रहे हैं कि पीपल वॉन्ट हैप्पीनेस विद मटीरियल, इट्स नॉट लाइक दैट. आई नीड टू टॉक. और इसीलिए इन बातों की घर में बातें डिस्कशन होनी चाहिए. वी शुड डिस्कस कि वैल्यूज क्या है, हैप्पीनेस क्या है, हाउ मच आर वी रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, और शुड वी बी दैट काइंड ऑफ फैमिली जो स्टिक टू आवर वैल्यूज.
1: और यहाँ स्ट्रेस, इस स्ट्रेस को कोप करना आना चाहिए, ना कि वो स्ट्रेस जो हम खुद क्रिएट करते हैं.
0: इस स्ट्रेस को एक्चुअली कोप करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई स्ट्रेस नहीं क्रिएट होगा, बिल्कुल नहीं स्ट्रेस क्रिएट होगा, अगर आपने अपनी चॉइस से वो डिसीजन लिया होगा. अगर वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी, लेट्स से ऑनेस्टी या ब्राइब नहीं देना या नहीं लेना, इफ दिस इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी देन एनीथिंग एल्स, यू नो, देन एनी कार और बंगलो, I will not get stressed. Even if my job is at stake, it doesn't matter. क्योंकि मेरे पास वो value है जो शायद आज बहुत कम है लोगों के अंदर. तो वो value कोई ना कोई होगा जो उस value को recognize करेगा. तो मुझे वो tension वाले period से नहीं गुजरना पड़ेगा if inside I'm very short. लेकिन अगर मैं कमजोर हूँ, एक बार सच बोला, थोड़ा सा उसका कुछ प्रेशर पड़ा, नहीं नहीं नहीं सच बोलने से तो नहीं चल सकता, झूठ बोल दो, कर दो, देन आई एम नॉट फिट टू डू इट, देन आई विल हैव टू डू जो ऑल द थिंग्स जो सारे लोग कर रहे हैं, एंड देन आई विल हैव टू गेट जो सबको मिल रहा है.
1: इट मींस वही आ जाते हैं कि हाउ मच आई वैल्यू माय वैल्यू.
0: एब्सोल्युटली, इट्स नॉट अबाउट, ये लेम एक्सक्यूज है, ये एक बहाना है कहना कि सब लोग कर रहे हैं, अगर मैंने नहीं किया. एंड दिस इवन अप्लाइज टू यू नो सोशल एडिक्शंस वगैरह. हम कहते हैं ओ हम जब पार्टी में जाते हैं, सोशल कल्चर में सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं तो मुझे करना ही पड़ेगा, अगर मैंने नहीं किया तो मेरा बॉस मेरे बारे में क्या. एक्सक्यूजेस, एब्सोल्यूट एक्सक्यूजेस. क्या इस बेसिस पर किसी की मेरिट डिसाइड हो सकती है? नथिंग. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, अगर वी वॉन्ट टू डू व्हाट एवरीबडी इज डूइंग, then we will get what everybody is getting. And everybody is getting tension, anxiety and stress. If I want to get something different, that's happiness, I will have to do something different. I will have to be somebody different. That's very important. So, agar wo khushi chahiye, it's in your hand already. Gawana nahi hai usko in choti choti baaton ke liye.
1: Ye jo values ki jo baat hum kar rahe hain, ya jis tarah se jo choti choti situations samne aati hain, us pe kaise aap अडिग रह सकते हैं? अडिग भी रहने की जरूरत नहीं, जस्ट माइंड सेट.
0: प्रायोरिटाइज कि ये बोले ये झूठ बोलना ही पड़ेगा, आई एम सॉरी मैं झूठ नहीं बोल सकता, नाउ आई एम रेडी टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इट. आपको ये डिसऑनेस्ट कर्म करना ही पड़ेगा, आई एम सॉरी सर ये मैं नहीं कर सकता, नाउ आई एम रेडी टू फेस एनीथिंग, एंड देन इट शुड बी एनीथिंग आई एम रेडी टू फेस, बिकॉज ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, ये मैं कर ही नहीं सकता. तो फाइन, मे बी इट इज समथिंग अ पार्ट ऑफ द जॉब जो मैं नहीं कर सकता, तो आई एम रेडी टू फेस उसके लिए, लेकिन आई विल नॉट डू इट.
1: कुछ चीजें जो हैं वो अडिग रहनी चाहिए, कुछ चीजें चेंज नहीं हो सकती, उनमें ये है चेंज हमें अपने एटीट्यूड्स को जरूर करना है, अपने थॉट्स को कर सकते हैं लेकिन वैल्यूज को नहीं, क्योंकि यहाँ हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं.
0: और यहाँ
1: फ्लेक्सिबिलिटी है, मुझ में फ्लेक्सिबल
0: जहाँ चाहिए
1: हो जाता है. सुजा शिवानी, ऑफिस में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो अभी भी जिनको इनके बारे में जानना बाकी है. ट्रस्ट की बात आती है, एंगर की बात आती है, और फिर अगेन मेडिटेशनल एस्पेक्ट्स जो हैं कि किस तरह से स्पिरिचुअलिटी इस परिवार में भी एक स्टेबिलिटी ला सकती है. तो अभी बाकी है काम, लेकिन फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: ऑफिस में जब हम पहुंचते हैं, जब हमने उसे मान लिया, स्वीकार लिया कि वो मेरा परिवार है, फिर जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं, जेलेसी की आज हमने बात की, और किस तरह से अपनी वैल्यूज पे हम अडिग रह सकते हैं, और अडिग रहना ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, अगेन इट्स माय चॉइस कि मैं रहना चाहती हूँ, किसी और के कारण मैं रहूं या ना रहूं वो नहीं हो सकता, तो डिसीजन हर बार की तरह मेरे हाथ में रहेगा. कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई सवाल गुनगुना रहा है, तो आपका स्वागत है, आप हमारे साथ शेयर कीजिए उसे, हमें फोन कीजिए या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 9999344665, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. वक्त है कि आपसे विदा लें, लेकिन इसी वादे के साथ कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में कुछ और रिश्तों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से जब हम ऑफिस में होते हैं तो एक फेथ या ट्रस्ट या विश्वास का रिश्ता होता है, और साथ ही जिस एंगर को हम कई बार सही मान लेते हैं उसे भी क्या सही माना जाना चाहिए, क्या बिना गुस्सा किए भी ऑफिस में काम चलाया जा सकता है। ऐसे ही कई और बातें हैं जो हम अगली कड़ी में जरूर उठाएंगे। तो आप इंतजार कीजिए, मुलाकात करेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। ओम शांति।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्णच. हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर करायचं.
1: तेरे जैसा यार कहां.
0: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं.
2: लकडी की काठी काठी पे घोडा.
0: मनात पीठ वाजल्या की शरीर अपोआप फिरकत. त्याच सोबत
3: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध.
0: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा.
4: पहला नशा पहला खुमार.
0: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा. गाण्यांच्या सुरात दडलेली संस्कारांची गोडी, पिढ्यान पिढ्या चालत असलेल्या परंपरेचा गंध आणि मनाला स्पर्श करणारी भावांची संगती. आणि हे सगळं ऐका फक्त आपल्या पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
5: नमस्कार एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मकुमारीज. डिप्रेशन के ऊपर जब हम बात करते आ रहे हैं कि कई तरह के डिप्रेशन होते हैं, क्यों होता है डिप्रेशन, और एक खास बात जो हमें समझ में आई है कि एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है. स्वीकारना खुद को और दूसरों को भी, जैसे हैं वैसे ही स्वीकारें, फिर सोचें कि अगर उनमें कोई बदलाव लाया जा सकता है या खुद में भी बदलाव लाया जा सकता है तो किस तरह से लाना है. ये कुछ बातें हैं जो अगर हम अपने जीवन में अपना लेंगे तो सचमुच एक बेहतर जिंदगी की तरफ चल सकते हैं. डिप्रेशन से जुड़े हुए कई ऐसे मुद्दे, कई ऐसी मिथ्स थी जो हमने दूर करने की कोशिश की है. आज डिप्रेशन की ट्रीटमेंट्स के बारे में थोड़ा ज्यादा विस्तार से जानते हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल. डॉक्टर गिरीश पटेल, आपका हार्दिक स्वागत.
6: नमस्कार.
5: नमस्कार. और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी. वेरी वार्म वेलकम.
7: ओम शांति.
5: ओम शांति. आज डॉक्टर पटेल, हम यही जानना चाहते हैं कि हमने ये बात कर ली, डिप्रेशन के कारण जानने की कोशिश की, कहीं ये बात समझ में आई कि जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो सोच है, जो थॉट्स हैं, वो सबसे बड़ा कारण बनते हैं. और कई तरह के डिप्रेशन थे, तीन डिप्रेशन को हमने डिफ्रेंशिएट किया था. लाइफ स्टेट्स की बात की थी कि छह लाइफ स्टेट्स में जहां खुशी और गम के बीच का जो ना थोड़ी थोड़ी दूरी हो जाती है, तो वो स्टेट ऐसी है कि समझ लेना चाहिए कि डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं. ट्रीटमेंट्स भी क्या अलग अलग होती हैं? अलग अलग तरह के डिप्रेशंस हैं तो क्या ट्रीटमेंट्स के तरीके भी अलग अलग हैं?
6: कई प्रकार के ट्रीटमेंट है, वह सभी ट्रीटमेंट अलग अलग तरह के डिप्रेशन में भी काम करेगी. मैं मूल रूप से तो आपको बताता हूँ कि जो ट्रीटमेंट कौन से प्रकार की है. वर्तमान समय हम देखेंगे तो जो सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ी संख्या में, कहें कि अधिकतर सभी 80-90% पेशेंट्स को दवाइयां दी जाती है, जिसको कहा साइकोफार्मेकोलॉजी, कि मन से संबंधित जो दवाइयां हैं वह दवाइयां भी बहुत बड़ी मदद करती है जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उनको डिप्रेशन से बाहर लाने में. और एक ट्रीटमेंट है जिसको कहेंगे साइकोथेरेपी. साइकोथेरेपी के भी विभिन्न प्रकार हैं, तो वह साइकोथेरेपी भी पेशेंट्स को मदद कर सकती है. और जिसको कहा जाए कि कुछ फिजिकल थेरेपीज, बहुत प्रकार की पहले भी थी, कुछ ट्रीटमेंट एब्सोल्यूट हो गई है कि भी ब्रेन में कुछ पार्ट को मामूली सर्जरी भी करते थे, कि जो अभी 99.999% कोई नहीं करता.
5: तो आपने कहा कि सबसे पहले ड्रग्स जो है या दवाइयां देकर.
6: और एक मैं ऐड कर दूं
5: जी,
6: और एक जो ट्रीटमेंट है लोग भी जानते हैं जिसका एक्चुअल नाम है ECT, वह है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी. इलेक्ट्रिकली कन्वल्जन्स प्रोड्यूस किए जाते आर्टिफिशियली और वह भी मदद करती.
5: वो जो शॉक देते, जो एक्सट्रीम केसेस की बात जब होती थी तब.
6: ये चर्चा करेंगे, शब्द ही गलत है. शॉक देना है, पहले शॉक व्यक्ति सुन के उसको शॉक लगता है. इट्स समथिंग गुड इवन. देयर आर बोथ द थिंग्स, लेकिन जो वर्तमान समय हम आगे चर्चा करेंगे इस बात.
5: सबसे पहले तो दवाइयों पे आते हैं. दवाइयों का नाम सुनते ही अगर हमें मानसिक परेशानी है या डिप्रेशन है और हमें ये कहा जाए कि भाई आपको तो दवाइयां लेनी पड़ेंगी, तो पहला विचार, मैं मुझे ही कोई कहे कि आपको तो दवाई खानी पड़ेगी तो दवाई से मैं वैसे ही भागती हूँ, क्योंकि आज के सिनेरियो में ऐसा लगता है कि दवाई खाना मतलब हम केमिकल्स को अपने अंदर डाल रहे हैं, हम नहीं चाहते. तो दवाई खाने के नाम से ही लगता है लोग की हैबिट फॉर्मिंग है, मतलब मुझे आदत ही पड़ जाएगी। दवाइयां मत खाना डिप्रेशन की, आप एंटी डिप्रेसेंट पिल्स नहीं लीजिएगा, ये इतने सारे मिथ्स हैं, कांस्टेंट लोग आपको एडवाइस देते जाते हैं। तो क्या ये हैबिट फॉर्मिंग है, क्या ये जरूरी ही होती है, कितनी जरूरी होती है? अगर दवाई नहीं ली गई तो वो डिप्रेशन कहाँ तक लीड कर सकता है? ये तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं एक्चुअली।
6: हाँ, पहला इश्यू आपने बार बार कहा है तो उसका उत्तर देता हूँ कि भैया हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। अगर उस ड्यूरेशन के लिए दिया जाए जो आपको जरूरत है, उतने ड्यूरेशन के लिए आप ठीक से रेगुलरली लो और फिर उसे धीरे धीरे कम करो, उसका एक सारा तरीका है, ये डॉक्टर्स अच्छी तरह जानते हैं। वह रूप से डॉक्टर की सलाह के अनुसार लो तो हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। गलती कहां होती है कि पेशेंट अपनी मर्जी से लेता रहता है, कभी ज्यादा भी ले लिया, अपनी मर्जी से कम कर दी और तब फिर वो लंबा समय लेता रहे तो हैबिट फॉर्मिंग हो सकती है।
5: तो इलाज कितना लंबा, ये भी एक मिथ बहुत लंबी है कि 2 साल तक इलाज चलता है, 5 साल तक डिप्रेशन का इलाज, ये नहीं होता कि बहुत जल्दी डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगे, लंबा इलाज चलता है, तो कितना लंबा होता
6: है? अब इसमें और एक बात बताऊं जो मूल रूप से इसको क्लेरिफाई करना जरूरी है कि भी मेडिसिन कब जरूरी है। कई ऐसे किस्से हैं, मैं कहूंगा डिप्रेशन में भी करीब करीब 30% पेशेंट्स जो है वह सिर्फ साइकोथेरेपी से भी इससे बाहर आ सकते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी पेशेंट है कि जो अपने आप या साइकोथेरेपी से उनको मदद पूरी नहीं मिल रही है तो वहां मेडिसिन की जरूरत है। चलो ये तो मानते हैं कि भी जो भी मेडिसिन है उसकी कोई ना कोई तो साइड इफेक्ट है ही, बल बहुत कम है। जो वर्तमान समय एंटी डिप्रेशेंट है, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इसके भी कई जनरेशन हो गए, जो प्रेजेंट जनरेशन की एंटी डिप्रेशेंट है वह थर्ड या फोर्थ जनरेशन की एंटी डिप्रेशन में ऑलमोस्ट साइड इफेक्ट नहीं है, तो बहुत ही मामूली साइड इफेक्ट्स है। तो अब डॉक्टर को भी ये जज करना है कि वो साइड इफेक्ट और इसकी बेनिफिशियल इफेक्ट कि पेशेंट की प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ेगी।
5: तो ये किस वक्त जरूरी है, जैसे आपने कहा कि कई बार तो साइको एनालिसिस से ही ठीक हो जाता है, लेकिन कौन सा ऐसा वक्त आ जाता है जब ड्रग्स आर अ मस्ट, अदरवाइज वेयर विल इट लीड टू? अगर दवाई नहीं खाई गई तो इट कैन एक्चुअली लीड टू समथिंग एल्स, तो वो हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा मुकाम डिप्रेशन के उसमें है मोड़ पर जब ड्रग्स बहुत जरूरी हो जाती है।
6: एक तो उसकी स्थिति यह है कि जब व्यक्ति अपना जो सामान्य कार्य है कि तैयार होना, ऑफिस जाना, अपना जो भी डे टू डे वर्क है वह करने में भी अगर उसे दिक्कत आने लगी है, वह करने की उसकी इच्छा मर गई है, उसका उत्साह खत्म हो गया है, तो उसे मेडिसिन की जरूरत है। दूसरा, नींद में अगर सीरियस प्रॉब्लम आ रहा है, अपने आप कुछ कोशिश करके उसे अच्छी नींद नहीं आ रही है, तो उस स्टेज पर कहेंगे कि अब मेडिसिन की शुरुआत करनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न आपने बहुत ही अच्छा पूछा कि अगर वह दवाई नहीं ले तो वह कौन सी स्टेज की ओर जा सकता है। एक तो ये डिप्रेशन उसका बढ़ता जाएगा, जो भी उसकी कुछ भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज बची है वो भी कम होती जाएगी, और एक जो बहुत ही डेंजर है डिप्रेशन में है वह है सुइसाइड। ये पेशेंट आत्महत्या भी कर सकता है कि अगर वह स्टेज उसकी बढ़ती जाए।
5: डॉक्टर साहब, सिस्टर शिवानी जो अभी सुइसाइड की बात की कि इट कैन एक्चुअली दवाई नहीं ली जाए तो इट कैन लीड टू सुसाइड, तो अभी हमने जो कुछ दिन पहले ही देखा है कि एक स्टूडेंट ने जो 10th क्लास में 96% मार्क्स लेकर, वो लड़की इतनी मेरिटोरियस स्टूडेंट, हर स्कूल के प्रिंसिपल, पेरेंट्स, सब किसी को पता तक नहीं चला, एंड शी कमिटेड सुसाइड, हैंग कर लिया अपने आप को। ये सिम्टम भी नहीं थे, डिप्रेस्ड रही होगी जरूर वो, क्योंकि तभी उसने इतना बड़ा कदम उठाया। तो ये सिम्टम्स पता ही नहीं चल पाए ऐसे, मतलब क्या होता है कि कभी ऐसा पता ही नहीं चल पाता, जैसे आपने कहा कि जब वो बिल्कुल दिनचर्या के काम करने बंद कर दे, इसका मतलब ये होता है कि आपने दवाई आपको लेनी शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन जब ये बात भी ना एहसास हो पाए तब क्या करें?
6: कुछ केसेस में मैं स्वीकार करता हूं कि ऑल ऑफ अ सडन भी हो सकता है, परंतु अधिकतर वह कोई ना कोई उसके सिग्नल्स मिलते हैं,
5: कोई ट्रिगर ऑफ है कुछ,
6: या तो पेशेंट सचमुच डिप्रेस न भी हो, जैसे भी ये जो लड़की का किस्सा है,
7: क्योंकि उन्होंने, ये बहन ने जिसने सुसाइड किया, उसने वो सुसाइड नोट में सिर्फ इतना ही लिखा कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ बट आई एम अफ्रेड ऑफ लिविंग इन दिस डर्टी वर्ल्ड। यू नो, और कोई रीजन भी नहीं बताया मतलब सुसाइड करने का, बस मुझे जीवन इस दुनिया से डर लग रहा है. तो जरूर कुछ ना कुछ तो सोच गई होगी उसके पीछे,
8: वही कहीं ना कहीं डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा
6: हो सकती है. कोई ऐसा इंसिडेंस जो हुआ उसने रिवील नहीं किया सचमुच कि औरों के साथ, कि जो इंसिडेंस से उसको लगा हो कि डर्टी वर्ल्ड है और इसमें जीना नहीं है.
8: एक्चुअली इंडिकेट्स कि ये कहीं मेजर यू नो लाइक डिसिल्यूजनमेंट है.
6: डिप्रेशन समथिंग इन हर डीप इनसाइड देयर वाज समथिंग, दिस अब्यूज हो सकता है और कोई बात
8: जो हमने
6: जो उसने किसी को बताई नहीं,
7: लेकिन वो खुद अपने आप को ही फेस नहीं कर पाई
6: होगी. और
8: काफी लंबे
6: का कदम उठा लिया.
8: बिल्कुल. तो ये कहीं ना कहीं कोई इंडिकेशन, कांस्टेंट काउंसलिंग कैन हेल्प एक्चुअली, कि कहीं हमें हमारे अंदर जो चल रहा है हो सकता है हमें खुद भी ना एहसास हो रहा हो. यू नो, कई बार हमें या हमें खुद को पता होता है कि हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं.
6: कुछ तो पता होता ही है. यह संभव है कि औरों को इतना पता ना चले. व्यक्ति को स्वयं तो, क्योंकि उसके विचारों में परिवर्तन आ रहा है, उसे जो फीलिंग्स आती वह फीलिंग्स में परिवर्तन आ रहा है, तो व्यक्ति को स्वयं तो एहसास होता ही है. सिर्फ ये संभव है कि कुछ लोग थोड़ा ऊपर से अपने आप को इतना स्ट्रांग दिखाते हैं कि उनके चेहरे पे, उनके बिहेवियर में कोई भी ऐसी कमी नहीं आने देंगे कि आसपास के लोगों को पता चले कि वे डिप्रेस्ड हैं.
8: डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि दवाई जो है वो बहुत जरूरी हो जाती है कई केसेस जब ऐसे पहुंच जाते हैं, दवाई खाने से एग्जैक्टली होता क्या है? यू नो व्हाट एग्जैक्टली चेंजेस, जब हमने दवाई खाई तो क्या कुछ बदलाव आता है केमिकल या ऐसा फिजियोलॉजिकल? की
6: जो अच्छा प्रश्न है कि जो समझना भी चाहिए ठीक से, कि हमारे दिमाग में करीब 800 से ज्यादा केमिकल्स हैं, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं. ये जो विभिन्न बीमारियां हैं मानसिक, उसमें ये न्यूरोट्रांसमीटर्स में बदलाव आता है, कुछ बढ़ जाते हैं कुछ कम होते हैं. तो जो दवाइयां हैं वह इस केमिकल इम्बैलेंस को ठीक करती है.
8: ओके.
6: डॉक्टर्स को भी जब आप पूछते हैं तब अधिकतर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि भाई यह केमिकल इम्बैलेंस है, तो मेडिसिन जो है वह केमिकल्स का फिर से बैलेंस लाती है. तो इसके कारण मेडिसिन के अनेक फायदे भी है.
8: कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है वो वापस उस जगह पर पहुंच जाएगा. हाँ. जहां पर सही एक आपको मात्रा में पहुंचना चाहिए ताकि एक नॉर्मल जिंदगी जी पाए. हाँ.
7: तो जब तक दवाई नहीं लेंगे इसका मतलब
8: यू दैट इम्बैलेंस विल रिमेन?
6: नॉट नेसेसरीली. अभी दोनों बातें हैं.
7: अच्छा, काउंसलिंग
6: आदि से भी और केमिकल का बैलेंस भी होगा.
8: डॉक्टर साहब, काउंसलिंग पे आएंगे हम, लेकिन उससे पहले एक मेजर इशू सिस्टर शिवानी इज ऑल्टरनेट लिविंग एंड ऑल्टरनेट थेरेपीज के बारे में बात होती है. कई तरह की थेरेपीज और आ गई हैं, जो ट्रेडिशनल थेरेपी है उसके कहते हैं कि उसके एवज में अगर वो किया जाए तो वो भी हेल्पफुल है. तो यहाँ हम चाहेंगे आप बताइए कि क्या वो हेल्पफुल होती है, और थेरेपी ना सही लेकिन ऑल्टरनेट लिविंग जिसमें कई सारी और चीजें शामिल हो जाते हैं, लाइफ स्टाइल जो आ जाता है.
6: मैं ये कहूंगा मैं कि भी दो चीजें हेल्प कर सकती है कि नहीं, योग आसन मदद कर सकते हैं, प्राणायाम कुछ हद तक मदद कर सकता है क्योंकि वो एक प्रकार से एक्सरसाइज भी है और सही प्रकार से है. क्योंकि आप जब योग आसन करते हैं तब सही रूप से योग आसन करो तो क्या है, हर आसन के बाद रिलैक्सेशन करना है. तो उसके बाद आपको रिलैक्सेशन भी मिल रहा है ठीक से, ध्यान स्पिरिचुअलिटी से परिवर्तन हो रहा है, प्राणायाम से भी आपके रेस्पिरेशन में चेंजेस आ रहे हैं कि जो ब्रेन के ऊपर भी उसकी इफेक्ट होगी, तो वह डेफिनेटली मदद करेगा. परंतु और जो अल्टरनेटिव थेरेपीज है उसमें सिस्टमेटिक रिसर्च नहीं की गई. अलग अलग किससे कोई बता देगा?
8: डॉक्टर साहब, ये बात तो हुई कि योग जो फिजिकल एस्पेक्ट है, फिजिकल तरीके से वो भी हेल्प कर सकता है. हाउ अबाउट मेडिटेशन एक्चुअली, वो उसकी मदद कितनी, वो कितनी मदद कर सकता है?
6: मेडिटेशन योग आसन से भी ज्यादा मदद करेगा. क्योंकि ये बीमारी की शुरुआत ही मन में हुई है, तो मेडिटेशन वह मन को ठीक करेगा, हमारे विचारों को ठीक करेगा. और विशेष जो मेरा ब्रह्मा कुमारी इसके साथ अनुभव है इतने वर्षों का, जिसमें देखा है कि राजयोग का अर्थ ही है विचारों में परिवर्तन लाना. और जब हम विचारों में परिवर्तन लाते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर्स पर भी चेंजेस आते हैं, वह भी बैलेंस होने लगते हैं. तो इसके कारण मेडिटेशन सबसे अच्छा है. और एक जो मेडिटेशन का फायदा है कि हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाता है, और जब हम एटीट्यूड को चेंज करते हैं तो भी डिप्रेशन से बाहर निकलना सहज है.
8: बिल्कुल. कहीं ना कहीं ये पूरी सारी चीजें यू नो इकट्ठे साथ साथ काम करके हमें एक अच्छे रास्ते पर लेकर जा सकते।
6: बहुत बड़ा फायदा देखा गया है मेडिटेशन का कि हमें लोगों का भी सपोर्ट मिलता है। आमतौर पर आप देखिए
8: कम्युनिटी सपोर्ट
6: की भी राजयोग सेंटर पर जो जाने वाले भाई बहन है उनके द्वारा आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है और लोग आपकी बातों को सुनते भी हैं।
8: बिल्कुल सिस्टर शिवानी, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब मेडिटेशन कैंप्स में जाते हैं या सेंटर्स पे जाते हैं या लाइक माइंडेड पीपल होते हैं जहाँ पॉजिटिव वाइब्स हमें हर कदम पर नजर आ रही है, तो उसका पूरा इम्पैक्ट अगर कोई डिप्रेस्ड है तो कितना हो सकता है? एंड एक्चुअली इट रियली मैटर्स।
7: इट्स लाइक गिविंग ऑक्सीजन, यू नो, आप बिल्कुल जैसे एकदम अनकॉन्शियस है, आपको ऑक्सीजन दे दो तो चलने लग जाते हैं। तो वो सेंटर पर आने से एक वायुमंडल वैसा बना होता है पॉजिटिव एनर्जी का, तो यू गेट वेरी यू नो चार्ज्ड। दूसरा है, जब हम सेंटर पर जाते हैं हम और लोगों से मिलते हैं जो हमारी ही तरह प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लाइफ के चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। वो सेंटर पर रह नहीं रहे हैं, वो एक आश्रम लाइफ नहीं लीड कर रहे हैं ना। घर बैठ के लगता है जो आश्रम में रह रहे हैं उनके लिए बहुत इजी है घर में रहकर देखें, लेकिन वहां जब हम जाते हैं तो हम हजारों लोगों से मिलते हैं जो घरों में रह रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, बट देर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन देयर लाइफ। वो मेडिटेशन को कैसे अपने जीवन में अप्लाई करके क्या परिवर्तन आया है, दैट इंस्पिरेशन ब्रिंग्स अबाउट अ लॉट ऑफ चेंज। जब आप किसी को देख लेते हो ना कि किसी ने कर लिया, तो देन आई स्टार्ट फीलिंग अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इतने लोग कर सकते हैं, देन इवन आई कैन डू।
8: बिल्कुल, बहुत प्रेरणा
7: एक्सचेंज भी होता है ना, हर एक का अच्छा आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम था कैसे ओवरकम किया, देन आई गेट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम यू। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑन द जर्नी अलोन, I'm on the journey with a lot of people. तो यात्रा interesting हो जाती
8: है। And lot of people who are actually in the same scenario, positive vibes देते हुए।
7: और जैसा संग वैसा रंग, ये तो हमें पता ही है। तो अभी हम बहुत ज्यादा अगर चिंता और इस तरह के लोगों के संग में रहते हैं जो हमें रहना ही पड़ेगा, we can't, तो उसका भी हम पर असर तो पड़ता ही है। लेकिन फिर थोड़ा समय निकाल कर अगर हम 15-20 मिनट के लिए भी ऐसे संग में चले जाए तो वो भी अपना इम्पैक्ट हमारे ऊपर छोड़ देता
8: है। तो वो पूरे दिन के लिए आपको तैयार कर
7: फाउंडेशन।
8: बिल्कुल डॉक्टर साहब, फिर से दवाइयों पे आते हैं क्योंकि दवाइयों से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी मिथ्स हैं, खासकर ये कि जब साइकैट्रिक प्रॉब्लम है या एक डिप्रेशन है, और डिप्रेशन जैसा कि आपने एक बार पहले भी कहा था कॉमन कोल्ड की तरह है आज के वक्त में, लेकिन डिप्रेशन को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता। जैसे ये कहा जाए कि आप डिप्रेस्ड हैं या आपको डिप्रेशन है, आप दवाई लेने भी जाएं, डॉक्टर कहते हैं आप दवाई लीजिए, केमिस्ट्री कह देगा कि एंटी डिप्रेसेंट मत खाइए, एंटी डिप्रेसेंट हैबिट फॉर्मिंग है, आपको साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे बहुत ज्यादा। क्या ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या है ऐसी चीज उनके अंदर जो हमें मना किया जाता है कि भाई आप ये मत खाइए?
6: पहले तो बाद में बताऊंगा कि भाई ये जो अप्रोच है ना वही गलत है। कि भी केमिस्ट डॉक्टर तो नहीं है, उसको थोड़ा भी मालूम नहीं कई बार, तो उसने तो सिर्फ एक दो किस्से देखे। और सारी साइकेट्री में मैंने जो अनुभव किया है कि करीब 80-85% पेशेंट ठीक हो जाते हैं,
8: लेकिन कहते
6: अच्छे
8: कि
6: अच्छे लोगों को भी।
8: अच्छा, एक और मिथ, एंटी डिप्रेसेंट पिल्स जो हैं उनसे नींद आती है, वो सुला देती है,
7: ये सबसे बड़ी मिथ है। क्योंकि आप फील करते हैं कि आप पहले से भी ज्यादा लेजी फील कर रहे हैं,
8: तो इज इट लाइक दैट?
6: मे बी नहीं कनोप्रिया जी, हम एक एक चीज को ले, तीन चार इश्यूज है, एक एक इश्यू को ले तो वो क्लैरिफाई भी होगा। सबसे पहले जो इश्यू है कि केमिस्ट को नॉलेज नहीं है। हुआ क्या है जनरली कि जिनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, अच्छे अच्छे लोगों को होती है, मैंने देखा है अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को भी डिप्रेशन आया है, कुछ अच्छे पॉलिटिशियंस को, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी डिप्रेशन आया है, और फर्स्ट टाइम ही उन्हें तकलीफ हुई, उन्होंने ठीक से ट्रीटमेंट ली, 5-6 मास में वो बिल्कुल ठीक हो गए। ऐसे जो 80-85% लोग है वो किसी को बताते नहीं है कि मुझे तकलीफ, एक व्यक्ति को भी, पड़ोसी को भी नहीं बताएंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था। परंतु दूसरे जो 15-20% लोग कि जिनको वो ठीक नहीं हुआ है, उसके कई कारण हैं जिसकी भी चर्चा करनी चाहिए, कि जिन्हें वो रिपीटेड अटैक्स आ रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, जो क्रॉनिक पेशेंट्स बन रहे हैं, वो दुनिया भर में उसकी पब्लिसिटी होती है, भले वो न भी कहे, परंतु जो लोग देखने वाले सबका, अरे ये डिप्रेस्ड है, 5 साल से डिप्रेस्ड है, 15 साल से डिप्रेस्ड है, ये दवाइयां ले रहा है, कितने डॉक्टरों के पास जा रहा है, वो और वह पब्लिसिटी दुनिया भर में होती है, तो इसलिए इस प्रकार की नेगेटिव मान्यता है। तो और जिनको पूरा नॉलेज नहीं है, आदमी केमिस्ट को तो नॉलेज है ही नहीं। और ये आपकी बात सच, अभी थोड़ी दिन पहले की ये पेशेंट की बात है, जब मैंने मेडिसिन दी वो कैमे तो कहा नहीं तुम बिल्कुल खाओ नहीं, ये तो एंटी हालांकि वो सबसे सेफेस्ट मेडिसिन।
8: अच्छा नींद आती है क्या बहुत ज्यादा खाने से?
6: ये भी बात की भी ये नींद की दवाइयां नहीं है, नहीं कुछ एक स्पेशल है कि भी जो नींद के लिए ही वह मेडिसिन बनाई गई है कि भी जिनको नींद नहीं आती है, एंटी डिप्रेशन नींद की दवाइयां नहीं है, परंतु जो साइकेट्री की पुरानी दवाइयां है, अब ऐसे अगर हम सिंपल वे में उसको डिवाइड करना हो सभी को समझ में आ जाए, इसलिए एक तो है कि भी पहले 1957 में पहली बार एंटी डिप्रेशन मार्केट में आई, उसके बाद कहेंगे कि भी 80s तक की जो दवाइयां है और उसके बाद फिर सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन की मेडिसिन भी आई, तो जो पुरानी दवाइयां है उसमें थोड़ी नींद की प्रॉपर्टी ज्यादा है, उसमें कुछ कॉन्स्टिपेशन होने की भी संभावना है, मुंह सूखता है, इस प्रकार के उनके सिम्टम्स है। जो प्रेजेंट सेकेंड थर्ड जनरेशन एंटी डिप्रेशन है उसमें करीब करीब कोई भी नींद की प्रॉपर्टी नहीं,
8: इवॉल्व होती गई ना,
6: आपको हाँ डे टाइम में ही लेनी है। कुछ दवाई ऐसी है कि जो आपको सवेरे नाश्ते के बाद तुरंत लेनी है।
8: एक्चुअली अगर हम उसके अंडरलाइन जो एरिया है वो ये समझ लें कि इट इज द केमिकल बैलेंस जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है उसे बैलेंस करने की कोशिश है। हम बाकी दवाइयां भी तो लेते हैं, बीमार जब होते हैं हम, कोई हमें बुखार हो जाता है, हम वायरल फीवर में कितने वायरल जब होता है तो कितनी कितनी प्रॉब्लम होती है, कितने हम बीमार कितना उठा ही नहीं जाता, तब भी तो हम कितनी दवाइयां खाते हैं।
7: बेनाड्रिल पी लो तो स्लीपी लगता है,
8: एंटीबायोटिक्स तो इतना आपका स्टमक इतना अपसेट कर देते हैं कितने टाइम तक,
6: तो बैक्टीरिया को खत्म करते हैं।
8: हाँ तो वो जब हम वो ले सकते हैं तो हम ये क्यों नहीं
6: ले सकते हैं? और थोड़ा टाइम लेना है इसमें ना, कुछ बातें जो एडवाइस प्रॉपरली देनी हो तो मैं एक तो ये कहूंगा कि भाई एक ही साइकेट्री से ट्रीटमेंट लो, क्योंकि साइकेट्री एक है ना छोटी सी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड नहीं है, जो छोटी सी फील्ड है तो अच्छा साइकेट्रिस्ट सब मेडिसिन को जानता है, भल उनको आप ये भी कह सकते हैं कि भी ये काम नहीं कर रही है, नहीं आप इसको भले चेंज करो ऐसा भी आप कहे तो वह ट्राई करेगा, और सफिशियंट समय के बाद आप समझते हैं कि इफेक्ट नहीं हो रही है तब भले चेंज करो। कई बार पेशेंट एक के पास गया बस 10 दिन में दूसरे के पास जा रहा
8: है। यहाँ पे एक मैंने आपने कहा कि एक ही साइकियाट्रिस्ट रखिए, तो एक ये बात भी बहुत है कि साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट सिर्फ बातें बना के आपका पैसा बनाते अपना पैसा बनाते हैं, ये बहुत बड़ी मिथ अपने दिमाग में हम सब लोग लिए घूमते हैं कि फिजिक मतलब अगर हमें कोई प्रॉब्लम है हम किसी MD के पास जाते हैं या किसी जनरल फिजिशियन के पास भी जाते हैं तो वो तो हमारा तो हवा मीटर लगाएंगे, कई नब्स देखेंगे, काफी सारी और चीजें देखेंगे, जो साइकियाट्रिस्ट है वो एक घंटा हमसे बात करेंगे, हमसे पैसे ले लेंगे और उसके बाद सिर्फ इसी बात का और बार बार बुलाएंगे, ये मिथ भी मैं चाहती हूँ कि क्लियर आज आप करें कि
6: एक तो जो आपने कहा कि भी साइकियाट्रिस्ट को जैसे भी और डॉक्टर को स्टेथोस्कोप लगा करके या तो कुछ और फिजिकल चेकिंग करके पता चलता है कि कौन सी बीमारी है, साइकियाट्रिस्ट को आप जो सिम्टम्स बताएंगे, जो आपको प्रश्न पूछेगा, आपके उत्तर देंगे, उसके आधार से उसको निर्णय करना है कि कौन सी बीमारी है। बल्कि कुछ चेकअप की जरूरत है, ब्लड प्रेशर चेक करना है और कुछ चीजें वो चेक करने की जरूरत है, अन्यथा आपकी बातों से उसे परफेक्ट डायग्नोसिस करना है, तो इसलिए वह जरूरी है। और अच्छा साइकियाट्रिस्ट अगर एक घंटा आपको देता है और ठीक से साइकोथेरेपी दे रहा है तो वह फिजिशियन से बहुत बड़ा है। आपका MD फिजिशियन तो 2 मिनट में आपको उसने चेक किया, आपसे फीस ले ली, इसका भी इतना ही क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन की कमी नहीं।
8: That's what I'm saying, you know, this is a mindset which we all have. ये माइंडसेट तोड़ना बहुत जरूरी है कि थेरेपिस्ट जो साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट कितने इम्पोर्टेंट होते हैं।
6: तो वो जो कर रहे हुए वर्धन ज्यादा ही अच्छा कर रहे हैं। एक तो जैसे मैंने कहा ना कि ये ना खरीदारी करना, जैसे शॉपिंग होता है ना कि भी एक दुकान में गए आपने भाव ताल किया आपको पसंद नहीं आया दूसरे दुकान में गए, ऐसा नहीं करिए, एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए और सफिशियंट टाइम दीजिए। ये मैं मानता हूं कि अगर कोई साइकियाट्रिस्ट आपको टाइम नहीं देता है, कहीं बहुत बिजी आपको 1-2 मिनट भी नहीं देते हैं और आप समझते हैं कि भी मेरी बात कोई ठीक से समझ नहीं रहे हैं, तो आप भले चेंज भी करना चाहे तो करे, परंतु एक सफिशियंट टाइम देना जरूरी। दूसरी बात कि उसकी राय के अनुसार नियमित दवाई लो, आप अपना चेंजेस नहीं करो। आज एकदम लोग परिवर्तन कर देते हैं कि भी 2 दिन ली फिर अभी तो मैंने दवाई आधी कर दी है कहते, तो उसकी इफेक्ट ही नहीं होनी। स्पेशली जो एंटी डिप्रेशेंट है उनका एक लेवल है, बल उल्टा उस लेवल में साइकियाट्रिस्ट धीरे धीरे आते, 2-3 सप्ताह में वो जो फुल क्लिनिकल डोज होना चाहिए वहां तक पहुंचते हैं, और वह क्लिनिकल डोज करीब आप 2 मास कम से कम, 2 से 2.5 मास लो, तब वह केमिकल्स का बैलेंस फिर से आता है और आपको जो सही इफेक्ट होने लगेगी वह इफेक्ट होगी
8: 2 महीने के बाद मिनिमम,
6: 2-2.5 महीने के बाद, और वो भी क्लिनिकल डोज पे।
8: बिल्कुल।
6: उल्टा लोगों में मिथ यह भी है कि भी हर बार जाते हैं ना मेडिसिन को थोड़ी थोड़ी बढ़ा देता है, पहले कहता है 1 लो 2 सप्ताह के बाद, गए कहते 2 लो, अभी कहता है 3 लो, परंतु उसको तो पता था कि भी कम से कम 3 टेबलेट की जरूरत है, वो जो क्लिनिकल डोज है वहां तक, फर्स्ट डे नहीं दे सकता, फर्स्ट डे देता तो आप शायद उसको टॉलरेट नहीं कर पाते।
8: बिल्कुल। तो ये डॉक्टर साहब बहुत सारी और भी बातें हैं, आपने कहा था ECT वाली जो एक थेरेपी है, और सबसे बड़ी बात साइकोथेरेपी, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, दीज आर फ्यू एस्पेक्ट्स जिसको भी हमने नहीं छुआ है। अपनी अगली कड़ी में हम और इसके बारे में जानेंगे, और ये जो ड्रग्स के साथ जो ट्रीटमेंट है वो कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में और डिटेल में जाएंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि वक्त हो चुका है तो डॉक्टर गिरीश पटेल एंड सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बिल्कुल। अगर प्रॉब्लम है, अगर डिप्रेशन है, उसकी ट्रीटमेंट भी उतनी ही जरूरी है। हमने इतनी सारी बातें की थी कि डिप्रेशन क्यों होता है, लेकिन ये जानना कि ट्रीटमेंट कितनी जरूरी है, और सबसे बड़ी बात जो आज डॉक्टर साहब ने हमें ये बताई कि सही साइकियाट्रिस्ट और पूरा फेथ रख के, पूरी डोज लेकर, अगर बीमारी है तो उसकी पूरी दवाई लेनी भी जरूरी है, ये बात आज अगर हम गांठ बांध लें तो कहीं ना कहीं हमारी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। आपके पास कोई सवाल है जिसका आप जवाब चाहते हैं तो आप हमें फोन पर या फिर ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। तो आपको बता दें कि अगली कड़ी में डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के बाकी तरीके और खासकर साइकोथेरेपी कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है और किस तरह बहुत मदद कर सकती है डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए, इस पर खास चर्चा करेंगे। आज अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें इतना ही, अगली कड़ी में होगी फिर मुलाकात। नमस्कार।
9: चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आज कल शौक दीदार है, क्या कहूँ

0: लाइफ। सो या
1: सुना दोस्तों, उन्होंने अपने कहानी जीवन की शुरुआत को जोड़ा एक किस्से से। जब वो 11 साल की थी तब उन्होंने एक चिकन को देखा जिसको मारा जा रहा था, और उससे उन्हें अनुभव हुआ कि नहीं, मुझे एक शाकाहारी भोजन शैली अपनानी चाहिए, क्योंकि मेरा जीवन किसी और के मृत हो जाने पर नहीं डिपेंड होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने वहां से अपने लाइफ की शुरुआत की। अपने अपने लाइफ को उन्होंने दोबारा देखा। आज वो मानते हैं कि आज ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके प्रति उनको प्यार नहीं, सम्मान नहीं, लेकिन फिर भी डॉग कुत्ते के प्रति उनको थोड़ा ज्यादा झुकाव है। एंड व्हाई सो? डू यू सी समथिंग इन द डॉग्स दैट अट्रैक्ट्स यू?
0: या सो डॉग्स दे कनेक्ट इजिली आई थिंक कंपेयर टू मेनी अदर एनिमल्स। प्रोबेबली दैट इज व्हाई यू नो दैट प्री हिस्टोरिक टाइम्स व्हेन ह्यूमंस बिफ्रेंडेड एनिमल्स इवन बिफोर ऑल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ऑल काउज एंड गोट्स एंड ऑल दीज एनिमल्स स्टार्टेड लिविंग विद ह्यूमंस बिफोर ऑल ऑफ दैट dog is the one that came to human habitat, but I think there was that mutual connection. There was something which both felt as companions. So it was not more for I would say a benefit in terms of its use, but it was more friendship. So maybe that is what makes dog a little bit special. I think.
1: Yeah, very true, very true. I totally agree. It's even I have felt that dogs not always look up to you for a roti or for a bread. They will just wag their tails just because they like to see you, and that's it. So, दोस्तों मिनी जी ने जो अभी बात कही कि कुत्ता जो है वो बहुत आदिकाल से ही मानव सभ्यता का एक हिस्सा रहा है। जब हम दूसरे पशु पक्षियों के इतने क्लोज नहीं थे तब भी शायद कुत्ता जो था वो इंसानों के करीब आना उसके लिए आसान था, क्योंकि उसका नेचर ही बड़ा फ्रेंडली है, बहुत ही वो मित्रवत उसका स्वभाव होता है। और जो ये कुत्ता होता है, आपने कभी देखा होगा साथियों, अगर आप अपने घर से दफ्तर जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं और रोज एक कुत्ते को आप देखते हैं, भले आप उसको रोटी ना खिलाएं, लेकिन फिर भी रोज आपका उसको देखना, उसका आपको देखना, वो धीरे धीरे एक दोस्ती में तब्दील हो ही जाता है। यू स्टार्ट टू लिव दैट फ्रेंडशिप विदाउट इवन नोइंग दैट यू आर कॉन्शियसली बिल्डिंग दैट फ्रेंडशिप। तो शायद कुत्ते का जो ये सरलता है, सरल भाव से वो जो किसी को अपने अपने नजदीक ला सकते हैं, दैट इज प्रोबेबली व्हाट जो हमारे मिनी जी को आकर्षित किया। बट हम इस प्रकार के हंसी मजाक के और भी लाइट क्वेश्चंस के साथ भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहला सवाल यशस्वी भारत कार्यक्रम के तौर पे मैं जो आपको पूछना चाहूंगा, जनरली देखा गया है जब भारत में राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मान या जहां तक नारी शक्ति सम्मान की बात है, ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने मानवता को बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है, सहयोग दिया है। कई बार ये कनेक्शन बैठापना बड़ा मुश्किल लगता है कि इंसानों के लिए नहीं कर रहे हैं, जानवरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनको सम्मान दिया गया है, वो भी राष्ट्रपति सम्मान, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर अ वुमेन। सो ये कनेक्शन बैठा पाना किसी के लिए डिफिकल्ट होता है। एंड द मिनिस्ट्री रियली रिकमेंडेड योर नेम, जो महिला और बच्चों की जो मिनिस्ट्री है दोस्तों, जो मंत्रालय है महिला एवं बाल सशक्तिकरण का, उन्होंने मिनी जी का नाम सजेस्ट किया कि इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार मिलना चाहिए। एंड जहां तक मुझे ये स्टोरी पता है, मिनी जी ने अप्लाई भी नहीं किया था, एंड शी वॉज सरप्राइज कि उनको एक महीने पहले कॉल आता है कि आपको दिल्ली आना है, पुरस्कार लेना है। तो डिड यू एवर थॉट मिनी जी दैट योर सर्विस फॉर द एनिमल्स कैन टेक यू टू अ प्लेस ऑफ सच रेप्यूट?
0: Absolutely not. Absolutely not. I'm very surprised myself, and you know, people who know me are surprised that you know I have done so much in for animal welfare. I worked many years like this, and this has also led to getting this recognition from the president of the country. So, see, for me, I wanted to be able to help an animal in pain. So that was the only motivation for me when I

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर, एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो। प्रस्तुत है ज्ञान चिंतन।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता, और आज मैं आपके सामने मौन इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मौन यानी चुप्पी, शांत रहना। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा है। हमारा जीवन शोर से भरा हुआ है, बाहरी शोर जैसे गाड़ियों का शोर, लोगों की बातें, और आंतरिक शोर जैसे हमारे विचारों की हलचल। इन सब के बीच मौन एक ऐसी जगह है जब हम खुद को पा सकते हैं, जहाँ हम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं। मौन सिर्फ शब्दों की कमी नहीं है, यह एक शक्ति है। यह हमें आत्मचिंतन करने का अवसर देता है। जब हम शांत होते हैं, तो हम अपनी भावनाओं और विचारों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। मौन हमें धैर्य सिखाता है, हमें सोचने की क्षमता देता है, और हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने मौन के महत्व को सदियों पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने ध्यान और योग के माध्यम से मौन की शक्ति को अनुभव किया। आज के तनावपूर्ण जीवन में मौन हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। यह हमें शांति और स्थिरता प्रदान करता है। मौन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है संवाद। जब हम किसी बात को ध्यान से सुनते हैं, बिना बीच में बोले, तो हम उसे सम्मान देते हैं। यह एक प्रकार का मौन संवाद है, जहां हम शब्दों के बिना भी बहुत कुछ कह पाते हैं। अक्सर हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बातें बिना शब्दों के समझी जाती है। एक माँ का अपनी संतान को देखना, एक मित्र का दूसरे मित्र को सहानुभूति से देखना, यह मौन की शक्ति है जो शब्दों से परे है। मौन का दुरुपयोग भी हो सकता है। जब हम अन्याय के खिलाफ चुप रहते हैं, या जब हम अपनी बात नहीं रखते, तो मौन कमजोरी का प्रतीक बन जाता है। हमें यह समझना होगा कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। सही समय पर सही बात कहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सही समय पर मौन रहना। मौन और वाणी के बीच संतुलन बनाना एक कला है, और ये कला हमें अपने जीवन में सफलता और शांति दोनों प्रदान कर सकती है। मौन हमें प्रकृति से भी जोड़ता है। जब हम प्रकृति के बीच शांत बैठते हैं, तो हम उसकी सुंदरता और शांति महसूस करते हैं। पक्षियों का चहचहाना, हवा की सरसराहट और नदियों का कलकल, यह सब मौन में ही सुनाई देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है और हमें प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मौन एक अनमोल उपहार है। इसे अपने जीवन में अपनाएं और इसकी शक्ति को महसूस करें। यह आपको शांति, स्थिरता और आत्मज्ञान प्रदान करेगा। हमें मौन को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और समृद्ध बना सके। मौन में छिपी शक्ति को पहचाने और अपने जीवन को एक नई दिशा दे। धन्यवाद।
2: रेडियो श्रोतागण, अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक बने रहें रेडियो पुनेरी आवाज। खुश रहो, खुशियां बांटो।
4: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्णच। हसणं, भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर करायचं।
5: तेरे जैसा यार कहां, कहां ऐसा यार आला।
4: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं।
6: लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा।
4: मनात बीट्स वाजल्या की शरीर अपोप फिरकतं। त्याच सोबत
7: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध।
4: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा।
5: पहला नशा, पहला खुमार।
4: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM। आनंदी रहा, आनंद लुटा।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी वेलकम।
2: ओम शांति।
1: वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू।
1: पावरफुल सोल की आप बात कर रहे थे, तो एक तो उसके बारे में मुझे आपसे पूछना था, दूसरा एक लाइन मैंने पढ़ी उसको शेयर भी करना था। लाइन कहती है, ऑथेंटिक पावर इज बिल्डिंग समथिंग इनसाइड ऑफ यू। ऑथेंटिक पावर is building something inside of you which you cannot lose and that no one can take from you.
2: Superb.
1: Which you cannot lose and which no one can take away from you.
2: Look at this line, authentic power.
1: Or inside
2: power.
1: बोल रहे हैं और अभी तक हाँ ये इनसाइड वाला वर्ड जो है ना मुझे थोड़ा सा हिला दिया क्योंकि मैं पावर और शक्ति हमें बाहर ही देखा ना बचपन से लेके आया। मंदिर में भी जाते थे तो शक्ति तेरे पास है भगवान, देवी शक्ति तेरे पास है, माँ तेरी शक्ति है, गुरु शक्ति दे, गाड़ी पावरफुल, मतलब हर चीज बाहर
2: बाहर। और अपने जीवन के लिए भी जब शक्ति देखी, डेफिनेशन ऑफ अ पावरफुल पर्सन जब हमने देखा तो हमने अपने अचीवमेंट्स में ही पावरफुल को देखा।
1: अचीवमेंट्स, पोजीशन, कुर्सी,
2: वो सारी हमारी अचीवमेंट्स है ना वो, चाहे वो हमारी एजुकेशन है, जितनी डिग्रीज हमारी बढ़ती गई, जितनी वेल्थ एंड प्रॉपर्टी बढ़ती गई, जितनी पोजीशन बढ़ती गई, उसको हमने पावर का शब्द दिया कि दिस पर्सन इज पावरफुल, राइट। अब ये लाइन इतनी ब्यूटिफुल है, ऑथेंटिक पावर। ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन, ट्रू,
1: जो आप कह रहे थे ना, रियल सोल की असली क्वालिटी,
2: क्योंकि जो सत्य, जिसको कहते हैं ना सत्य शक्ति, द ट्रू पावर विच नो वन कैन शेक

0: एंड विच यू कैन नेवर लूज. क्योंकि जो बाकी पावर्स ये हमने अभी देखी कि धन की शक्ति, पोजिशन की शक्ति, आपके रोल की शक्ति, ये तो हिल सकती है ना कभी भी.
1: कुर्सी भी हिल जाती है, पैसे भी हिल जाते हैं, आदमी की पोजिशन, हेल्थ,
0: इवन फिजिकल पावर अगर हम देखें तो एज के साथ चेंज हो जाती है, वेरिएबल है.
1: बट सिस्टर अगर किसी को पैरालिसिस हो जाए, क्या गई रही पोजिशन, क्या रहा पैसा, क्या रही हेल्थ, क्या रहा घर का बड़ा, क्या रहा ऑफिस का बड़ा, है ही नहीं कुछ.
0: राइट, द एनीथिंग विच इज आउटसाइड, जो चीजें बाहर हैं वो वेरिएबल है, शेक हो सकते हैं. आज जैसे हम कहते हैं कुर्सी की पावर, तो जब तक कुर्सी है तो वो पावर है. पोजीशन गई, ताकत गई, कंट्रोल गया, दूसरों के ऊपर प्रभाव डालने की जो शक्ति थी वो गई. तो ये सारी जो
1: शक्ति के साथ आदत भी,
0: आदत, प्रभाव डालने की औरों के ऊपर वो आदत नहीं जाती. लेकिन सी दैट इज व्हाई इट्स सो डिफिकल्ट टू गिव अप पोजीशन.
1: अच्छा, मैंने बोला आदत भी गई, वो तो आदत नहीं जाती.
0: नहीं जाती ना आदत.
1: अब रिटायर्ड जनरल्स होते हैं आर्मी के, रिटायर्ड कर्नल्स होते
0: हैं, जाती है, आदत नहीं जाती. और इसीलिए बहुत डिफिकल्ट होता है.
1: इसलिए बार बार सुनाते रहते थे हमारे, हम उस जमाने में ये था, हमने वो किया था.
0: वेरी डिफिकल्ट ना. आप उस शिफ्ट को देखें कि आपकी पोजीशन चेंज हो गई. जो लोग कहना मान रहे थे, कंट्रोल में थे, दे वर बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ पोजीशन, नॉट पावर ऑफ द पर्सन. एक होता है मैं
1: कुर्सी की शक्ति, हाँ, तुम्हारी नहीं.
0: यस, एक है मैं आपकी रिस्पेक्ट के लिए, आपको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ इसलिए आपका कहना मानती हूँ. दैट इज पावर ऑफ द पर्सन.
1: राइट.
0: एक है आपकी इतनी शक्ति है कि आप कुछ कहते हैं उसका प्रभाव मुझ पर पड़ता है, एंड आई वॉन्ट टू डू इट. एंड द अदर थिंग इज कि आप पोजिशन में है और मुझे आपका कहना मानना पड़ता है, मुझे मानना ही होगा.
1: और आपके पहले मैं किसी और का मानता था,
0: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट,
1: और आपके बाद मैं किसी और का मानूंगा.
0: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिस दिन आप उस पोजीशन से जाएंगे मैं आपका नहीं मानूंगी. एंड जिस दिन मैं आपका नहीं मानूंगी क्योंकि आपकी पोजीशन चली गई, या आज भी पोजीशन में रहते हुए मैं अगर कभी नहीं मानू, तो उसका इफेक्ट आपकी मन की स्थिति पर पड़ेगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन की पावर एंड वो ऑथेंटिक पावर. वो जो आपने पढ़ के अभी सुनाया कि ऑथेंटिक पावर इज समथिंग इनसाइड ऑफ यू, इस लाइन को हमें आज पकड़ लेना चाहिए.
1: ऑथेंटिक पावर इज
0: समथिंग इनसाइड ऑफ यू
1: विच
0: नो वन कैन शेक, नो वन कैन टेक अवे. इट विल ऑलवेज बी योर्स, इटर्नल.
1: मतलब मेरे कोई पैसे ले जा सकता है, मेरी बीमारी हो सकती है, मुझे कुछ भी हो सकता है, लेकिन दैट इंटरनल ऑथेंटिक पावर नो वन कैन शेक और टेक इट अवे फ्रॉम यू.
0: राइट,
1: इट्स इटर्नल.
0: राइट. लेकिन आज क्योंकि हमने उस ऑथेंटिक पावर पे फोकस नहीं किया, एनीवन एंड एवरीवन इज एबल टू टेक इट अवे फ्रॉम मी.
1: मींस
0: आज मैंने उसको पावर ही नहीं समझा. पहली बात,
1: उसको क्या पावर नहीं समझा, उसको ही नहीं समझा,
0: उसको ही नहीं समझा, तो उसको शक्ति नहीं समझा. तो किसी की भी कोई भी बात मेरी पावर को ले जाती है ना. जैसे ही किसी,
1: बिफोर दिस फर्स्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं एक सोल हूं.
0: मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें ये अवेयरनेस रहना कि मेरा अपने ऊपर नियंत्रण रखना और रहना ये पावर है.
1: मेरा अपने ऊपर नियंत्रण मीन्स किस चीज के ऊपर?
0: हम पावरफुल व्यक्ति किसको कहते हैं? चलो दुनिया की टर्म्स में बात करते हैं. व्हेन वी से फॉर समबडी और एन ऑर्गेनाइजेशन,
1: जिसके एक शब्द पे, एक फोन कॉल पे, एक चिट्ठी पे सब काम होता है, पावरफुल है.
0: सिंपल, एक व्यक्ति या एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, एक संस्था, किसको हम कहेंगे कि पावरफुल है? जिनका प्रभाव अनेकों पर पड़ता है. जैसे आपने कहा ना, एक फोन किया और काम हो गया, मतलब
1: प्रभाव के अलावा दे कैन डिक्टेट टर्म्स,
0: इन्फ्लुएंस है ना. यू आर एबल टू क्रिएट एन इन्फ्लुएंस ऑन अदर पीपल. एक ऑर्गेनाइजेशन को आप पावरफुल कब कहेंगे? जब वो कुछ ऐसा करेंगे या ऐसा करते हैं जिसका प्रभाव, देर एबल टू क्रिएट अ चेंज, उसका प्रभाव पड़ता है. अब ये सब चीजों को हमने पावर कहा. ये प्रभाव जो हम औरों के ऊपर डाल पाते थे उसको हमने प्रभाव किया. लेकिन मेरा अपने ऊपर प्रभाव,
1: मेरा अपने ऊपर प्रभाव थोड़ा ही,
0: अभी अगर हम चेक करें कि बाहर के प्रभाव हमें पता है कि क्या होता है, ठीक है, जैसे धन की शक्ति का प्रभाव, इकोनॉमी पावर है, साइंस की पावर है, रिलीजन की पावर है, पॉलिटिक्स की पावर है, ये सब पावर्स है, इन पावरफुल शक्तियां हैं, ये धन की शक्ति, विज्ञान की शक्ति, धर्म की शक्ति, राज्य की शक्ति, ये सब शक्तियां हैं। इन सबको शक्ति क्यों कहा गया? इनको इसलिए शक्ति कहा गया क्योंकि इनका प्रभाव अनेक आत्माओं पर पड़ता था। आज धन आ जाए, आपकी जीवन बदल जाएगी, राइट? धन बढ़ता जाता है, आपका जीवन जीने का तरीका बदलता जाता है, तो धन का प्रभाव है आपके जीवन के ऊपर, देश की इकोनॉमी पर, देश का पूरा चलने का तरीका डिपेंड करता है, प्रभाव है धन की शक्ति का। विज्ञान की शक्ति का प्रभाव हम सारा दिन देख रहे हैं, इट हैज जस्ट चेंज्ड द वे वी लिव आवर लाइव्स, इट हैज चेंज्ड इट कम्प्लीटली। धर्म की शक्ति का प्रभाव देखिए, धर्म के नाम पे युद्ध हो जाते हैं, धर्म हमारी बहुत सारी बिलीफ्स और कल्चर्स को इन्फ्लुएंस करता है, मिलियंस ऑफ लोगों की, बिलियंस ऑफ लोगों की एक्चुअली, दैट्स व्हाई इट सेज धर्म कितनी बड़ी शक्ति है। पॉलिटिकल पावर, आज एक लॉ बनेगा देश का, मिलियंस ऑफ लोगों के जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। संबंधों में शक्ति है, एक आत्मा का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, दूसरे का जीवन जीने का तरीका बदल जाता है, दैट्स पावर ऑफ रिलेशनशिप्स। ये सारी वो पावर्स हैं जो बाहर हैं। आज पावर ऑफ मीडिया देखें कि मीडिया किसी को ऊपर उठा सकती है, मीडिया किसी को नीचे गिरा सकती है, मीडिया पूरी दुनिया का नजरिया बदल सकती है, सोचने का तरीका बदल सकती है, पावर ऑफ मीडिया, पावर ऑफ मार्केटिंग। जब बाहर की ये पावर्स हैं सारी, ये उसी चीज को पावर कहा जाएगा जो इतने अनेक आत्माओं पर प्रभाव डालेगी, एंड जिसका मतलब उसका कंट्रोल है उनके ऊपर, पावर टू इन्फ्लुएंस दैट चेंज। अब एक पावर है हमारे अंदर, पर्सनल पावर, ठीक है? पर्सनल पावर का प्रभाव किस पर पड़ेगा? हमारी पर्सनल पावर का प्रभाव, धन का प्रभाव किस पर पड़ता है हमने देखा, विज्ञान का प्रभाव किस पर पड़ता है हमने देखा, रिलीजन का प्रभाव किस पर पड़ता है, मेरी पर्सनल पावर का प्रभाव किस पर पड़ेगा?
1: मेरे अपने ऊपर,
0: मेरी हर सोच फीलिंग के ऊपर।
1: ओके, मेरा अपना प्रभाव,
0: मेरा अपना इन्फ्लुएंस है ना अपनी एवरी थॉट एंड फीलिंग के ऊपर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माय पर्सनालिटी।
1: थॉट का इन्फ्लुएंस मुझ पे
0: साइकिल में आएगा ना, वेरी ट्रू। पावर ऑफ माय पर्सनालिटी, दैट्स पर्सनल पावर, पावर ऑफ माय पर्सनालिटी। जैसे सपोज आप अपनी पर्सनालिटी को देखिए, ठीक है, एज विल बी योर पर्सनालिटी सो विल बी योर एवरी थॉट।
1: उल्टा भी हो सकता है ना सिस्टर, जैसे मेरी सोच है,
0: जैसे आपकी सोच थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वैसे आपकी पर्सनालिटी बन गई।
1: और ओरिजिनल मुझे आप समझाइए, हाँ, कि सबसे पहले जब मैं पैदा हुआ, हाँ, तब कुछ तो पर्सनालिटी संस्कार लेके पैदा हुआ, उन संस्कारों के अनुसार मेरी थॉट्स भी, हाँ, मिलती जुलती हुई,
0: राइट,
1: पसंद ना पसंद हुई,
0: राइट,
1: फिर जैसे जैसे जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते
0: एक पर्सनालिटी बनी ना,
1: बन गई।
0: कुछ अगर जब तक हम उसको चेंज नहीं करते, अभी वो पर्सनालिटी है।
1: मतलब इसको क्लियर कर लेते हैं कि पिछले जन्म से कुछ लेके आया था, अभी कुछ एक्वायर किया, मिल मिला के एक बन गई।
0: पिछले जन्म से लेकर आए, जिस देश में पैदा हुए, जिस वातावरण में पैदा हुए, जिस परिवार के अंदर पैदा हुए, सोशल कंडीशनिंग डिपेंडिंग ऑन आपका पर्सनालिटी बन गई। तो कैसे हुआ? जैसा हम सोच रहे थे वैसे हमारी पर्सनालिटी बन गई। अब जैसी हमारी पर्सनालिटी बन गई वैसी हमारी हर सोच चलती है,
1: और जैसी सोच चल रही है वैसे कर्म करेंगे।
0: हाँ, तो हर प्रभाव देखो किस पर पड़ेगा। सपोज किसी की पर्सनालिटी अहंकार वाली है, तो उसकी हर परिस्थिति में सोच कैसी होगी? किसी की पर्सनालिटी शांति वाली है, तो उसकी हर परिस्थिति में सोच कैसी होगी?
1: सही बात है।
0: किसी की पर्सनालिटी कहेंगे ये बड़े गुस्से वाले, मीन्स पर्सनालिटी कैसी है? गुस्से वाली है। वो गुस्से वाली पर्सनालिटी हर सोच पर कैसे प्रभाव डालेगी? सो वंस दैट पर्सनालिटी गेट्स क्रिएटेड,
1: ये सोच आप स्वयं की कह रही है ना,
0: हमारी अपनी,
1: हाँ,
0: फिर उसका प्रभाव औरों पर भी पड़ेगा।
1: अच्छा,
0: मेरे तो पड़ेगा ही ना औरों के ऊपर,
1: बच्चों लेकिन पे या थोड़ा
0: आसपास जो भी होगा। लेकिन सबसे डीप इम्पैक्ट क्या हो रहा है जो हम देख रहे हैं कि वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो के वॉट ऑल इज पावर, क्योंकि वी नीड टू नो विच पावर कैन इम्पैक्ट वॉट एंड क्रिएट वॉट। तो बाहर की सब पावर्स की हमें नॉलेज है कि उनकी क्या पावर है, वो क्या कुछ को इन्फ्लुएंस कर सकती है और क्या परिवर्तन ला सकती है इस दुनिया के अंदर, वो हमें सारी नॉलेज है। अब सिर्फ ये एक पावर की नॉलेज चाहिए कि ये जो पर्सनल पावर है ये मेरी हर थॉट पर इन्फ्लुएंस करती है, और जैसे जैसे ये मेरी हर थॉट पर इन्फ्लुएंस करती है ये मेरा भविष्य बनाती जाएगी ना। सी राइट नाउ एज विल बी योर पर्सनैलिटी, परिस्थिति आई आपकी उसी अनुसार सोच क्रिएट होगी।
1: करेक्ट।
0: और फिर जैसे आपने अभी कहा, जैसी सोच क्रिएट करेंगे
1: वैसे कर्म करेंगे,
0: वैसा कर्म करेंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल निश्चित कर देंगे।
1: और जो मतलब वो उस फल को डेस्टिनी कहते हैं।
0: डेस्टिनी मतलब माय फ्यूचर ना,
1: तो मैं ही बना रहा हूँ,
0: मैं ही बना रहा हूँ।
1: और सबसे पहले गया वो थॉट पे चला गया, सीड
0: विद माय पर्सनल पावर।
1: सो फाइनली फ्रॉम पावर टू डेस्टिनी,
0: टू डेस्टिनी,
1: दैट मींस दैट आई हैव द पावर टू चेंज माय डेस्टिनी।
0: एग्जैक्टली। Now this is very
1: important. This is such a beautiful thing. मैं सोचा भी नहीं था कि ये बात निकल जाएगी।
0: Because it is very important. क्योंकि आज हम हर एक कहता है मुझे पावरफुल होना है, वो देखो कितने पावरफुल है, मुझे भी उनकी तरह पावरफुल बनना है। क्यों हम पावरफुल बनना चाहते हैं? क्योंकि पावर मीन्स द अबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। लेट से अ सिंपल थिंग कि सपोज मेरा आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो मैंने कुछ कहा या संबंध में कुछ एनर्जी क्रिएट हुई और आपने वो चीज कर दी, ठीक है। सो आई फील आई एम पावरफुल टू इन्फ्लुएंस समवन। वी सी दिस पावर द होल डे। पोजिशन मेरी ऐसी है सपोज कि आज मेरा एक डिसीशन, मेरी एक साइन एक कागज के ऊपर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के 1,00,000 लोगों के जीवन पर प्रभाव डाल देगी। दिस पावर। तो ये सारी पावर्स हमें बाहर दिखाई देती है एंड हम सब पावरफुल बनना चाहते हैं, लेकिन एक्सटर्नल हर एक का रोल अलग अलग है। लेकिन हर एक अगर ये देखे कि मेरी पर्सनल पावर मेरी हर थॉट पर इन्फ्लुएंस करती है, मेरी हर थॉट मेरे कर्म पर इन्फ्लुएंस करती है, मेरा हर कर्म मेरा भाग्य डिसाइड करता है, तो मेरी पर्सनल पावर कितनी होनी चाहिए? आज अगर मैं आत्मा कमजोर हूं, वीक हूं, मेरी अपने पर पावर नहीं है, तो मेरी हर थॉट की क्वालिटी क्या होगी? जिसको हम कहते हैं वीक थॉट, थॉट में पावर ही नहीं है, कितना कमजोर संकल्प क्रिएट किया, कहेंगे ना ऐसे, थोड़ा शक्तिशाली संकल्प क्रिएट करो, कितना कमजोर थॉट क्रिएट किया। तो जब थॉट कमजोर क्रिएट हुई तो कर्म भी कैसा होगा?
1: वो भी कमजोर होगा।
0: भाग्य कैसा बनेगा?
1: कमजोर।
0: सो लेट अस लुक एट दिस ऑथेंटिक पावर। दिस इज वेयर ईच वन ऑफ अस कैन बी पावरफुल। एंड ये शक्ति इटर्नल है। ये शक्ति के लिए हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। ये शक्ति कभी हिल नहीं सकती। ये शक्ति हमारे से कोई छीन नहीं सकता। ये वो शक्ति है, ये है पर्सनल पावर। इससे भी और एक लेवल डीपर अगर हम जाएं, वो है स्पिरिचुअल पावर। एक होती है पर्सनालिटी की पावर जो हमारी हर थॉट बिलीफ पर इन्फ्लुएंस करती है, जिसको हम कहेंगे थॉट पावर, थॉट पावर जैसे कहते हैं। लेकिन उससे भी थोड़ा और गहराई में अगर हम देखें, स्पिरिचुअल पावर जो हमारी कॉन्शियसनेस पर डिपेंडेंट है, वो कॉन्शियसनेस जो आज हम में से मेजोरिटी यूज नहीं कर रहे उस पावर को, वो जो पावर है थोड़ी देर के लिए भी, थोड़ी देर के लिए अभी भी अगर हम ट्राई करें, थोड़ी देर के लिए भी अगर हम उस पावर को कनेक्ट करते हैं, उस पावर में हमारे पास इनर पीस है, उस पावर में हमारे पास कैपेसिटी है अनकंडीशनल प्यार करने की किसी से, उस पावर में हमारे पास कैपेसिटी है अनकंडीशनल एक्सेप्ट करने की किसी भी आत्मा को और किसी भी परिस्थिति को। ये हर आत्मा की स्पिरिचुअल पावर है। एवरी सोल हैज दिस पावर।
1: तो इन ये अगर पावर्स के अनुसार मैं चलूं तो दैट इज कॉल्ड बीइंग शक्ति।
0: दैट इज कॉल्ड बीइंग शक्ति। And every soul has this power and we're not using it. We're not using our own power. And we want to use powers of position. ये अगर हम इस power को use करना शुरू करें, हमारी inner consciousness जो है, जो हमारा जिसको कहेंगे ना core. See, हम core हैं and उसके ऊपर layer, layer, layer, layer, layer, layer, layer, इतनी सारी layers बनी ना जीवन के अंदर. लेकिन वो जो कोर है, सपोज आप एक एग्जांपल लेते हैं, आपके अंदर पावर है हर आत्मा को वो जो है जैसी है उसको एक्सेप्ट करने की, आपके अंदर पावर है, एवरी सोल हैज दिस पावर, ठीक है। अगर आपको उस पावर के बारे में पता नहीं है अपने, ठीक है, वो है बट यू आर नॉट यूजिंग दैट पावर, तो आप किसी की भी छोटी सी बात पर अफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो आपको रिस्पेक्ट किस चीज के लिए करे, फॉर योर पावर ऑफ पोजिशन। हम चाहते हैं उसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं की, उसने मेरा कहना नहीं माना और हम डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि हम पोजिशन की पावर के हिसाब से बाहर से कंट्रोल और रिस्पेक्ट मांग रहे थे, और उस क्षण हमने ये नहीं रियलाइज किया कि मेरे पास आंतरिक शक्ति कौन सी है, कि पावर आई कैन एक्सेप्ट दिस सोल एज दे आर। बट वो कोर इतना डीप है कि बहुत समय से हम उस कोर से बहुत दूर हैं, क्योंकि हम पोजिशन के लेवल पे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, हम पोजिशन के नाम पे रिस्पेक्ट,
1: बैड मैनर्स को भी एक्सेप्ट कर लें।
0: किसी की बैड मैनर्स को क्या करें,
1: एक्सेप्ट कर लें, वो कोई कुछ भी बोल दे और मैं हीरोइन ही, तो दैट इज नॉट पावर, दैट इज वीकनेस। सपोजिंग अ पर्सन इज वेरी, बहुत गाली गलौज करके बात करते, व्हाई शुड आई एक्सेप्ट,
0: व्हाट शुड यू डू,
1: आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट पर्सन,
0: मींस व्हाट शुड,
1: आई जस्ट मेक हिम शट अप और आई विल टेल हिम नॉट टू स्पीक टू मी और टेल हिम टू गेट आउट और आई विल गेट आउट।
0: अच्छा, मीन्स हम उस सिचुएशन से क्या करेंगे,
1: या तो हट जाएंगे, उसको हटा देंगे,
0: किनारा करेंगे, राइट। अब किनारा करना मतलब सामने वाले व्यक्ति की बात का मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, किनारा कर लिया मैंने अपने आप को उससे। एक होता है हम फिजिकली किनारा कर लेते हैं कि आप मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे, मैं उठ के चली जाऊंगी,
1: बस
0: उठ के तो चली गई, लेकिन मन अंदर,
1: मन वो तो वही है, अभी तक चल रहा है कि ये सब ऐसा
0: बोला, किनारा कहाँ
1: किया, इसलिए उठ के गया, मैं इसलिए उठ के
0: चला, किनारा कहाँ किया। और एक हो सकता है मैं यही बैठू, आप बोले जो आपको बोलना है और मैंने किनारा कर लिया, मैंने किनारा कर लिया,
1: दैट्स आल्सो रॉन्ग ना।
0: ओके, व्हाई इज दैट रॉन्ग,
1: अगला आदमी कुछ भी बोलता जाए, दुनिया सुन रही है, चार लोग बैठे हैं,
0: ठीक है, अब एक मिनट,
1: और लोग बोलेंगे कि ये एक्चुअली सच्चा होगा, ये जो बोल रहा है अगला आदमी इसके ऊपर, तो इसलिए एक्सेप्ट करके बैठ गया। कि एक आदमी सपोजिंग मुझे बोला कि तुमने चोरी की, ये क्या, वो क्या, इतना घूस खाया, इतना करप्शन किया, और मैं सुनता जाऊं, और मतलब 10 आदमी जो सुन रहे हैं मेरे आसपास,
0: पहले 10 आदमी को बाद में देखते हैं, पहले अपना और उनका देखते हैं, ठीक है, कि कोई हमें कुछ कह रहा है।
1: बट एक्सेप्टेंस मीन्स कि मैं उसको मैं सच मान रहा हूँ,
0: एक्सेप्टेंस मीन्स आपके लाइन्स, आपका सेंटेंस मेरी मन की स्थिति को टच नहीं कर सकता।
1: रोज मेरे पास चिट्ठियां आती हैं, फलाने क्लब के सेक्रेटरी ने इतने पैसे खा लिए, इस सोसाइटी के क्लब ने वो सेक्रेटरी ने वो खा लिए, इसने हमारे कार्ड्स में चोरी की, इसमें फलाना ये किया, एक दूसरे पे इतना सब कुछ आता है। अगर वो उसको एक्सेप्ट कर ले तो दैट मीन्स हाँ मैं चोर हूँ।
0: एक्शन लेना, सोल्यूशन ढूंढना, डिस्टर्ब होना, बहुत फर्क है।
1: आपका जो शब्द था एक्सेप्टेंस, उसकी
0: एक्सेप्टेंस का मीनिंग क्या
1: है? एक्सेप्टेंस को आप शक्ति कह रहे हैं,
0: एक्सेप्टेंस,
1: और मैं कह रहा हूँ कि एक्सेप्टेंस यहाँ पर कमजोरी है।
0: आपने कुछ मुझे कहा, वो सत्य है या नहीं है वो भी सेकेंडरी,
1: चलो
0: मेरे मन की स्थिति डिस्टर्ब हुई, मीन्स आई एम नॉट यूजिंग माई स्पिरिचुअल पावर। आई हैव द पावर टू रिमेन स्टेबल, आई हैव, बट आई एम नॉट यूजिंग दैट पावर, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब।
1: लेकिन क्यों करें, अपने मन की अशांति से कुछ बॉडी में से केमिकल्स बनते हैं,
0: पर कंट्रोल,
1: और मेरी एनर्जी डिप्लीट होती,
0: नुकसान कितने हुए मेरे, ये हमेशा याद रखना होगा। हम आज 10 रुपए का नुकसान नहीं होने देते अपना, नहीं नहीं इसमें मेरा नुकसान हो जाएगा, इसमें मुझे फायदा होगा, सारे फायदे और नुकसान तो याद रहते हैं,
1: पैसों के,
0: किसी भी चीज का नुकसान और फायदा याद है सर, अपने फायदे और नुकसान। आज एक दूसरे पावरफुल व्यक्ति से भी, कोई जो पोजीशन ऑफ पावर में है उससे भी हम कहते हैं इससे पहचान बना के रखनी चाहिए। क्यों पहचान इससे बना के रखनी चाहिए, तो पावरफुल व्यक्ति है उससे पहचान बना के रखनी चाहिए, और अपनी पावर से पहचान नहीं है। लुक दिस, द मोर आई एम लुकिंग फॉर
1: अपनी पावर की नॉलेज हमको ना स्कूल में मिली,

0: ना कहीं क्लास में पता चली, तो हम कैसे करेंगे?
1: अभी यूज करेंगे ना, है कहीं से लानी नहीं है, बनानी नहीं है, क्रिएट नहीं करनी है, सिर्फ यूज करनी है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट दिस इज पावर. दैट्स व्हाई योर दैट लाइन शुड बी आवर मंत्र फॉर टुडे. इट्स लाइक मंत्र, ऑथेंटिक पावर ढूंढ रहे हैं ना. ऑथेंटिक पावर इज समथिंग इनसाइड ऑफ यू विच नो वन कैन शेक, नो वन कैन टेक अवे. अगर ये सारा दिन ये मंत्र होते हैं जीवन जीने के, तो कहते हैं ना मंत्र जाप करना है, जाप करते रहो इस मंत्र का. तो मंत्र का जाप करना मतलब वो मंत्र आपका जीवन का जीने का तरीका बन जाए. मंत्र जाप सिर्फ सी मंत्र जाप सिर्फ एक शब्द नहीं होता है, जिसको हम शब्द का तो उच्चारण कर रहे हैं लेकिन सोच और कर्म में फिर वही कमजोरी चीज कर रहे हैं. मंत्र मीन्स वो शब्द जो हमारे मन को पावरफुल बना दे, थॉट्स को, कर्म को पावरफुल बना दे,
0: जब हम हमारे मन को तार दे.
1: इसीलिए लोग कहते हैं ना मंत्र में शक्ति है. लेकिन मंत्र में शक्ति है मतलब फिर वो मंत्र वैसा हो जो हमें वो शक्तिशाली बना दे ना. सिर्फ मैं एक तरफ से तो एक शब्द का उच्चारण करते जाऊं, थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा वहां से तो मैं हो गई रिएक्ट, तो वो मंत्र नहीं था मेरे लिए फिर. तो इसको आज मंत्र बनाते हैं और इसको पकड़ के रखना है. ऑथेंटिक पावर इज समथिंग इनसाइड ऑफ मी, नॉट आउटसाइड ऑफ मी. इसको कोई हिला नहीं सकता, इसको कोई ले नहीं सकता, एंड ये इटर्नल है. जब हम कहते हैं पावर, हम सोचते थे पावर वो जो दूसरों को कंट्रोल कर सके. इस लाइन से हमें समझ में आता है पावर वो जिसका अपने ऊपर कंट्रोल हो.
0: दिस इज ब्यूटिफुल. लेकिन ये थॉट टोटली ऑपोजिट ऑफ माई थिंकिंग है.
1: हमें लगता था पावरफुल वो जिसका लोग कहना माने, पावरफुल वो जो खुद खुद का कहना माने. दिस इज पावरफुल.
0: इट्स अ ब्यूटिफुल वे ऑफ एंडिंग दिस एपिसोड सिस्टर. पावरफुल वो जो खुद खुद का कहना माने. और आज तक हम समझते आ रहे थे कि पावरफुल
1: वो जिसका दुनिया कहना माने. पावरफुल हम समझते थे वो जो औरों पर प्रभाव डाले. लेकिन पावरफुल वो जो अपनी सोच पर प्रभाव डाल के अपना भाग्य बदल दे.
0: इस पे मैं डिबेट तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है और समझ में भी आ रही, लेकिन थोड़ा सा और इस पे चर्चा करना चाहूंगा इस पे अगले एपिसोड में. एक छोटा मेडिटेशन कर लें.
1: लेट्स सिट बैक. अपने आप को देखे. आई द बींग, I am a powerful soul. आज दिन तक बाह्य शक्तियों का प्रभाव देखा. हर एक शक्ति ने अनेकों का जीवन परिवर्तन कर दिया. लेकिन मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है, the power of my consciousness. The core, the inner truth. ये शक्ति मेरी हर सोच, फीलिंग, कर्म और मेरे भाग्य पर प्रभाव डालती है. This is true power, genuine power, which is mine and no one can take it away from me. आज सारा दिन मेरे जीवन का मंत्र है ये. आई एम अ पावरफुल सोल. मैं शक्तिशाली आत्मा. मेरी हर सोच, हर शब्द, हर कर्म मेरी चॉइस के. आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ. ओम शांति.
0: Om Shanti. Thank you so much.
1: Om Shanti.
0: Thank you.
2: External powers are physical power of the body, power of knowledge, role, position, achievement, and wealth. These external powers are variable and temporary.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वो ही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूं रेडियो प्रोग्राम खाबों का सफर। आइए इस खाबों के सफर को आज खूबसूरत बनाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और पिछली बार भी हमने बहुत सारे एच अक्षर से शुरू होने वाले खूबसूरत 50s और 60s के ओल्ड मेलोडीज आपको सुनाया था, और आज के इस शो में भी हम लोग एच अक्षर से शुरू होने वाले 50s और 60s के बहुत ही खूबसूरत नगमे आपको सुनाने वाला हूं। और ऐसा लगता है जब हम लोग अपने जीवन में पुराने गीतों को सुनते हैं, वक्त निकाल कर जब हम पुराने फिल्मी गीतों को सुनते हैं, तो कहीं न कहीं जीवन के उस सुखद पलों को याद करते हैं या सुखद अनुभूति करते हैं। इसलिए कहा जाता है तारे और इंसान में कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही किसी की खुशी के लिए खुद को तोड़ लेते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में, आप सभी को ले चलता हूं मैं। एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जिसे कृष्णा राजेंद्र कृष्ण साहब ने लिखा था और लता मोहम्मद रफी साहब ने इसे गाया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से सराबोर ये खूबसूरत गीत है इंतकाम फिल्म का, जो 1969 में रिलीज हुई थी। तो इस इंतकाम मूवी में जो है, नाम से ही पता चलता है कि जहाँ पर एक ज्वाला जिसको कह सकते हैं, यहाँ किसी से बदला लेने की भाव को यहाँ पर दिखाया गया है। तो आइए ये खूबसूरत फिल्म जो 1969 में बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही, 1969 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, इसमें मुख्य किरदार के रूप में संजय खान और अशोक कुमार और जीवन नेगेटिव रोल में, और एक्ट्रेस थे साधना, और इसके साथ ही एक और हीरोइन जो बहुत ही पॉपुलर रही उस जमाने की, डांसर या कह सकते हैं आइटम गर्ल भी, हेलन इस फिल्म में थी। और इस फिल्म में जो है एक सिंपल स्टोरी है, रीटा को झूठे मोहनलाल द्वारा फंसाया गया है। जब वह बदला लेना चाहती है तो जेल से उसकी रिहाई के बाद वो हीरा लाल मोहनलाल के पूर्व व्यापार भागीदार से मिलती है और साथ में उसे नीचे लाने के लिए साजिश बनाते हैं। तो पूरे फिल्म में इस छोटे से काम को अंजाम देने के लिए 3 घंटे का फिल्म बनाया है, और संजय खान और अशोक कुमार का बहुत ही अच्छा रोल है इसमें। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ इस गीत की तरह। इसमें जो एच अक्षर से शुरू होने वाला गाना है वो है हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, अभी आपके लिए, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम को, और मैं हूं आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूं बहुत सारे 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज। आपको सुनाने की कोशिश मेरी जारी रहती है इस कार्यक्रम के माध्यम से, और आपके SMS और आपके फोन कॉल्स मुझे बहुत उत्साहित करता है, मुझे बहुत ही खुशी प्रदान करता है। मैं 1960 का एक बहुत ही खूबसूरत गीत मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, और ये बहुत ही पॉपुलर फिल्म का है, मुगले आजम। जी हाँ, 1960 में ये ब्लैक एंड व्हाइट में बनी थी, और उसके बाद कुछ सालों पहले इसको फिर रीमेक किया गया, कलर में भी इसको बनाया गया, और कलर में भी लोगों ने उतना ही इसे पसंद किया जितना ब्लैक एंड व्हाइट में लोगों ने इसको पसंद किया था। ये मूवी जो है बहुत ही

तो पूरी फिल्म इस पर पिक्चराइज किया गया और बहुत ही खूबसूरत गीत है और बॉक्स ऑफिस पर 55 मिलियन उस जमाने में इस फिल्म ने कमाई की थी। तो आइए 5 अगस्त 1960 को मुंबई में ये फिल्म रिलीज हुई थी और के आसिफ के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी। इस फिल्म का एक खूबसूरत गीत जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ शुरू होता है अक्षर एच से, हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती। तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत गाने को और फिल्म के हीरो दिलीप कुमार रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इस गीत को। आप सुना है रेडियो मधुबन, आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज। कहते हैं तेरी आंखों में जब से मैंने अपना अक्स देखा है, मेरे चेहरे को कोई आईना अच्छा नहीं लगता।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। ख्वाबों के सफर में आइए। बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुनाए हैं और मुगले आजम फिल्म का एक खूबसूरत गाना आपने अभी सुना और आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूँ ओपी नैयर साहब का संगीतबद्ध फिर वही दिल लाया हूँ, 1963 का ये फिल्म है। इसमें भी एक गाना है जो यच अक्षर से शुरू होता है और बहुत ही खूबसूरत गाना है जिसकी लाइनें मैं बोलते ही आपके दिमाग में शायद गाना शुरू हो जाएगा। हमदम मेरे खेल न जानो चाहत के इकरार को। जी हाँ, ये मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा खूबसूरत गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब ने इसे गाया था। ओपी नैयर का संगीतबद्ध ये गीत 1963 में रिलीज हुआ था फिर वही दिल लाया हूँ इस एल्बम से। अगर मैं फिल्म के बारे में बात करूं, कई बार होता है कि प्यार हो जाता है, फिर शादी हो जाती है, फिर एक प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी में बदल जाते हैं और पति पत्नी में बदलते ही दोनों में कुछ असमंजसता आ जाती है और फिर दोनों

अलग हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर पति पत्नी अलग हो जाते हैं। पति जब उसे बेटे से नहीं मिलने देता है तो वो बेटे के अपहरण की योजना बनाती है और पूरी फिल्म इसी पर पिक्चराइज किया गया। तो यहाँ पर इसमें कलाकार है जो पत्नी का रोल निभाया है आशा पारेख ने, और उसके साथ हीरो है जॉय मुखर्जी और विलन के रूप में प्राण साहब है। और इसमें बीच बीच में सहायक कलाकार जो है तबस्सुम है और राजेंद्र नाथ भी अच्छा रोल अदा किया है। तो ये कुछ खास बात है इस फिल्म में। आप सुना है रेडियो पुणे की आवाज, खबरों का सफर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज। आइए ख्वाबों के सफर में आगे बढ़ते हुए हम लोग बहुत ही खूबसूरत गीत सुन रहे थे अभी 1960s का। अब कहते हैं कि कोई भी रिश्ता न होने पर भी जो रिश्ता निभाता है, कोई भी रिश्ता न होने पर भी जो रिश्ता निभाता है, वो रिश्ता एक दिन दिल की गहराइयों को छू जाता है। जी हाँ, जरूर छू जाता है, क्योंकि बात ही उस तरह की है। उस व्यक्ति के अंदर जो कभी किसी के साथ कोई रिश्ता ना हो, फिर भी अगर उसने हेल्प करता है, मदद करता है, तो बड़ी बात है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और गीत आपको सुनाना चाहूंगा। अभी 1965 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम है मेरे सनम। जी हाँ, ये भी बहुत ही अच्छा फिल्म बना था मेरे सनम, 1965 में आई थी। इसमें जो कलाकार है वो विश्वजीत चटर्जी, मुमताज, आशा पारेख, प्राण और राजेंद्र नाथ, ये सारे लोगों ने इस फिल्म में काम किया। और इसमें जो संगीत से सवारा था ओपी नैयर साहब ने, और गायक थे मोहम्मद रफी, आशा भोसले। इस फिल्म के जो गीत लिखे थे वो मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने लिखा था। और मेरे सनम इस जो फिल्म में स्टोरी इस तरह का है, छोटा सा, एक लड़की है जिसका नाम है नीना, और उसकी माँ व एक अन्य निवास स्थान पर रहते हैं जहाँ उसे कुमार से प्यार हो जाता है। जब दोनों शादी करने का फैसला करते हैं तब नीना को कुमार के अंधेरे अतीत का पता चलता है, और फिर वहां पर क्लाइमेक्स आता है फिल्म का। तो ये फिल्म 13 नवंबर 1965 को रिलीज हुई थी। जब प्यार हो जाता है, प्यार होने के बाद प्रेमी का अंधकार में जीवन के बारे में पता चलता है, तो तब क्या करे, ऐसी मुश्किलें आती हैं। तो आइए मैं इस फिल्म का एक खूबसूरत गीत आपको सुनाने वाला हूं, और ये गीत है मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इसे लिखा है, मेरे सनम का हमदम मेरे मान भी जाओ। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर, ख्वाबों का सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

1967 में एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था शब्बा खैर, और इस फिल्म में जो विशेष शम्मी कपूर साहब ने रोल अदा किया था, और बहुत ही खूबसूरत गाना है एच अक्षर से इस फिल्म में, हमें कोई गम नहीं था गमे आशिकी से पहले। अक्सर ऐसा ही होता है, जब जिंदगी में कोई गम ना हो, अगर उसे इश्क हो जाए तो फिर गम की शुरुआत हो जाती है। और ऐसे ही भाव लेकर ये गीत को लिखा है फयाज हाशमी जी ने, और मेहंदी हसन साहब ने इसे गाया है। बहुत ही प्यारा सा गीत है, मेहंदी हसन साहब का ही संगीत इसमें है। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, और कहते हैं कि खुद ही दे जाओगे तो बेहतर है, वरना हम दिल चुरा भी लेते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपका हम सफर सनी, और बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नौशाद साहब का संगीत से सराबोर एक फिल्म 1964 में आई थी। ये बहुत ही पॉपुलर फिल्म है जिसका नाम सुनते ही आपको लगेगा हाँ सही है। और ये फिल्म बहुत ही अच्छा दिलीप कुमार पर पिक्चराइज किया गया था, लीडर जिसका नाम था, और ये 1964 में रिलीज हुई थी। एक वकालत पढ़ने वाला विद्यार्थी जो है साहसपूर्वक सरकार की आलोचना करता है और खूबसूरत महिला के साथ इश्कबाजी करता है, और जहां जाता है मुसीबत में पड़ता है जब तक कि उस पर राजनीतिक की हत्या का आरोप नहीं लग जाता है। तो इस तरह से ये दिलीप कुमार पर पिक्चराइज किया गया खूबसूरत फिल्म है, देशभक्ति से सराबोर। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जिसको शायद आपने सुना होगा, दिलीप कुमार और वैजयंती माला और जयंत मोतीलाल और सप्रू, इन सभी ने मिलकर इस फिल्म में काम किया है। और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे गीत हैं, और जो गीत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही प्यारा सा गीत है लीडर फिल्म का, शकील बदाई साहब का लिखा, मोहम्मद रफी साहब का गाया, नौशाद साहब का संगीत। ये गीत है हमसे मोहब्बत हमसे लड़ाई। आइए सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को। अभी आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज। जी हाँ, मेहरबा हो के बुला लो मुझको, चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी ना सकूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 1968 में एक और खूबसूरत फिल्म आई थी जिसका नाम था सरस्वती चंद्र। जी हाँ, ये फिल्म खास नूतन पर पिक्चराइज किया गया था और एक महिला का रोल फैमिली को बनाए रखने में कितना अच्छा होता है ये इसमें दिखाया गया है। और नूतन को पिक्चराइज कर, नूतन को विशेष इस फिल्म का मेन हीरोइन बताया गया है। नूतन, विजया चौधरी, रमेश देव, सुलोचना और बीएम व्यास, ये सारे लोग इस फिल्म में काम किया है। और इस फिल्म को संगीत से संवारा था कल्याण जी आनंद जी ने। बहुत ही अच्छा संगीत के साथ साथ इसमें बहुत सारे जो गाने थे वो सारे ही गाने इसमें हिट है और हर गाना जो है सुनकर दिल को कहीं ना कहीं आराम मिलता है, खुशी मिलता है। गोविंद सरैया का निर्देशन में ये फिल्म बना था और इसको निर्माण किया था विवेक जी ने। इसमें ऐसा बताया गया है कि सरस्वती चंद्र जो है उसकी शादी हो जाती है और उनकी शादी टूट जाती है। कुमुद की बाद में शादी एक शराबी से की जाती है और वर्षों बाद वो विधवा बनती है तो कुमुद और सरस्वती चंद्र एक बार फिर से आमने सामने आते हैं। तो उस समय ये पूरी फिल्म जो है इसी तरह का जो सिचुएशन है वो बताया गया है। अभी जो मैं गीत आपको सुनाने वाला हूँ वो बहुत ही खूबसूरत गीत है इस फिल्म का। इंदिवर साहब ने इस गीत को लिखा है, मुकेश जी ने इस गीत को गाया है। गीत के बोल इस प्रकार है, हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को। आइए सुनते हैं इस गीत को। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज। ख्वाबो हर सफर, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: गुजर गया दिन अपनी तमाम रौनक लेकर, जिंदगी ने वफा की तो कल फिर सिलसिले होंगे। इसी के साथ आइए, आखिरी गाना इस कार्यक्रम का मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। हेमंत कुमार के डायरेक्शन में लता मंगेशकर का गाया, गुलजार साहब का लिखा, फिल्म खामोशी जो 1969 में रिलीज हुई थी। जी हाँ, ये फिल्म एक विशेष नर्स पर पिक्चराइज किया गया था। इस फिल्म में नर्स का जो रोल है बहुत ही अच्छी तरह से, नर्स और पेशेंट के बीच में जो सुंदर रिश्ता बताया गया है वो इसमें बताने की पूरी कोशिश की। राजेश खन्ना, वेदा रेमन, ललिता पवार और स्नेहलता पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत फिल्म है। और फिल्म का निर्माण जो है गीतांजलि ने किया था और कमल गोस सिनेमाटोग्राफी थी और अमित सेन ने इस फिल्म का प्रोडक्शन किया था 1969 में। नर्स है जिसका नाम राधा है और नर्स का कार्य करती है रोगियों को शर्त विहीन प्रेम देना और फिक्र करना है, और ये करते करते वो स्वयं को उनके साथ प्रेम करते हुए पाती है। तो आइए इस खूबसूरत फिल्म खामोशी का ये गाना आपके नाम, और इसी के साथ मैं चाहूंगा इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा इसी तरह कुछ 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज को लेकर, आपके साथ रहूंगा इसी वादे के साथ। अब मैं चाहूंगा इजाजत, और जाते जाते दो लाइनें आपके नाम। लोग रोने के लिए कंधा नहीं देते, मरने तक इंतजार करते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज। सलाम नमस्ते, अमा गनीसा। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुश।

0: आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है, उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी, मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं, 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा आनंद
1: नमस्कार
0: लुटा।
1: साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: स्वागत है आज के इस करियर ऑप्शन प्रोग्राम में, जहां पर हम लोग इस प्रोग्राम को जो है जीवन विकास नाम से भी जानते हैं। तो कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारी जीवन यात्रा में जो भी मेन तो है हमारा पढ़ाई, पढ़ाई के बाद फिर हम लोग अपना एक बिजनेस करते हैं या फिर अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करते हैं या फिर कहीं काम करते हैं किसी कंपनी में, तो इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन तो होता नहीं है। और इन्हीं चीजों में जो है करियर करे, बिजनेस करे, कैसे करे, इसके बारे में हम लोग सोचते रहते हैं। तो ये सोचने का मौका हमें 10वीं 12वीं के बाद हम लोग इससे फोकस करते हैं, और कई लोग तो 8वीं 9वीं से भी शुरू कर देते हैं, और कई लोग बचपन से ही माँ बाप जो है बोलते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, तो इस तरह की कई बातें होती हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपको इन सारी बातों से, जो लोग ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं, सफल करियर बना चुके हैं, उन लोगों की जीवन कहानी से हम जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपना करियर को कैसे चूज किया। तो आज के हमारे खास मेहमान गुणवंत परमार सर हैं, जिनसे हम लोग बात करेंगे। आप दूरदर्शन से रिटायर हुए हैं ग्राफिक डिजाइनर के पोस्ट से, और दूरदर्शन में काफी आपने अलग अलग काम भी किया, मुंबई, गुजरात वगैरह, दिल्ली। तो मैं चाहूंगा कि आज हम लोग गुणवंत परमार जी की जीवन यात्रा के साथ साथ करियर पे उन्होंने किस तरह से कब फोकस किया, कैसे उनका करियर उन्होंने बनाया, क्या क्या पापड़ बेले और सफलता होने कब मिली, ये सारी बातें हम उनसे जानने वाले हैं। तो आप सभी की तरफ से गुणवंत परमार जी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं गुणवंत सर?
4: बस मजे में, ओम शांति।
3: ओम शांति। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे फिर से एक बार आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो गुणवंत सर, मैं चाहूंगा कि आप करियर के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले तो अभी आप बताइए कि आपका बचपन कहाँ भी था और किस जगह से आपने स्कूलिंग वगैरह जो है, प्राइमरी एजुकेशन जो हमारा बोलते हैं, वो कहाँ और कैसे, और उस समय आपके माता पिता क्या करते थे, थोड़ा सा बताइए।
4: राइट। हाँ जी, तो मेरा तो जन्म अहमदाबाद में हुआ था। हाँ। और मैं अभी जहाँ रह रहा हूँ इनकम टैक्स, वो पहले मैं असारवा एरिया में मकान था हमारा।
3: हाँ हाँ।
4: और फादर मदर दोनों मिल में सर्विस करते थे। हम दो भाई और तीन बहनें थे। मैं सबसे छोटा लड़का भाइयों में, मेरे से दो बड़े भाई थे। वो बड़े भाई तो सर ये गवर्नमेंट जॉब करते थे, उससे बीच वाले जो भाई है वो सेक्रेटरी ऑफ यूथ एंड कल्चरल एक्टिविटी थे। वो कोरोना टाइम में एक्सपायर हुए। तो बड़े भाई उससे पहले हुए थे। मैं फिर अहमदाबाद ओम नगर सोसाइटी जहाँ कहते असर भाई रहे वहाँ रहता थे। वहाँ मेरा जन्म हुआ तो 4 साल के बाद स्कूल में रखना, तो मेरे बगल में ही यानी मेरे घर के पास में ही स्कूल था। अच्छा। और बीच में सिर्फ एक दीवार थी, तो मुझे पिताजी उठा के रख देते थे ऐसे ही जब स्कूल में पढ़ते।
3: तो वो गवर्नमेंट स्कूल थी कि प्राइवेट स्कूल थी?
4: नहीं, गवर्नमेंट स्कूल थी।
3: अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल।
4: एक से चार तक वहाँ पढ़ा, फिर चार के बाद दूसरी को एक स्कूल थी, वो भी उसमें 4 से 2 साल ही वहाँ रहा। बाद में असारवा विद्यालय करके थी असारवा में, उसमें मैं 11वीं तक वहाँ पढ़ा।
3: अच्छा, उसके बाद में वो स्कूल क्या दूर था कि वो भी पास ही था?
4: नहीं, वहाँ से दूर था, साइकिल लेके जाते थे हम थोड़ा।
3: अच्छा अच्छा।
4: या तो बस है, मगर बचपन में मुझे बस में वॉमिटिंग बहुत होती थी, यानी थोड़ा भी एक दो स्टॉपेज गया तो बस में उल्टी हो जाती थी।
3: अच्छा अच्छा।
4: तो ज्यादा बस में नहीं बैठता था, फिर पिताजी ने साइकिल लेके साइकिल पे जाते थे।
3: अच्छा,
4: और स्टडी किया 11 तक। 11 के बाद हमने CN कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट ज्वाइन किया मैंने।
3: अच्छा।
4: उसमें आर्ट का कोर्स किया। जब मैं कॉलेज में था इसमें पढ़ता, तो पिताजी तो मिल में सर्विस करते थे, तो पिताजी को ये आर्ट या इसका कुछ नॉलेज इतना नहीं। वो बात बाद में मुझे डांटते थे कि भाई लीटा था, यानी ड्राइंग करने से आपका लाइफ नहीं बनेगा, कुछ पढ़ो, कुछ ठोस पढ़ाई करो, डिग्री पाओ तो कुछ बनेगा, ऐसा बात बात कहते थे।
3: अच्छा।
4: जब मैंने कॉलेज होने के बाद मुझे सिविल हॉस्पिटल में आई डिपार्टमेंट में सर्विस मिल गया था।
3: अच्छा।

0: फाइन आर्ट्स
1: आर्ट्स वाला फिर आई डिपार्टमेंट में कैसे है?
0: आई डिपार्टमेंट में आर्टिस्ट का पोस्ट था,
1: अच्छा
0: वहाँ
1: उसमें क्या
0: ड्राइंग
1: करना
0: का,
1: होता था आपको?
0: वहाँ वहाँ जो डॉक्टर ढांडा करके बहुत वेल नोन आँख के डॉक्टर थे,
1: हाँ
0: उनके मैं ऑपरेशन मुझे दिखाते थे ऑपरेशन
1: हाँ
0: थिएटर में जाके, फिर वो पूरा ऑपरेशन कैसा उसका मैं बाहर आके स्केच बनाता था, स्केचेस, तो
1: अच्छा
0: वो स्केच के ऊपर से वो स्टूडेंट को सिखाते थे कि भाई ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। सब स्टूडेंट को तो
1: हाँ
0: ऑपरेशन थिएटर में नहीं ले जा सकते,
1: बिल्कुल
0: फिर
1: बिल्कुल
0: कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के वो मेरे स्केचेस के ऊपर से वो बताते थे कि ऐसा ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। तो आर्टिस्ट की पोस्ट वहां थी, उसमें 2 साल करीबन सर्विस किया। बाद में मैं ऐसे रमत में ही अप्लाई कर दिया था, बॉम्बे दूरदर्शन में पोस्ट आया था आर्टिस्ट का, ग्राफिक आर्टिस्ट।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: मैं और मेरा एक फ्रेंड था बिनर पटेल कहते, दोनों ने हमने अप्लाई किया तो इंटरव्यू आ गया। इंटरव्यू आया तो हमने तो बॉम्बे देखा नहीं था लाइफ में, कभी गए नहीं थे, तो
1: हाँ हाँ हाँ
0: मेरा
1: हाँ
0: फ्रेंड बोला चलो घूम के आते अपन,
1: अच्छा
0: इंटरव्यू
1: अच्छा
0: तो आया
1: अच्छा
0: है तो उसी बहाने घूम के आते। तो एक्चुअली इंटरव्यू को तो हमने ऐसे ही दिया, ऐसे ही कि
1: बिल्कुल
0: जैसे हम
1: बिल्कुल
0: घूमने गए, सीरियसली नहीं लिया था उसको हमने,
1: बिल्कुल
0: मगर
1: बिल्कुल
0: इंटरव्यू में लकीली हमको सिलेक्ट हो गए। तो घर आए, जैसे वहां से बॉम्बे से अहमदाबाद, अहमदाबाद आए तो सीधा टेलीग्राम आ गए, आप सिलेक्ट हो गए, आपको इमिडिएटली ज्वाइन करना है। और तब मैं सर्विस करता था, फादर मदर छोड़ने के लिए तैयार नहीं गया, तो तुम वहां जाओगे तो हम, और मैं सबसे छोटा था, मेरी जिम्मेदारी रहती थी फादर मदर के साथ रहने
1: तो उस समय फिर घर में कौन कौन थे, बाकी लोग थे
0: उस
1: क्या?
0: समय। घर में बड़े भाई भी थे, वो तीनों, वो दोनों भाई भी थे, मेरी सिस्टर दोनों की शादी हो गई थी,
1: हाँ।
0: और काफी, मगर फैमिली बड़ा था तो पिताजी और माताजी मिल में थे, अर्निंग
1: तो
0: करते तो
1: तभी भी
0: फाइनेंशियल
1: वो मिल
0: थोड़ा
1: में
0: तकलीफ
1: काम
0: होता।
1: करते थे पिताजी और माताजी?
0: हाँ,
1: अच्छा
0: तभी
1: अच्छा
0: भी कभी कभी रात को जाते थे, वो लाइट लेट नाइट ड्यूटी होती थी ना, उसमें
1: हाँ
0: कभी
1: हाँ
0: कभी जाते, वैसे और रिटायर। फिर मैंने जब वो सिविल के तनख्वाह ला के दिया 350 रुपये उस टाइम फर्स्ट टाइम, तो
1: हाँ हाँ
0: पिताजी
1: हाँ
0: ऐसे गदगद हो गए कि यार मैंने खाम खा तुमको डांटा ही, लीटा में से ही तूने तो बहुत कमाई कर ली है उसको, क्योंकि पूरे महीने के उनके 100 रुपये मिलते थे और मेरे एक ही महीने में सीधा 350 तनख्वाह गए। तो माता जी और पिताजी तो एकदम खुश हो गए कि चलो इनके तो लाइफ बन गई करके। फिर ऐसे ही 2 साल होने के बाद जब बॉम्बे इंटरव्यू देने गए, सिलेक्ट हो गए, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं कि भाई तुम वहां जाओगे तो, वैसे बड़े भाई
1: बिल्कुल
0: भी साथ में थे, उनकी भी तनख्वाह थी, घर चल रहा था, ऐसा कुछ फाइनेंशियल फिर धीरे धीरे कम प्रॉब्लम नहीं
1: स्टेबल हो
0: थे,
1: गया था।
0: स्टेबल हो गया था।
1: जी जी
0: फिर
1: जी
0: मुझे पिताजी ने बोला कि देखो हमने तो तुमको पढ़ाया लिखाया, तुमको पंखे आई है, अब तुम उड़ो, तुमको जहाँ उड़ना है। यानी पिताजी की मर्जी थी कि हम जाए, मम्मी की थोड़ी कम मर्जी थी, फिर
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: भी हम वहाँ नोटिस में भर के सिविल हॉस्पिटल में वो छोड़ के, मैं और मेरा बिनल पटेल फ्रेंड था, वो दोनों ज्वाइन किए
1: तो
0: बॉम्बे से।
1: सिविल हॉस्पिटल वाले आपको मना नहीं कर रहे थे?
0: ना मना ही कर रहे थे कि मत जाओ करके, तुम्हारे जैसे आर्टिस्ट हमको मिलेंगे नहीं, मगर वहां मुझे तब बहुत खराब अनुभव ये हुआ कि वो जो डॉक्टर थे बहुत नामी डॉक्टर थे, उनके ऑपरेशन के सब स्केचेस मैं करता था, और उन्होंने लंदन में जाके एक बुक लिखी थी कॉर्नियल ग्राफ्टिंग, यानी आंख के ऊपर ही कॉर्नियल ग्राफ्टिंग, कैसे आंख बदलने का जो ऑपरेशन होता है उसके ऊपर अगर लिखा, बुक लिखी थी। वो बुक में करीबन मेरे 150 ड्रॉइंग थे, मैंने खुद ने किए हुए, और उस
1: अच्छा
0: टाइम एक एक दो दो महीना लेकर मैं ड्राइंग करता था। वो पूरे बुक में वो ड्राइंग मेरे ही छपे थे, बुक भी काफी उसकी चर्चा में रही। फिर मैंने
1: तो फिर
0: देखा
1: उसका कुछ
0: कि
1: आपको रॉयल्टी वगैरह दिया क्या
0: नहीं,
1: उसने?
0: मुझे उसके फ्रंट पे जो मैंने एक्नोलेज पढ़ा उसने किसका किसका आभार माना था डॉक्टर ने,
1: हाँ
0: तो उसमें मेरा कहीं नाम निशान नहीं, तो मुझे
1: अच्छा,
0: बहुत बुरा लगा।
1: तो आपने पूछा नहीं फिर उनको बैठ
0: मैंने
1: के?
0: पूछा तो वो क्या डॉक्टर लोग को आर्टिस्ट की इतनी वैल्यू नहीं साइक मेंटली, तो
1: अच्छा
0: उसने
1: अच्छा अच्छा
0: मुझे लाइटली लिया था कि नहीं तुमने तो तनख्वाह ली ड्राइंग की, उसमें क्या है। बाकी लोग जो टाइपिस्ट तक का उसका नाम दिया था, जो नर्स
1: अच्छा
0: उनको अटेंड कर रहे थे ऑपरेशन, वो सबको क्रेडिट दिया था, मेरा
1: हाँ
0: कहीं जिक्र नहीं, तो मुझे बहुत
1: अच्छा
0: बुरा लगा। और उसी टाइम मैंने ये एप्लीकेशन किया था और मैं सिलेक्ट हो गया, तो
1: हाँ
0: छोड़ते नहीं थे, 1 मंथ नोटिस भेज दिया और मैं छोड़ के गया। मैं बोला भाई, बोले तुम क्यों यहाँ, तुमको क्या तकलीफ है। वहाँ के लेडी डॉक्टर थे, उसने मुझे उसकी कार में 1 घंटा घुमाया सिविल के आसपास और समझाया कि तुम मत छोड़। मैं बोला नहीं, मैं गांव जा रहा हूँ, मुझे अहमदाबाद में रहना है, ऐसा झूठ बोल के मैं नौकरी छोड़ दिया और वहां ज्वाइन किया। वहाँ ज्वाइनिंग करने गए तो डायरेक्टर वहाँ का बोलता है कि आपको तो हमने टेलीग्राम भेजा, आपको सीधा दिल्ली जाना है ट्रेनिंग लेने के लिए। टेलीविजन ट्रेनिंग सेंटर उस टाइम दिल्ली में मंडी हाउस में था, और मंडी राजा का जो महल था उसमें ट्रेनिंग थी।
1: अच्छा।
0: मैं बोला यार एक तो अहमदाबाद छोड़ के बॉम्बे है, फिर वापस घर आए तो घर से मना कर रहे थे कि भाई आप दिल्ली जाओगे, फिर कब बॉम्बे आओगे, फिर कैसे रहेगा। मैं ऐसा करके महीना निकाल दिया। तो बाद में उन्होंने लेटेस्ट टेलीग्राम भेजा कि 15 दिन में अगर आप नहीं ज्वाइन करेंगे हमें मजबूरन किसी और को सिलेक्ट करना पड़ेगा।
1: तो उन्होंने उस समय जो आपको टेलीग्राम वगैरह किया था तो क्या अपॉइंटमेंट हो गई थी आपकी?
0: हाँ अपॉइंटमेंट सिलेक्ट कर लिया था।
1: सिलेक्ट कर लिया था तो कितना मंथली पेमेंट वगैरह सब बता दिया था?
0: वो ज्यादा था, यानी अहमदाबाद से थोड़ा ज्यादा था, मगर उत्तर पे मगर वहाँ कैरियर का ऑप्शन ज्यादा था। यहाँ क्या मैं आर्टिस्ट की पोस्ट में पड़ा रहने वाला था,
1: वहाँ मुझे आर्टिस्ट,
0: वहाँ आर्टिस्ट की पोस्ट में पड़ा। मेरे फ्रेंड लोगों ने भी मुझे पुश किया कि नहीं तुम जाओ तुम्हारा लाइफ बन जाएगा, क्योंकि तब टेलीविजन नया नया था, पहला सेंटर खुला था बॉम्बे, उसके बाद दिल्ली, बाद में बॉम्बे खुला था। और वो फर्स्ट ओपनिंग के टाइम ही लगभग करीबन हम 72 में वहाँ ज्वाइन किया।
1: ओके।
0: तो काफी टाइम पहले तो वहाँ ज्वाइन करने गए तो बोला आपको तो सीधा ट्रेनिंग जाना है वहाँ मंडी हाउस दिल्ली, फिर वापस आए कैसे भी घर वाला को पहुंच जाए, फिर हमने टेलीम क्लियर किया ठीक है हम जाते। हाँ। 6 महीने के लिए हम सीधा दिल्ली ट्रेनिंग सेंटर चले गए। वहाँ जो ट्रेनिंग देने के लिए स्टाफ आए तो सीबीसी लंदन से आए, तो पूरा फॉरेनर, और हमने इतना इंग्लिश काफी पढ़ा नहीं था, तो मैंने वहाँ इंग्लिश के क्लासेस ज्वाइन किए और सीखा इंग्लिश की बात। फिर हमको जो सिखाने वाला आया था वहाँ से कैनेडा से सीबीसी से लंदन से, वो आर्ट वर्क करके था, बहुत ही जेंटलमैन था, तो जब तक हम मुंडी ऊपर नीचे नहीं करें तब तक उनको समझाता ही रहता था, उसको पता था कि इनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, फिर भी ड्राइंग कर करके। फिर उसने हमको ऑफर रखा उस टाइम कि आपको हम कनाडा ले जाना चाहते अगर आप तैयार है तो सीबीसी, क्योंकि उसने हमारा काम देखा तो इतना इम्प्रेस हो गया था कि नहीं आप कैसे भी करके आप बोलो। मैं बोला सर हम हमारे फैमिली को छोड़ के इतना दूर नहीं जाए। वो बहुत 6 महीने तक उसने काफी हमको प्रेशर किया कि तुम्हारा गारंटी पासपोर्ट वीसा रहने का सब इंतजाम मैं कर लूंगा, मगर हमारा दोनों का मैं और पटेल का कहता मेरे दोस्त दोनों को ले जाना चाहता था।
1: अच्छा, अच्छा।
0: हमने मना किया कि भाई नहीं हम नहीं आ सकते सॉरी करके।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं। गुनगुन परमार जी बहुत ही अच्छी बातें बताया आपने, अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक और उसके बाद फिर यात्रा जो है दिल्ली में और क्या क्या हुआ उसके बारे में आपसे जानेंगे। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और बहुत ही प्यारी बातें हो रही हैं करियर में और किस तरह से हम लोग जो है, कई बार होता है कि हम लोग आज के समय में जो प्रोफेशन है उसको देखकर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और कई बार जो है कलाएं हैं जो आपके अंदर इनबिल्ट है, जैसे आर्ट की बात करें या संगीत की बात करें या इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की बात करें या डांस की बात करें या फिर आप कुछ ऐसे हट के कुकिंग की बात करें, खाना बनाना भी बहुत बड़ा आर्ट है। तो ये सारी चीजें शायद हम लोग मेन स्ट्रीम में कभी भी परिवार वाले इन चीजों को करने के लिए मना करते हैं, बोले ये क्या चीज है। तो मैं
1: सही
0: भी
1: बात।
0: बीच में एक बार होटल मैनेजमेंट के लिए पिताजी से बात किया तो मेरे को एकदम से उन्होंने बोला कि ये क्या तेरा पोजिशन है। क्या खाना वाना बनाएगा तू, वेटर बनेगा। तो उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ये भी एक करियर है, इसमें प्रोफेशन है और इसमें भी अच्छा कमा सकते हैं। तो मना उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी कुछ ऐसी चीजें। अगर कोई बंदा बोले कि भाई मुझे गिटारिस्ट बनना है, अरे पगला गए, गिटार वटर तो साइड में बाद में बजाना, पहले पढ़ाई करना, पहले पढ़ाई के साथ साथ में आप उसको सैटरडे संडे खाली हॉबीज की तरफ उसको ले लो, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसी कई चीजें हमारे परिवार में होती हैं, लेकिन आपका अगर जिज्ञासा है और बहुत ज्यादा आप उसमें रुचि रखते हैं तो आप वे बिंदास थोड़ी देर के लिए आप कॉम्प्रोमाइज जरूर करें, क्योंकि उस समय पिताजी या माताजी या कोई परिवार वाले आपको समझने वाले नहीं होते अगर आप बताएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप वो चीजों को उनके सामने जाहिर ना करते हुए आप पढ़ाई भी करें हल्का, और साथ में अपने पैशन को जो है बरकरार रखें, क्योंकि पढ़ाई के लिए जो टाइम है वो पढ़ाई में दिए और बाकी जो बचता है आप टाइम, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है उसमें आप पूरी तरह से आप उस पर कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं ताकि आगे बढ़ सकें। तो आइए, इस हम लोग जीवन विकास के कार्यक्रम में बातें कर रहे हैं। गुणवंत परमार जी हमारे साथ गुजरात अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं और वो अपनी यात्रा के बारे में हमें बता ही चुके हैं, और निश्चित तौर पे आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि आगे क्या हुआ होगा, है ना। तो अब दिल्ली पहुंचे हैं हम लोग, 6 महीने का ट्रेनिंग और इनको कनाडा का ऑफर भी मिल रहा है। तो ऐसे ट्रेनिंग किस तरह की, क्या क्या चीजें हुई उसमें, वो अभी जानेंगे। तो गुणवंत परवार जी बताइए, दिल्ली की ट्रेनिंग 6 महीना आप कैसे बिताए, क्या क्या इवेंट हुए, क्या चीजें आपने सीखा और क्या चीजें आपको सिखाई गई?
1: सही बात है। वहाँ दिल्ली में हमको जो प्रोग्राम बनते थे उसके प्रोग्राम के टाइटल बनाने का सिखाया गया, क्योंकि
0: अच्छा,
1: कॉलेज में जो सीखे हैं उससे तो अपार्ट फ्रॉम ये कुछ अलग ही था। उसको
0: ओ
1: कैप्शन कहते थे, टाइटल वगैरह। हर एक प्रोग्राम में हर एक प्रोड्यूसर को एक असाइनमेंट दिया जाता था कि आपको इसको, ये प्रोड्यूसर को हेल्थ के ऊपर प्रोग्राम बनाना है, कोई प्रोड्यूसर को ग्राम जगत के ऊपर, कृषि के ऊपर प्रोग्राम बनाना है, कोई सी प्रोड्यूसर को स्पोर्ट्स के ऊपर, और सबको बांट दिया जाते थे प्रोग्राम। और वो प्रोग्राम वो हमको प्रोड्यूसर आके एक्सप्लेन करता था कि मेरा प्रोग्राम का कंटेंट ऐसा ऐसा है और हमें इसका टाइटल वगैरह बनाए, जैसे फिल्म के टाइटल होते हैं ऐसे प्रोग्राम के टाइटल होते हैं। तो टाइटल एकदम सोच समझ के बनाना पड़ता है। उस टाइटल से ही पता चले कि प्रोग्राम में कंटेंट्स क्या आने वाला है। ऐसे जैसे
0: अच्छा,
1: रसोई शो है तो रसोई शो में रसोई बनती हुई बैकग्राउंड में रखे और उसके ऊपर टाइटल सुपर करे, ऐसा होता है। फिर कुछ सपोज जर्नी का है, ट्रैवल का, तो ट्रेन से जाता हुआ शॉर्ट हो उसके ऊपर टाइटल सुपर करे, या प्लेन जाता हुआ उसमें तो ट्रैवल का पता चले। ऐसा जो भी सब्जेक्ट के ऊपर प्रोग्राम है उसके मुताबिक टाइटल बनाने करें। तो जो जो जो वहाँ प्रोग्राम बनाए उसमें ने बनाए। फिर वहां से स्टूडियो से, वहां से एक बार वहां पे उसी टाइम इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था दिल्ली में।
0: अच्छा,
1: वो फर्स्ट टाइम ट्रेड फेयर दूरदर्शन ने वहां कांच का पूरा स्टूडियो बनाया था वो फेयर में, ताकि पब्लिक को पता चले कि दूरदर्शन टेलीविजन कैसे काम करता है।
0: जी,
1: तो हमारा ड्यूटी वहाँ डेप्यूटी हुआ था, तो मैं, मेरा मित्र फ्रेंड पटेल वगैरह दोनों को आर्टिस्ट करके वहां रखे थे, बाकी प्रोड्यूसर लोग वहाँ प्रोग्राम बनाते थे। हमको वहाँ टाइटल बनाने के लिए मैटर दिया जाता था, हम ऑन द स्पॉट टाइटल बनाते थे। वो कांच से बाहर लोगों को दिखता था कि भाई ये इसका प्रोग्राम का इन्होंने ये टाइटल बनाया, ये कैमरा के ऊपर गया, ये सुपर हुआ, ऐसा करके पूरा समझ में आए पब्लिक को। तो वहां से जब वो भी पूरा अच्छा एक एक्सपीरियंस हुआ हमें। फिर वापस यहाँ से पूरा ट्रेनिंग होने के बाद हमको सर्टिफिकेट दिया गया कि भाई आपने टेलीविजन फर्स्ट बेसिक ट्रेनिंग आपने पूरा किया है। उसके बाद हमको ट्रांसफर फिर वापस बॉम्बे भेज दिया गया। बॉम्बे में करीबन 35 प्रोड्यूसर रहते थे। वो 35 प्रोड्यूसर के सबके रिक्विजेशन, जो टाइटल रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास आती थी, मैं ग्राफिक सुपरवाइजर, फिर मुझे 2 साल में ही वहाँ प्रमोशन मिल गया बॉम्बे में एज ए
0: अच्छा
1: ग्राफिक सुपरवाइजर। तो मैं सुपरवाइजर बना और मेरे साथ जो आर्टिस्ट है वो मेरे अंडर में रहते, तो करीबन 12 आर्टिस्ट थे वहाँ बॉम्बे में। तो 4 लैंग्वेज का काम वहाँ होता था, हिंदी, मराठी, गुजराती और इंग्लिश, और चार
0: अच्छा
1: लैंग्वेज के तीन तीन मैंने आर्टिस्ट बांट दिए थे, 12 थे टोटल, तो तीन तीन हर एक लैंग्वेज के लिए आर्टिस्ट बांट दिए,
0: बिल्कुल
1: 3 गुजराती के, 3 इंग्लिश के, 3 मराठी के, और ऐसे करके वो सबको जैसा भी जिसका भी जो लैंग्वेज का काम है वो उसको मैं मार्क करके दे देता था, और वो लोग प्रोग्राम वो टाइटल वगैरह बनाते थे। टाइटल में कुछ स्पेशल इफेक्ट चाहिए ऐसा कुछ है तो मेरा कांटेक्ट करते थे मुझे सुपरवाइजर।
0: अच्छा
1: फिर वहाँ काफी हमने काम किया, हर एक मेरा अंडर में जो भी आर्टिस्ट था वो करीबन पर डे उस टाइम पे बाय हैंड 70 टाइटल्स बनाते थे पर डे, यानी इतना वर्कलोड रहता था वो,
0: अरे बाप रे
1: और काफी काम लोग करते थे। फिर उसमें धीरे धीरे हमने एनिमेशन यानी थोड़ा मूवमेंट जैसा आए वो दिखाने पड़े ऐसा है। तो उसमें दूरदर्शन बॉम्बे के लिए फर्स्ट टाइम वो केदार शर्मा करके डायरेक्टर थे आउटसाइडर, दूरदर्शन ने उनको फिल्म बनाने के लिए, जिसने राज कपूर को तैयार किया था वो केदार शर्मा नामी डायरेक्टर थे, उनको एक दूरदर्शन ने भीगी पलके करके फिल्म बनाने ऑर्डर दिया था बुक करके, उन्होंने 3 घंटे की पूरी फिल्म बनाई थी। तो उसके जो टाइटल थे वो बनवाने के लिए मेरे पास आए, मुझे बताया कि ऐसा कि ट्रेन जाती है उसका धुआं ऊपर से पीछे, यानी ट्रेन जिस डायरेक्शन में जाती है उसके उल्टी साइड उसका धुआं जा रहा
0: दुआ
1: है,
0: जाएगा बराबर
1: और धुआं के अंदर टाइटल मुझे
0: चाहिए।
1: एम्बो सुपर होना चाहिए ऐसा इफेक्ट चाहिए, और ऐसा तो अभी तो ऐसे इफेक्ट लाने में 2 मिनट लगता है, मगर
0: बिल्कुल
1: उस टाइम
0: बिल्कुल
1: तो कुछ सोचना पड़ता है। तो फिर मैंने पूरा कागज का कटआउट किया, ट्रेन का कटआउट किया, और धुएं का पोर्शन इतना कटआउट किया, और धुएं के पोर्शन के पीछे मैंने वो धुएं के जाते हुए ऐसे वो फ्लेम एनिमेट किया, ने कागज पीछे से खिसकाने लगे तो ऐसा लगता है ट्रेन आगे जा रही धुआं पीछे जा रहे। उसके ऊपर भी आगे टाइटल जो किए वो ब्लैक एंड व्हाइट किए, वो ब्लैक एंड व्हाइट टाइटल वो ऐसे में समझाने जाओगे प्रैक्टिकल देखने जाओगे तो ही पता चलेगा कि कैसे, तो
0: बिल्कुल
1: उसको ऐसे राइट टू राइट खींचने लगे तो लगता था कि ट्रेन का धुआं ऐसे जाए और टाइटल ऐसे आ गए। तो केदार शर्मा इतना खुश हो गए कि यार क्या इफेक्ट दिया है, तो बिल्कुल ऐसा तो हम फिल्म लाइन में भी नहीं कर सकते थे, खुश हो गया था काफी केदार शर्मा। फिर मुझे उसकी गाड़ी में बैठा के उनका स्टूडियो दिखाने ले गए थे, देखो मैंने राज कपूर को यहाँ तैयार किया था, यहाँ ये किया था, पूरा स्टूडियो देखा। और काफी बाहर के प्रोड्यूसर गोपी पेंटल भी आते थे, अमोल पालेकर आते थे उस टाइम, वो जो स्मिता पाटिल अभी जो हीरोइन बनी है वो पहले दूरदर्शन बॉम्बे की न्यूज रीडर थी, और बॉम्बे दूरदर्शन की जब बर्थडे थी तब उसको दुल्हन के रूप में बैठाए और सजा के पूरा न्यूज पढ़ाए। दूसरे दिन कोई प्रोड्यूसर का फोन आया कि आप फिल्म में काम करोगी, उसने हाँ कह दिया, तो डायरेक्ट वो गई दूरदर्शन छोड़ के बाद में वापस नहीं आई। वो तो स्मिता पाटिल तो ऐसे ही हमारे बाजू में, क्योंकि हमारा ग्राफिक सर्जन था ना वहाँ, एक मेरे अंदर में काम कर राजा स्वामी वो महाराष्ट्र थे, उससे मराठी में गप्पा मारने आ जाती थी काफी कोई ले। उस टाइम भी फिर मनोज कुमार वो फिल्म का एक गाना शूट करने आए थे, वो मैं ना भूलूंगा करके गाए थे, वो वाला जिन्न था रोटी कपड़ा मकान
0: रोटी
1: का।
0: कपड़ा और मकान
1: हाँ,
0: का भी
1: तो एक दिन
0: बिल्कुल
1: के लिए उसने पूरा स्टूडियो बुक किया था,
0: अच्छा
1: मगर वो एक दिन के लिए वो एक लाइन शूट करने के लिए उन्होंने सुबह 10 बजे से चालू किया था, और
0: हाँ
1: शाम को 5 बजे उनका वो सीन कंप्लीट हुआ, सिर्फ एक लाइन ही बोलने का। मनोज कुमार बोलता है मैं ना भूलूंगा, और उस साइड से जिन्नत अमर बोलती है मैं ना भूलूंगा, इतना लाइन, यानी फिल्म लाइन में भी उस टाइम वो लोग मेहनत करते थे, पूरा दिन के लिए उन्होंने स्टूडियो बुक किया था और वहां पे रिकॉर्डिंग किया था। तो बॉम्बे में काफी एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद मुझे अहमदाबाद में ट्रांसफर मिला, मैं बॉम्बे से अहमदाबाद ट्रांसफर लेके आया। तब जो डायरेक्टर था सौरभ साहब, पहले हम ज्वाइन नहीं करने वाले थे बॉम्बे दूरदर्शन, क्योंकि हमें कोई गुजराती नहीं दिखाई दे रहा था, तो
0: बिल्कुल
1: बाद में जो सौरभ साहब करते थे अरुण श्रॉफ, उन्होंने हमें चैम्बर में बुलाया उनके कि देखो आप अकेले गुजराती नहीं, मैं भी गुजराती हूँ, और मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ कि आपको मैं अहमदाबाद ले जाने की जिम्मेदारी मेरी, अहमदाबाद में स्टूडियो बनेगा ही, और उसको आपको ट्रांसफर करके मिला। उसने इतना हमें कॉन्फिडेंस दिया तब हमने बॉम्बे ज्वाइन किया। फिर उन्होंने अहमदाबाद से वो खुद ट्रांसफर लेके आए, अहमदाबाद में स्टूडियो डेवलप किया, फिर मेरा और बिनल पटेल का डिमांड रखा उन्होंने और यहाँ पे ट्रांसफर होके अहमदाबाद आए। अहमदाबाद में तब इसरो चल रहा था, इसरो का जो स्टूडियो था वो हम आधा घंटा प्रोग्राम हम बनाते थे, आधा घंटा इसरो वाले बनाते थे उस टाइम प्रोग्राम। तो
0: अच्छा
1: आधा घंटा जो इसरो वाले वो एग्रीकल्चर बेस पे बनाते थे, हमारा आधा घंटा में 15 मिनट न्यूज रहता था और 15 मिनट ड्रामा वगैरह ऐसा कुछ बनाते थे उस टाइम। धीरे धीरे इसरो का स्टूडियो में भी काम करते करते फिर यहाँ पे अहमदाबाद में खुद का उनका अहमदाबाद का स्टूडियो के लिए जगह फिक्स की। फिर थलतेज एरिया में गवर्नमेंट ने जगह दिया, वहां पे स्टूडियो बना। हम फिर वहां से यहाँ थलतेज अहमदाबाद का खुद के स्टूडियो में काम करने लगे। उसके बाद मेरा यहाँ से अहमदाबाद से ट्रांसफर हुआ दिल्ली डीडी। पहले मेट्रो करते चैनल चल रही थी दूरदर्शन के, जिसमें प्राइम प्रोग्राम अच्छे प्रोग्राम ही आते थे। वो मेट्रो चैनल में मेरा यहाँ से ट्रांसफर हुआ। वहां से सीपीसी
0: अच्छा
1: खेलगांव में, दिल्ली में स्टूडियो है सीपीसी के अंदर, सीपी यानी खेलगांव में के अंदर सेंट्रल प्रोडक्शन सेंटर तब था
0: अच्छा
1: दिल्ली दूरदर्शन का, वो उसमें क्रीम प्रोग्राम ही बनते थे। मेरा वहाँ ट्रांसफर हुआ।
0: अरे वाह
1: फिर मैं वहां गया तो वहां भी बहुत अच्छे बड़े बड़े से उन्होंने सीपीसी के बाद मेरी पर नजर न्यूज वालों की गई, तो न्यूज वाले देखा इनका काम तो बहुत अच्छा है, हमें खींच लेना चाहिए। तो डीडी न्यूज में मेरे ट्रांसफर हो गए, उसमें मुझे काफी टफ काम मिला था क्योंकि उसमें 24 घंटा आपको अवेयर रहना था। 24 घंटा वहाँ कंटिन्यूस मुझे एक आर्टिस्ट फोर बुकिंग करना ही रहता था, उस सीजी ऑपरेटर जो, क्योंकि न्यूज में तो 24 घंटा चलता था,
0: बिल्कुल
1: उसमें तुरंत ही टाइप बना के डायटल वगैरह डाले ना, ऐसा सीजी ऑपरेटर और आर्टिस्ट दोनों का बुकिंग मैं करता, मेरा जिम्मेदारी रहता।
0: अच्छा
1: और उस टाइम डीडी न्यूज के लिए हर रोज 8 मीटिंग होती थी। 1 घंटे के बाद न्यूज में हेडलाइन क्या जाएगी उसके लिए मीटिंग रहती। वो मीटिंग में मीटिंग है मैं प्रैक्टिकल काम करने में मजा आता है, मगर मीटिंग अटेंड करने में बोर हो जाता है।
0: बिल्कुल
1: फिर
0: बिल्कुल
1: मैं इतना बोरिंग मेरा वो बॉम्बे में जो न्यूज का गया, उसके बाद कैसा भी करके फिर यहाँ अहमदाबाद ट्रांसफर हुआ। फिर अहमदाबाद में अपने लोकल प्रोग्राम के टाइटल वगैरह बना। मेरे अहमदाबाद में मेरे नीचे 8 आर्टिस्ट थे, उनको भी अलग अलग लैंग्वेज के मुताबिक। अहमदाबाद में तो 2-3 ही लैंग्वेज चलती थी, एक हिंदी का अलग प्रोग्राम होता था,
0: बिल्कुल
1: इंग्लिश का होता था, और गुजराती मैक्सिमम गुजराती का है। उसके टाइटल सब टाइटल सुपर करना, वो सब बनवाने का मेरा जिम्मेदारी, उसका मटेरियल भी परचेज करके आर्टिस्ट को प्रोवाइड करना, वो
0: बिल्कुल
1: भी मेरी
0: बिल्कुल
1: जिम्मेदारी। मैं बॉम्बे में जो 8 आर्टिस्ट को कैजुअल बुक करता था, वो बाद में कोर्ट में केस किया उन्होंने और उनको फिर गवर्नमेंट को परमानेंट करना पड़ा। उनको करीबन मैं अहमदाबाद आ रहा है तब तक उनको परमानेंट नहीं किया था,
0: अच्छा
1: गवर्नमेंट हो सके वहां तक कैजुअल बुकिंग से चलाती, तो वो लोगों ने केस किया, फिर वो लोग परमानेंट हो गए। तो वो लोग अभी भी, मैं बॉम्बे जाता हूँ तो मुझे याद करते कि भाई साहब आपने हमारा बुकिंग कैजुअल किया था तो हम परमानेंट जॉब पे लगे
0: सही बात
1: नहीं मानते करके।
0: है
1: और बाद में तो अहमदाबाद में तो गुजराती अपना रेगुलर काम करते रहते हैं, उसमें भी एनिमेशन कार्टून। फिर धीरे धीरे तो कंप्यूटर आ गए, फिर हमारा काम वो हमको बहुत उतना नहीं रहा जितना पहले था इतना। अभी तो कंप्यूटर में सीजी ऑपरेटर है, फटाफट टाइप किया और
0: बिल्कुल
1: कुछ भी
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: विजुअल चाहे तो आप लोग गूगल पे सर्च मार,
0: तो
1: डाउनलोड
0: पहले
1: करो
0: जब आप काम करते थे
1: तब।
0: कंप्यूटर के पहले, तो वो क्या सब बना बना के आप देते थे
1: बना
0: फिर
1: बाय हैंड ही
0: उसको
1: बनाना
0: वापस
1: पड़ता
0: कैमरा में लेते थे वो लोग क्या?
1: ना उस टाइम। तीन टाइप के टाइप वो जो टाइटल हम बनाते थे ना, उसमें तीन टाइप के रहते। एक तो सॉलिड टाइटल, सॉलिड टाइटल है ना प्रोग्राम का जो मेन टाइटल है ना वो सॉलिड रहता था, उसको हर कलर लगते थे। और दूसरा रहता था सेंटर सुपर, सुपर है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, ब्लैक पेपर लेने का उसके ऊपर व्हाइट कलर से लिख देना वो
0: अच्छा
1: कैमरा, और दूसरा कैमरा दोनों के इम्प्रेशन करके वो लोग सुपर करते थे इलेक्ट्रॉनिकल,
0: अच्छा
1: तो उसको सुपर बोलते थे। फिर बिलो सुपर, बिलो सुपर है ना जो व्यक्ति का नाम आता था इंटरव्यू में, सपोज मैं इंटरव्यू दे रहा तो मेरा कोई नाम आएगा जीएस परमार, गुणवंत भाई परमार, और मैं जिसका इंटरव्यू है उसका नाम सपोज विनय पंड्या कोई भी है, तो उनका नाम नीचे पूरे
0: आएगा
1: ब्लैक फ्रेम में नीचे लिखा हुआ रहता था। फिर
0: हाँ
1: वो दो कैमरे के इम्प्रेशन मिक्स करके वो ऐसा दिखता था जैसे आपके शरीर के ऊपर से वो जा रहा है लिखा हुआ,
0: अच्छा
1: ऐसा सुपरिंग सुपरिंग कैप्शन बोलते थे वो सुपरिंग बोलते। फिर कोई मैप है वहां पे ड्राइंग है उसका आइडेंटिफाई करना, ये जगह का नाम है, तो वहां सुपर करते थे वो दो कैमरे का इम्प्रेशन मिक्स कर। फिर फिर पहले स्क्रोलिंग, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, पहले स्क्रोलिंग करने के लिए हम पूरा लंबा कागज लेते थे ब्लैक, उसके ऊपर ऊपर से नीचे तक सब क्रेडिट लिखते थे, प्रोड्यूस बाय, डायरेक्टर बाय, साउंड बाय, फिर सेट डिजाइन बाय, मेकअप बाय, ऐसा पूरा लिख के लंबा रोल तैयार करते थे
0: फिर वो
1: और
0: स्क्रोल
1: उसको एक
0: करते थे।
1: रोलर के ऊपर राउंड वाइंड अप कर देते थे, फिर उसको ऐसा ऐसा घुमाते थे, ऐसे वो नीचे से ऊपर जा रहा, ऐसा
0: ऊपर
1: इफेक्ट
0: जा रहा है
1: आता,
0: वैसे दिख रहा
1: ऐसा इफेक्ट आ रहा, तो बाय हैंड
0: था
1: वो बाय हैंड ही करते थे।
0: एंड फिर वो रिकॉर्ड हो जाता था।
1: उस टाइम बॉम्बे में भी हम छोटे, मेरे अंदर पे एक ज्योति राव करते थे, उसका ड्राइंग अच्छा था, तो छोटे छोटे एनिमेशन फिल्म जैसा भी बनाते थे, एनिमेशन यानी उसमें कटआउट पिक्सेलेशन, कैमरा हमको प्रोवाइड किया था, कैमरे
0: अच्छा अच्छा
1: से हम
0: अच्छा
1: शूट एक एक फ्रेम शूट करके फिर एनिमेशन थोड़ा डॉक्यूमेंट्री बनाते थे। फिर
0: ओके
1: एनआईडी में भी, मैं अहमदाबाद है, उसके बाद एनआईडी में भी हमको ट्रेनिंग दिया था, एनआईडी में थोड़ा ट्रेनिंग लिया था एनिमेशन का। फिर जब ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलर टीवी हुआ,
0: कलर टीवी। हाँ
1: तो ब्लैक एंड व्हाइट का जो सिंबल था उसको कलर में कन्वर्ट करने के लिए भी मेरा ड्यूटी एनआईडी में लगाया गया था, और वहाँ जो उस टाइम जो ब्लैक सिंबल था ना,
0: हाँ
1: उसको धीरे धीरे कलर करके स्टेप बाय स्टेप करीबन 35 डिफरेंट कलर करके वो शूट किए, और वो
0: अच्छा
1: दोनों की
0: अच्छा
1: इम्प्रेशन मिक्स करके हमने वो उस टाइम इमिडिएटली ब्लैक एंड व्हाइट को कलर सिंबल करके ऑफिस को दिया था दूरदर्शन।
0: अरे वाह। अब धीरे धीरे हम लोग कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर
1: हाँ जी,
0: वापस गुणवंत परमार जी, जो ग्राफिक डिजाइनिंग का जो पहले हैंडवर्क होता था, मैन्युअली करते थे सारा कागज पे, और उसको जो है फिर कैमरे में शूट करके फिर वो आप टीवी, दूरदर्शन पे या फिल्मों में देखते थे। अब जैसे ही कंप्यूटर आना शुरू हो गया, तो कंप्यूटर आने के बाद फिर मैन्युअली करना या फिर पेंटिंग करना, ये सारी चीजें जो है बहुत जल्दी से होने लगे, और फिर क्या चेंजेस आए, तो उस समय के जो आर्टिस्ट है जो मैन्युअली करते हैं उनके जीवन में क्या चेंजेस आया, वो सारी चीजें हम लोग थोड़ा सा समरी में सुनेंगे, फिर कभी विस्तार से सुनेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आइए अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए है रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आबू की जान, आबू की शान, आबू निवासियों की है पहचान। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज के इस विशेष करियर ऑप्शन प्रोग्राम में, जीवन विकास प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं गुणवंत परमार जी को, जो ग्राफिक डिजाइनर दूरदर्शन के रहे हैं और अभी रिटायर होकर अहमदाबाद में अपने बच्चों के साथ रहते हैं। तो उनकी जो कहानी है वो हमने सुना कि किस तरह से एक आर्ट लाइन में खुशी से वो उसको ज्वाइन किया क्योंकि उनको इंटरेस्ट था। और फिर घर में, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम लोग इस तरह की बातें करते हैं तो माता पिता जैसे नौकरी करते हैं तो उनको लगता है कि भाई पढ़ाई करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, ये ड्राइंग वगैरह करके क्या होने वाला है। लेकिन फिर गुणवंत परमार जी ने ड्राइंग के माध्यम से, ड्राफ्टिंग के माध्यम से, जब उन्होंने स्केच करके जो है पहला कमाई उनके हाथ में रखा तो उन्हें उनकी आंखें खुली और वो गदगद होकर इन्हें बहुत प्यार से फिर इनके साथ जो है एक प्यार बना रहा, कनेक्टिविटी बना रहा। तो हो सकता है कि हमारे माता पिता हमें समझने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है क्योंकि उनको डर रहता है। एक्चुअली में उनका कहने का भाव ये नहीं रहता है कि भाई आप कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन आप अपना गारंटेड करियर आपका बने, आपको पैसे मिले, आप अपने आगे के जीवन को सर्वाइव अच्छा करें, ये भावना रहती है। और क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि यहाँ पर हमें कुछ अभी नर्सिंग हम एडमिशन देते हैं तो उसके बाद हमें ये पता नहीं ना कि हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं, या उनको पता नहीं रहता, तो इस वजह से ये दिक्कतें आती हैं। लेकिन पेशेंस रखने से सब चीजें आराम से अच्छी हो जाती है, जैसे गुणवंत परमार जी ने पेशेंस के साथ उन चीजों को किया। तो आइए आप वापस जोड़ते हैं आपको गुणवंत परमार जी से, और बात चल रही थी जब कंप्यूटर का युग शुरू हो गया। तो ये कंप्यूटर जब आया कितने समय था, वो कौन से ईयर में आया और फिर क्या क्या चीजें जो है चेंज होना शुरू हो गया आपके, मैन्युअली जो करते थे वो फिर टाइप करना हो तो मैन्युअली करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कंप्यूटर से हो जाता होगा, तो वो जो फेज है चेंजिंग फेज या टर्निंग पॉइंट था उसके बारे में थोड़ा बताइए जी।
2: तो अहमदाबाद में तो मैं आ गया, उसके बाद वो कंप्यूटर वगैरह आ गए तो धीरे धीरे मुझे भी कंप्यूटर का थोड़ा ट्रेनिंग लेना पड़ा।
1: ये कौन सा साल था वो टाइम पे?
2: ये करीबन 85 के बाद का।
1: अच्छा,
2: 90 के आसपास का,
1: 85
2: के बाद,
1: 90 के बीच में।
2: तो धीरे धीरे कंप्यूटर आने लगे, कंप्यूटर का ट्रेनिंग लेने लगे। और जब यहाँ से मैं वहाँ बॉम्बे दिल्ली ट्रांसफर हुआ तो वहाँ तो सब कंप्यूटर पे ही चलता था, सब लोग वही कंप्यूटर में। वो वहाँ पे पेंट बॉक्स करके एक मोटा मशीन था जिसमें योर माइंड इज ए लिमिट, आप जितना सोचो बैकग्राउंड अलग कलर से हो जाता है, टाइप अलग कलर से आ जाते है, वो आपको जो ड्रॉइंग भी चाहिए वो भी अंदर इनबिल्ट मिल जाता है। मगर वो उसके जो कमांड वो सब वो सीखना मेरे लिए काफी दिक्कत वाला लगा। वो लोग तो करते ही थे, वो लोग काम करते ही थे वहाँ के जो रेगुलर आर्टिस्ट, वो तो ट्रेन थे। मुझे एक बहुत बड़ा बैड एक्सपीरियंस बॉम्बे दिल्ली दूरदर्शन में ये हुआ कि मैंने और मेरे आर्टिस्ट सुभाष रॉय करके, उन्होंने वेदर न्यूज का बहुत बड़ा अच्छा बढ़िया एक बनाया था, यानी मोन्टाज करके, यानी वेदर जो न्यूज आता है वेदर न्यूज, उसके पहले जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट इंडिया के चारों पोर्शन को अलग अलग जूम आउट करके उनके ऊपर यहाँ पे ये इतना यानी टेम्परेचर रहेगा, बाद में हिमाचल का, फिर आसाम बाजू, फिर नीचे कन्याकुमारी, तो चारों जोन का डिफरेंट करके हमने वेदर न्यूज के लिए एक मॉन्टाज तैयार किया था। उसमें उस टाइम सेल्सियस में जाता था कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कितना रहेगा, वो हम एनिमेट करके वो बाद में टाइप करके एवरीडे चेंज करके उसको डाल सकते। उसका बहुत बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक भी दिया था। 6 महीने मैंने और उन्होंने कंटिन्यूस कंप्यूटर पे बैठ के पूरा मॉन्टाज तैयार किया था। और जिस दिन वो जाने वाला था ऑन एयर, उसी दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे किसी ने कोई मास्टर कंप्यूटर से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिलीट मार लिया। पूरा 6 महीने की मेरी और मेरे आर्टिस्ट की जो मेहनत, वो एक ही सेकंड के अंदर पूरा और ऐसा डिलीट मारा कि वो फिर से हम डस्टबिन में से वापस ला ही नहीं सके।
1: अच्छा, रिसाइकल बिन में से वापस लाना होता
2: है, वापस लाना होता है। और उस टाइम वो ऑर्डर करके मशीन उन्होंने खरीदा था दिल्ली दूरदर्शन वालों ने। वो फर्स्ट टाइम वो मशीन, उसका हमको ट्रेनिंग भी दिया था, मगर उसके ऊपर पूरा बनाया था। जो तो वहाँ से हमने वहाँ कंप्लेन किया, कोई उनको कोई इंजीनियर को बुलाया,
1: हाँ
2: उसको दिल्ली के होटल में ठहरा है, वो
1: हाँ
2: पूरा कंप्यूटर उसको दिया,
1: हाँ
2: उसने भी 15 दिन यानी 2 वीक को कंटिन्यूस मेहनत किया, फिर भी
1: हाँ
2: वो जो वहां का इंजीनियर था वो कंपनी का, वो भी
1: हाँ
2: उसको वापस नहीं ला सका। तो
1: अच्छा
2: ये जो इंजीनियर लोग जो होते हैं ना,
1: हाँ
2: इंजीनियर लोग को अच्छा नहीं लगता था कि इनका अच्छा गुड व्यूज के बुक में नहीं थे,
1: हाँ
2: तो अच्छा नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए उसने देखा जो जो भी इंजीनियर के, ये तो सारा बहुत बढ़िया जा रहा है, उनको क्या है उसी टाइम बाहर ज्यादा काम देना था पड़ता है,
1: हाँ
2: और हम स्टाफ वाले इतना अच्छा काम करते हैं तो जस्टिफाइड हो
1: जलस ही
2: जाता
1: हो
2: था
1: रहा है।
2: कि हाँ। तो उसको पता, वो सबसे मेरे लाइफ में जो बुरा एक्सपीरियंस हुआ ना गवर्नमेंट सर्विस में, ये है। दूसरा के अहमदाबाद में, कि अहमदाबाद के बहुत अच्छा नामी प्रोड्यूसर दीपक भास्कर, वो बहुत अच्छा बना था, उसने एक एक वीक के अंदर रेवा करके फिल्म का शूटिंग करके वो तैयार किया था, 3 घंटे की फिल्म, फर्स्ट टेलीविजन अहमदाबाद दूरदर्शन की रेवा, ये अमूल डेरी के स्टोरी के ऊपर बेस्ड थी, तो वो कंप्लीट किया। तो डायरेक्टर पॉलिटिक्स इतने रमे रमे थे, उनको टेलीकास्ट नहीं होने दिया, वो पूरा
1: अच्छा
2: फिल्म उसने कलर में शूट किया हुआ था,
1: हाँ
2: मगर जब जो बहुत दिनों के सालों के बाद जब वो टेलीकास्ट हुआ तो ब्लैक एंड व्हाइट, उसके कलर भी नहीं रखा हुए थे,
1: अच्छा
2: ब्लैक एंड व्हाइट में वो टेलीकास्ट हुआ बाद, यानी पॉलिटिक्स इतनी गंदी रमत है, यानी वो हर कोई गवर्नमेंट ऑफिस में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि दूरदर्शन में, मगर ये मेरे लाइफ में मुझे जो बेड एक्सपीरियंस हुआ वो एक, तो ये मेरे आर्टिस्ट का 6 महीने का मेरा और उनका मेहनत का एक ही जगह
1: बिल्कुल
2: इसमें
1: बिल्कुल
2: डिलीट मार के उड़ा दिया, और यहाँ इतना कई। फिर बाद में ये जो प्रोड्यूसर था अहमदाबाद का दीपक, उसको ट्रांसफर दिया आसाम, जो सोचते थे कि ये बहुत बड़ा अच्छा काम करता है, उसको आसाम भेजा, और उसकी मिसेस कैमरामैन के यहाँ थी, उसको बॉम्बे ट्रांसफर दिया। अब हस्बैंड वाइफ दोनों को गवर्नमेंट ने
1: अलग
2: अलग
1: अलग जगह पे भेज दिया
2: अलग
1: तो
2: कर
1: गड़बड़ हो
2: दिया।
1: जाता।
2: अरे ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना, कि तुम जो टैलेंटेड इंसान है उनकी कदर ना करो कुछ नहीं, तो उसको ट्रांसफर करके उसको पूरा उसका कैरियर खत्म कर देते, और बेचारा वहां आसाम में जाके क्या प्रोग्राम, यहाँ हर रोज जो 3 घंटे का ड्रामा रिकॉर्ड करता था, 3 घंटे का ड्रामा करना है यानी 1 घंटे की, वो जो जैसे 3 घंटे की फिल्म के लिए लोग कितना टाइम लगाते हैं,
1: बिल्कुल
2: वो
1: बिल्कुल
2: 3 जो 1 घंटे का आराम से कोई 1 घंटे का प्रोडक्शन देता था, उसको बंदे को बेचारे को वहां ट्रांसफर कर दिया, उसकी मिसेस को बॉम्बे कर दिया, उसका पूरा लाइफ। फिर बाद में जब अहमदाबाद आके उसने केस किया गवर्नमेंट के ऊपर, उसको केस जीता और उसको देना, अभी तो कलर टीवी में काम कर रहे हैं, बड़े अच्छी से वो गुजराती चैनल संभाल रहे हैं कलर टीवी, मगर ये जो टैलेंटेड वर्क जो करते हैं अच्छा करते, उनको ऐसा करके वो किया जाता है,
1: बिल्कुल
2: वो
1: बिल्कुल।
2: अच्छा नहीं है गवर्नमेंट
1: चलिए गुणवंत जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपका आपने शेयर किया, ग्राफिक डिजाइनिंग और टेलीविजन दूरदर्शन की सारी बातें आपके द्वारा, पुरानी जो टेलीविजन की बातें हैं वो सुनने को मिला, मुझे भी पहली बार ये सारी बातें
2: जी,
1: याद
2: आपने मुझे भी
1: दिलाए
2: मौका
1: हुआ।
2: दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और
2: जी
1: मैं
2: जी
1: चाहूंगा कि हमारे जो मित्र हैं जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उन सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी कोई चीज अगर टर्निंग पॉइंट आता है तो उसके लिए आप सीखने के लिए हमेशा रेडी रहें, और
2: सही
1: दूसरा
2: बात
1: आप अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप एक एक निष्ठा से आप उस करियर के बारे में सोचते जाइए, उसमें आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही अच्छी तरह से आपका वो करियर बन सकता है, चाहे कोई भी फील्ड कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, बस आपको जो है उसके साथ जुड़े रहना है लास्ट तक, जब आप पूरी तरह से उसमें जुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पे आप उसमें माहिर बन जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं, और आप अपना बहुत ही अच्छे तरह से उसका रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। फिर बाद में जो लोग शुरू शुरू में आपको नकारते हैं मना करते हैं वो सारे लोग भी फिर कहेंगे अरे वाह वाह करके, है ना। तो इसीलिए अपने करियर के लिए आप अगर सोच रहे हैं तो जो आपका इंटरेस्ट फील्ड है उसके ऊपर पहला फोकस कीजिए, दूसरा अगर आपका इंटरेस्ट कहीं डगमग जा रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप काउंसलिंग टीचर्स से, जो है काउंसलर्स होते हैं टीचर्स होते हैं, उनसे जरूर राय सलाह करें, जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनसे जरूर बात करें। और मुझे लगता है कि गुणवंत परमार सर का जो एक्सपीरियंस है वो भी हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन है, और बहुत ही फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिला है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में। तो आशा करूंगा आप सभी को और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अच्छा करें ऐसी शुभाशा के साथ, अच्छा करियर बनाए, अच्छा नाम करें परिवार का और देश का ऐसी शुभाशा के साथ। एक बार फिर से आप सभी की तरफ से रेडियो मधुबन की ओर से गुणवंत परमार सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़कर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हुए फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी तरह कुछ नए विषय को लेकर, कुछ नई स्टोरी लेकर आपके साथ जुड़ेंगे और आपको फिर बताने की कोशिश करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा। कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत।
3: अश्विनी
2: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं।
4: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे,
2: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत।
5: साधी भोळी माझी आई, सुखा जग कुसावली।
2: या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखिए, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: मंगलयान भारत की शान।
3: लेखिका सुधापुरी।
4: पात्र परिचय
5: उन्नति,
2: वेदांत,
6: आदित्य,
5: दृष्टि,
7: सैंडी,
8: पंकज,
5: आकाश,
9: आदित्य प्रकाश,
10: यश।
11: कितने मजे आए हैं इस बार की दिवाली मनाने में, मुझे तो ढेर सारे पैसे मिले सब बड़ों से पूजा के बाद।
12: मुझे तो हर साल मम्मी नए कपड़े भी लेके देती है।
13: मुझे भी, अब हम फटाके तो बिल्कुल भी नहीं चलाते।
2: क्यों, कोई दुर्घटना हो गई थी क्या?
13: नहीं, दुर्घटना तो नहीं, हाँ पर एक तो प्रदूषण का ख्याल आता है। साथ में मैंने सुना है कि जो लोग फटाके बनाते हैं उनका स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो जाता है।
14: कहते हैं उनके हाथों में छाले और कई तरह के त्वचा के रोग हो जाते हैं।
15: मेरी मम्मी तो कहती हैं कि अगर मैं पटाखे नहीं खरीदूंगा तो वो मेरी पसंद की कोई भी चीज उन पैसों से खरीद लेंगी।
16: अच्छा, तो तुमने इस बार क्या लिया था?
15: इस बार मैंने एक साइंस के फैक्ट की बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बुक ली है, जिसमें हमारे यूनिवर्स के बारे में डिटेल में सब समझाया हुआ है।
11: तुम्हें कब से अंतरिक्ष में दिलचस्पी आने लगी?
12: अरे वो तो मुझे हमेशा से ही थी, पर अब जब से हमारे देश ने मंगलयान अंतरिक्ष में भेजा तब से।
13: मैं बताऊं क्या, अभी दीदी आ रही हैं, उन्हें चंद्रयान के बारे में बहुत कुछ पता है।
2: चंद्रयान या मंगलयान?
13: ओह सॉरी सॉरी, मेरा मतलब है मंगलयान। चंद्रयान तो हमने 2008 अक्टूबर में भेजा था और इसने 2009 अगस्त तक ऑपरेट किया था।
2: यह भी वहीं से भेजा गया था जहां से मंगलयान भेजा गया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्री हरिकोटा, नेलोर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश, चेन्नई से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर की ओर।
14: और क्या, उसी से तो पता चला था कि चांद पर पानी है।
15: मैंने कहीं पढ़ा था कि चंद्रयान ने 312 दिनों तक ऑपरेट किया था, जबकि उसे 2 सालों तक के लिए तैयार किया गया था।
16: पर कहते हैं इस मिशन ने अपने 95% तक वो सब उद्देश्य पूरे कर लिए थे जो प्लान किए थे।
11: पर मंगलयान को भेजने का कारण क्या है?
12: पता नहीं, ऐसे ही साइंटिफिक रिसर्च के लिए होगा।
13: आ गई दीदी।
2: सब खेलेंगे कोई नई गेम।
14: उनसे चंद्रयान, ओह मेरा मतलब है मंगलयान के बारे में नहीं पूछना क्या?
15: हाँ हाँ ठीक है।
11: आहा, यहाँ तो बड़ी रौनक है, लगता है तुम सबको भाई दूज की छुट्टी है।
16: दीदी हम सब आपकी ही वेट कर रहे थे, प्लीज मंगलयान के बारे में कुछ बताइए ना।
11: क्यों नहीं, हाँ हाँ पूछो, क्या जानना चाहते हो? अरे ये तो हमारे देश के लिए बड़े ही फक्र की बात है। दिल तो करता है मैं बस इसी के बारे में बात करती जाऊं। पता है ये मंगलयान इसरो ने 5 नवंबर को लॉन्च किया था, दिवाली के ठीक 2 दिन बाद। ऐसा लगा जैसे हम सब मिलकर त्योहार मनाते ही जा रहे हो।
13: इसरो क्या?
12: अरे इसरो नहीं पता क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
11: बिल्कुल ठीक। इस मंगलयान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए 500 वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की है।
14: वाओ, साउंड्स ग्रेट। और मैंने पढ़ा था कि ऐसा ही प्रयास चीन और जापान ने भी किया था, पर वो कामयाब नहीं हो सके थे।
11: बिल्कुल ठीक। इस यान को अंतरिक्ष में भेजकर भारत एशिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने एक ग्रह से दूसरे तक ऐसा यान भेजा हो।
2: पर दीदी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था?
11: इसका मुख्य उद्देश्य मीथेन गैस का पता लगाना था।

0: इससे वहाँ जीवन था या संभव है कि नहीं पता चल सकता है,
1: और मार्स यानी मंगल ग्रह के केमिकल कंपोजिशन का पता लगाना था।
0: और एक और बात, संसार को यह दिखा देना कि हमारे देश की भी क्षमता है एक अंतर्ग्रह मिशन की परिकल्पना करने की, उसे विकसित करने की, उसका परीक्षण करने की और उसके कार्य नियंत्रित करने की।
2: इस बार हमारा यह मंगलयान हमारे ही देश में डिजाइन किया गया था ना?
0: हालांकि इसके कुछ की कंपोनेंट्स हमने आयात भी किए थे। पर सब कुछ एकदम से नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी हमें।
3: क्या?
0: जैसे शुरू में ही ये शेड्यूल्ड था अक्टूबर 19 को लॉन्च होने के लिए, पर सब पोस्टपोन करना पड़ा।
2: क्यों?
0: क्योंकि एक जरूरी टेलीमेट्री जहाज अपने निर्धारित स्थान जो कि फिजी द्वीपों के पास था पहुंच ही नहीं पाया।
3: क्यों?
0: प्रशांत महासागर में साइक्लोन्स के कारण।
3: फिर
0: पूरे अभियान को यानी लॉन्च को रीशेड्यूल किया और फिर इट वेंट ऑफ स्मूथली।
2: दीदी, टेलीमेट्री शिप कैसी होती है?
0: टेलीमेट्री शिप मतलब ऐसे शिप या ऐसा जहाज जिसमें से किसी दूर के स्रोत से मिलने वाले डाटा का मेजरमेंट हो सके।
3: अच्छा।
0: एक और जरूरी बात, मंगल ग्रह से संबंधित अभियान सिर्फ 26 महीनों में ही एक बार ही प्लान किए जा सकते हैं, ओनली वंस इन 26 मंथ्स।
4: वो क्यों?
0: वो इसलिए ताकि यह उस समय से मेल खा जाए जब मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट होता है।
5: हाँ, यानी कि मंगल ग्रह 26 महीने में एक बार अपनी सूर्य की परिक्रमा करते हुए उसी प्रकार सूर्य की परिक्रमा करती हुई पृथ्वी के सबसे निकट होता है।
6: सब कितना रोमांचकारी है ना?
3: मंगल ग्रह को द रेड प्लैनेट भी कहते हैं ना?
2: करेक्ट, वो इसलिए है क्योंकि पृथ्वी से देखने पर यह लाल रंग का दिखता है।
0: और इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है।
2: वो क्या?
0: इस ग्रह पर बहुत बड़ी मात्रा में आयरन ऑक्साइड यानी रस्ट है जो इसे इसका रेड ऑरेंज जैसा रंग देता है।
4: इसी कारण से ये धरती से दिख पाता है चमकीले लाल रंग में।
5: इस ग्रह से बस सूर्य, चंद्रमा और वीनस ही अधिक चमकीले हैं।
6: दीदी, हमें और बताइए ना मंगल ग्रह के बारे में।
0: अभी आप लोगों के लिए बस ये जानना काफी होगा कि यह ग्रह सूर्य से चौथे स्थान पर है,
4: यानी पृथ्वी का पड़ोसी।
0: हाँ, इसका रेडियस पृथ्वी से केवल आधा ही और घनत्व या डेंसिटी में भी कम है।
3: मैंने पढ़ा था इसकी मिट्टी में कई एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स भी है।
0: जैसे क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि। मजेदार बात तो यह है कि इसमें सोडियम भी है जो कि प्राणियों के बढ़ने में काम आता है।
2: अच्छा।
0: हमारा अंतरिक्ष अभियान का मुख्य उद्देश्य है देश को संचार और मौसम की जानकारी प्रदान करना, पर हम इससे और भी कई तरह के महत्वपूर्ण कार्यक्रम या अभियान चला पाते हैं।
7: नारे जैसे भारत माता की जय।
0: चलो बस भी करो, अब सबको भूख लग रही होगी।
5: एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत ने साबित कर दिया है कि वह बहुत ही किफायती ढंग से लॉन्च व्हीकल्स बना सकता है।
8: हाँ, और ये भी तो देखो दीदी कि हमने इस मंगलयान पर जितना खर्चा किया है उसी के जैसे यान पर नासा ने तिगुने खर्चे किया है।
3: बल्कि मैं तो कहती हूँ कि भारत ने दिखा दिया है कि और देश भी जो इस तरह के अंतरिक्ष में अभियान चलाना चाहते हों हमसे ही सामान खरीदे या सलाह लें।
7: बचत करना, थोड़े में गुजारा करना तो कोई हमसे सीखेगा।
9: सुनो मेरे साथियों, जानते हो ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है? चांद और सूरज, धरती और आसमां, इन सब की भी एक कहानी है। क्यों ना इन्हीं की जुबान से ही सुने इनकी कहानी। आओ सुनते हैं।

मैं हूँ भारी भरकम, मैं हूँ सबसे बड़ा, कहते मुझको जुपिटर, मुझसे लेना ना पंगा।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई, अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा, अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

कायदा, आखिर इसका फायदा? कायदा तोड़ के सोचो, एक दिन चांद निकलता नीचे से और मैदान पे रखा होता।

0: अच्छा सोचो, सूरज का रंग नीला होता और पेड़ों का रंग लाल, पंछी रहते पानी में
1: वाह,
0: और मच्छी गगन विशाल
1: वाह वाह वाह।

सोचो, अरे सोच के देखो, खेत में उगती टॉफी, पेड़ पे फलते लड्डू पेड़े और नल खोलो तो कॉफी।

0: दीदी ऐसा क्यों नहीं होता है? जो होता है वो क्यों होता है?
1: कारण फिर वही कायदा
2: कायदा कायदा आखिर फायदा अरे कायदा कायदा।
3: नमस्कार, मी मोनाली सावगत, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
4: योग जीने की कला। पत्र परिचय वेदांत पंकज आदित्य यश आदित्य प्रकाश। लेखिका सुधापुरी।

0: सुबह सुबह पार्क में आने का मजा हम छुट्टियों में ही ले सकते हैं।
1: बाद में तो मम्मी जाने नहीं देंगी, कहेंगी बड़ी धूप है।
0: चलो चलो, आज की योग कक्षा मैं शुरू करूँगा।
2: ओहो, अच्छा जी, तो आप करेंगे? गुरु जी, कुछ आता भी है?
0: सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम जोरों से हंसी, हा हा हा हा
3: हा हा हा हा। बात जरूर मजाक में कही है पर बिल्कुल सच है।
1: वो क्या दीदी?
3: अरे यही कि हंसी एक बहुत ही प्राकृतिक और महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इससे न केवल मन प्रसन्नचित रहता है बल्कि शरीर में प्रसन्नता के रसायन प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होकर शरीर को हल्का और चुस्त करते हैं।
2: मैं बताऊं, कई बार बहुत से लोग एक साथ आसपास खड़े या बैठे नजर आते हैं और बिना किसी बात के ठहाके लगाते दिखते हैं।
3: असल में हंसना तनाव भगाने का एक सबसे अच्छा तरीका है जिसे लाफ्टर थेरेपी कहा जाता है।
0: लेकिन जब हंसी के साथ योग को मिला दिया जाता है तो
3: ये बन जाता है लाफ्टर योग। लाफ्टर योग सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। लाफ्टर योग हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है जिससे हम न केवल बीमार होने से बचते हैं बल्कि यह उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, डिप्रेशन, अर्थराइटिस, एलर्जी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कमर दर्द, माइग्रेन, सिर दर्द, मासिक धर्म संबंधी बीमारियां, कैंसर जैसी अनेक बीमारियों से आराम पाने में भी मदद करता है।
2: यह प्राचीन काल में भी था क्या?
3: अरे पहले इतना तनाव ही कहाँ था। लाफ्टर योग 1995 में भारत में डॉक्टर मदन कटारिया ने शुरू किया था।
4: हाँ, मैंने पढ़ा था इंटरनेट पर।
3: अपनी रिसर्च में डॉक्टर ने पाया कि ठहाके लगाने से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बेहतरी होती है।
4: यह इस बात पर आधारित है कि हमारा शरीर नकली और असली हंसी में कोई भेद नहीं करता।
1: तो हो जाए, सब मिलकर जोर से हंसते हैं।

0: वो देखो दीदी, वहाँ योग कक्षा हो रही है। कोई मंच पर आकर सूर्य नमस्कार कर रहा है।
1: मेरे पापा कहते हैं सूर्य नमस्कार योग का एक ऐसा अंग है कि जिससे पूरे शरीर के सभी अंगों पर प्रभाव पड़ता है।
2: दोनों आंतरिक और बाहरी, यही नहीं हृदय को, मस्तिष्क को, यकृत, आमाशय, किडनी, सभी मांसपेशियों वगैरह तक रक्त का संचार और अच्छी तरह से होता है। पर बात सुनो, ये यूं ही खड़े खड़े बातें करते रहोगे या कुछ करने का इरादा भी है?
3: मैं बताऊं, चलो सब मिलकर सूर्य नमस्कार करते हैं। वो देखो उधर, वहाँ कक्षा में चलते हैं। उन्होंने इन गर्मियों की छुट्टी में बच्चों के लिए एक खास कैंप लगाया है।
4: आओ आओ बच्चों, सब आ जाओ। ये लो, एक एक दरी ले लो और पीछे की तरफ एक एक के पीछे आसन लगा लो।
0: उधर हो ना?
5: ठीक तो है।
6: सीधा तो करो दरी को।
0: मेरी तो सीधी है, तुम्हारी मेरे ऊपर आ रही है।
4: शांत हो जाओ बच्चों, देर मत करो और जल्दी से एक पंक्ति में बैठ जाओ। कुछ पल आंखें बंद करके धीरे धीरे अपनी सांसों को सामान्य करो।
2: आप सबसे पहले तो कुछ बता दीजिए इन बच्चों को सूर्य नमस्कार के बारे में।
4: ठीक है बच्चों, आपको सबसे पहले सूर्य नमस्कार के बारे में कुछ बताती हूँ। सूर्य नमस्कार योगासनों में सबसे श्रेष्ठ है। यह अकेला अभ्यास ही पूरे योग व्यायाम का लाभ पहुँचाने में समर्थ है। इसके अभ्यास से हमारा शरीर निरोग और स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है। सूर्य नमस्कार स्त्री, पुरुष, बाल, युवा तथा वृद्धों के लिए भी उपयोगी है।
2: कहते हैं जो लोग प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु, बुद्धि, बल और तेज बढ़ता है। क्या यह सच है?
4: बिल्कुल सच। सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां या चरण होते हैं, पर इसके बारे में बातें और न करके आओ इसको करने का प्रयास करते हैं। सब सीधे खड़े हो जाओ। सब करोगे सूर्य नमस्कार?
7: जी हाँ, हम सब करेंगे।
2: और मैं आपकी मदद करती हूँ सब बच्चों के पोस्चर ठीक कराने में।
4: बहुत अच्छा, ठीक है चलो शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहला चरण है प्रणाम आसन। अपने आसन के किनारे पर खड़े हो जाएं। अपने दोनों पंजे एक साथ जोड़कर रखें और पूरा वजन दोनों पैरों पर समान रूप से डालें। अपनी छाती फुलाएं और कंधे ढीले रखें। श्वास लेते हुए दोनों हाथ बगल से ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को जोड़ते हुए छाती के सामने प्राणायाम मुद्रा में ले आए। दूसरा चरण है हस्त उत्थान आसन। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और पीछे ले जाएं। बाजुओं को कानों के समीप रखें। इस आसन में पूरे शरीर को एड़ियों से लेकर हाथों की उंगलियां तक सभी अंगों को ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करें। तीसरा चरण है हस्तपाद आसन। श्वास छोड़ते हुए व रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए कमर से आगे झुकें। पूरी तरह श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पंजों के समीप जमीन पर रखें। चौथा चरण है अश्व संचालन आसन। श्वास लेते हुए जितना संभव हो दाहिना पैर पीछे ले जाएं। दाहिने घुटने को जमीन पर रख सकते हैं। दृष्टि को ऊपर की ओर ले जाएं। पांचवा चरण है दंड आसन। श्वास लेते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाएं और संपूर्ण शरीर को सीधी रेखा में रखें। छठा चरण है अष्टांग नमस्कार। आराम से दोनों घुटने जमीन पर लाएं और श्वास छोड़ें। अपने कुलों को पीछे ऊपर की ओर उठाएं। पूरे शरीर को आगे की ओर खिसकाएं। अपनी छाती और ठुड्डी को जमीन से छुएं। अपने कुलों को थोड़ा उठाकर ही रखें। अब दो हाथ, दो पैर, दो घुटने छाती और ठुड्डी जमीन को छूते हुए होंगे। सातवां चरण है भुजंगासन। आगे की ओर सरकते हुए भुजंगासन में छाती को उठाएं। कुहनियां मुड़ी रह सकती है, कंधे कानों से दूर और दृष्टि ऊपर की ओर रखें। श्वास लेते हुए छाती को आगे की तरफ धकेलने का सौम्य प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए नाभि को सहजता से नीचे की ओर दबाएं। पैरों की उंगलियों को भी नीचे की तरफ दबाएं। यह सुनिश्चित करें कि जितना कर सकते हैं उतना ही करें, अपने साथ जबरदस्ती ना करें। आठवां चरण है पर्वतासन। श्वास छोड़ते हुए कुल्हों और रीढ़ की हड्डी को निचले भाग को ऊपर उठाएं। छाती को नीचे झुकाकर एक उल्टे वी के आकार में आ जाएं। यदि संभव हो तो एड़ियों को जमीन पर ही रखें और रीढ़ के निचले भाग को ऊपर उठाने का प्रयास करें। खींचाव को गहराता हुआ अनुभव करें। नौवां चरण अश्व संचालन आसन। श्वास लेते हुए दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच ले जाएं। बाएं घुटने को जमीन पर रख सकते हैं। दृष्टि ऊपर की ओर रखें। दसवां चरण हस्तपाद आसन। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को आगे लाएं, हथेलियों को जमीन पर ही रहने दें। अगर जरूरत हो तो घुटने मोड़ सकते हैं, पर कोशिश करें कि वे न मुड़े। ग्यारहवां चरण हस्त उत्थान आसन। श्वास लेते हुए रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे ऊपर लाएं। हाथों को ऊपर और पीछे की ओर ले जाएं, कुल्हों को आगे की तरफ धकेलें। बारहवां चरण ताड़ासन। श्वास छोड़ते हुए पहले शरीर सीधा करें, फिर हाथों को नीचे लाएं। इस अवस्था में विश्राम करें और शरीर में हो रही संवेदनाओं के प्रति सजगता ले आएं।
2: वाह, कितनी अच्छी तरह से सबने सूर्य नमस्कार किया है। सच सच बताओ कैसा लग रहा है?
7: बहुत अच्छा, बड़ा मजा आया।
2: तुमने देखा, सूर्य नमस्कार एक आसन नहीं बल्कि 12 शक्तिशाली योग आसनों का एक जोड़ है,
4: जो एक उत्तम कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम भी है। इसे करने से शरीर में हाथों पैरों के दर्द दूर होकर उनमें सबलता आ जाती है। गर्दन, फेफड़े तथा पसलियों की मांसपेशियां सशक्त हो जाती है और शरीर की फालतू चर्बी कम होकर शरीर हल्का फुल्का हो जाता है,
3: यानी मोटापा कम हो जाता है।
4: बिल्कुल, यही नहीं, सूर्य नमस्कार के द्वारा त्वचा रोग समाप्त हो जाते हैं। इस अभ्यास से कब्ज जैसे पेट के रोग समाप्त हो जाते हैं और पाचन अच्छा हो जाता है। इस अभ्यास से हमारे शरीर की छोटी बड़ी सभी नस नाड़ियाँ एक्टिव हो जाती है, इसलिए आलस्य, अति निद्रा, ये सब विकार दूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इसके कुछ भाग को करने से मनाही है।
2: अच्छा, वो कौन कौन सी है?
4: सूर्य नमस्कार की तीसरी व पांचवी स्थितियाँ सर्वाइकल और स्लीप डिस्क वाले रोगियों के लिए वर्जित है।
2: अच्छा, कौन बताएगा सूर्य नमस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है?
1: सूर्य को नमस्कार,
5: सूर्य को अर्पण या नमस्कार करना है।
4: अरे वाह, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। यह योग आसन शरीर को सही आकार देने और मन को शांत व स्वस्थ रखने का बेस्ट तरीका है।
2: पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए, सूर्य नमस्कार प्रातःकाल खाली पेट करना सही होता है।
4: बच्चों, तुमने ध्यान दिया, प्रत्येक सूर्य नमस्कार के चरण में 12 आसनों के दो क्रम होते हैं।
5: पहले एक तरफ से, फिर सब दूसरी तरफ से।
7: हाँ।

0: एक ऐसा मंत्र जिसका प्रभाव दिन भर आपके साथ रहेगा।
1: थैंक यू, शुक्रिया, नमस्ते मैम।
0: अब से रोज आना यहाँ, ठीक है? अपने दोस्तों को भी लाना।
1: जी, मैं लाऊंगा अपने 10 दोस्त।
2: 10 कहाँ से, 4 तो हम ही हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वो जब याद आए।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कितना आसान था ये सब कुछ समझना, लेकिन हम सोए हुए थे, हमें पता ही नहीं चला, हमने सारी जिंदगी निकाल दी और जान ही नहीं पाए कि छोटी छोटी चीजें ही तो थी जिन्हें बदलना था और जिंदगी बदल जाती। इतनी मुश्किलों से गुजरते रहे थे हम। आज एक बार फिर रिश्तों को नई पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं और घर से बाहर निकल चुके हैं, अब एक दूसरे परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं, वो परिवार जो हमारा कर्म क्षेत्र है, जहां हम काफी वक्त गुजारते हैं और हम अच्छा भी महसूस करना चाहते हैं। हम सिर्फ अचीव ही नहीं करना चाहते, हम वो हर पल जो वहां होते हैं वो खुश और सुखी होकर गुजारना चाहते हैं। तो क्या है वो गुरु मंत्र, क्या है वो छोटी छोटी बातें जो उन सिचुएशंस में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो सुख जिसे हम तलाश रहे हैं अपने कर्म क्षेत्र में वो भी हमें मिल सकता है। हर बार की तरह इस सफर की हम सफर हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर पिछली कड़ी को याद करें तो बहुत अच्छी आपने बात दी थी, मैं कहूंगी गुरु मंत्र था, कि एक परिवार से निकलकर अगर हम दूसरे परिवार पर जाने की, वहां पर जाने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक प्रेशर होता है, एक सुबह सुबह का जो प्रेशर होता है, जो हमने कहा था कि हफ्ते भर फिर another week, वो हट जाता है।
1: You look forward another week, you know, just the whole attitude changes to going back to the same place. Yeah.
0: And if I remember, हमने ये भी बात की थी कि अगर मुझे appreciate नहीं किया जाता, क्योंकि अब मैं परिवार में आ गई हूँ, एक नए परिवार में, एक ऐसा परिवार जो मेरा अपना ही चूज किया हुआ है, हो सकता है वो लोग जिन्हें मैं अपने रिश्तेदार हैं और जो यहाँ जो है वो अलग हैं, लेकिन उनके साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तो मेरा रहेगा ही, और उन सिचुएशंस को अब मैं कैसे हैंडल करूंगी। तो एक सिचुएशन तो थी कि अगर मुझे अप्रिशिएट नहीं किया मेरे बॉस ने, या कहीं कुछ जो मैं चाह रहा था कि मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा या मेरी अचीवमेंट होगी, आगे बढ़ूंगा, वो नहीं हो पाया, उसको भी कैसे हैंडल करें। एक और सिचुएशन जो आम देखी जाती है जब हम काम पर जाते हैं, वो ये कि जेलस फैक्टर, वो मुझसे बहुत जलते हैं, मैं जितना भी अच्छा कर लूं, वो मेरा कोई बॉस नहीं है, मेरे कॉम्पिटिटर हैं, और हर बार मेरे खिलाफ मेरे बॉस के या लोगों के कान भरते हैं, उनको कैसे हैंडल करूं?
1: हमें समझना पड़ेगा कि जेलसी क्या होती है, ईर्ष्या क्या है, और कौन मेरे से ईर्ष्या करता है। नॉर्मली वी फील के ये जो ईर्ष्या कर रहे हैं कि यू नो इट्स सम काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एक्चुअली, क्योंकि आपका मुझसे ईर्ष्या करना अर्थात आपका अपने काम पर कॉन्फिडेंस नहीं होना। यू नो समवेयर दैट मे बी आई कैन डू बेटर देन यू, एंड दैट इज व्हाट क्रिएट्स जेलसी। सो इफ मुझे पता चल गया कि यू आर जेलस ऑफ मी, आपको ईर्ष्या है, तो मुझे अब उस पर परेशान होने की पहली बात कोई बात नहीं है। दूसरा, गुस्सा आप पर करना ये तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आई विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आप बहुत ज्यादा पेन में हैं, यू नो आप बहुत ज्यादा पेन में हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डर में हैं, आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं। तो अब अगर आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं, या अगर मेरे अंदर वो कंपैशन है, तो मुझे समझना पड़ेगा कि इफ यू आर जेलस एंड आप जेलसी वश कुछ ऐसे कर्म कर रहे हैं, कुछ लोगों से बोल रहे हैं, तो मुझे आपके प्रति सिंपैथी होनी चाहिए, क्योंकि यू नो नॉर्मली हमें नफरत आने लग जाती है,
0: इरिटेशन, यू डोंट लाइक, आई डोंट वांट टू बी यू नो विद अ पर्सन हु इज जेलस,
1: राइट, बट यू विल हैव टू लुक एट दैट पर्सन एज अ वाउंडेड पर्सन, जिसे चोट लगी है, जो अपनी कैपेबिलिटी पर अब ध्यान नहीं देकर सारा ध्यान मेरी कैपेबिलिटी पर देखकर अंदर ही अंदर घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है। अब आपके एंगल से अगर देखो, जिसको ईर्ष्या हो रही है, तो उसके लिए नुकसान ये हो रहा है कि उसकी जो लेट्स से माय यू नो योर कैपेसिटी इज हियर, एंड आपको लग रहा है कि माय कैपेसिटी इज लिटिल हियर या माय वर्क इज अ लिटिल बेटर, तो आप मेरे वर्क को देखते जा रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि आप भी उधर तक पहुंचते जाएं या मेरे जैसे करने लग जाएं। नॉर्मली जेलसी में क्या होगा कि हम उनके जैसा करने लग जाएंगे कि वो कैसे करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे औरों को यू नो खुश रखते हैं, व्हाटएवर डिफरेंट वेज दैट वी वांट, तो हम इनके जैसा बनने की कोशिश करते रहते हैं। एंड क्योंकि ये नेचुरल है कि हम किसी की तरह बन तो सकते ही नहीं है, लेकिन हम अपने ऊपर ध्यान न देकर अपनी विशेषताएं अपनी शक्तियों को सारा भूलकर
0: अपनी ओरिजिनलिटी भूल जाते हैं,
1: अपनी ब्यूटी उसको भूलकर इनके जैसा बनना शुरू कर देते हैं एंड इनके

0: सबसे बड़ा इंस्टिगेटर है गलत की तरफ जाने के लिए। लेकिन अगर मेरा फोकस बहुत क्लियर है कि मुझे खुशी चाहिए, वो मेरे जीवन का हिस्सा होगी इरिस्पेक्टिव के इस ऑफिस में कितने भी लोग आ जाएं। अब उस खुशी को मेंटेन करने के लिए अगर मुझे अपनी परफॉर्मेंस पर भी ध्यान देना है, तो अब अगर मुझे लग रहा है कि समबडी इज बेटर देन मी, मेंटेनिंग माय पॉजिटिविटी, गो एंड ट्राई एंड लर्न इफ यू वांट टू लर्न। उसके लिए हिम्मत चाहिए, रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेज कि आप जाकर दूसरे से सीखते हैं। अगर वो कर ले तो नथिंग लाइक इट। जेलेसी तभी होती है जब सामने वाले के अंदर कोई ऐसी चीज है जो हमें फील कर रहा है कि हमारे अंदर नहीं है, और मुझे लगता है कि उस चीज के लिए लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, मुझे वो अप्रिसिएशन चाहिए और इसीलिए मुझे उनकी वो वाली चीज चाहिए, और क्योंकि मुझे उनकी वो वाली चीज नहीं मिलती तो मैं उनके बारे में,
1: अच्छा मेरे प्रति कोई जेलस है, मैंने तो गलती नहीं की, इट इज नॉट, आई एम नॉट एट फॉल्ट। उनकी जेलसी ने मेरे लिए मेरी जिंदगी मुश्किल कर दी कि मैं उस माहौल में ही नहीं रह पा रहा, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी।
0: राइट, अब अगर आपने जैसे कहा कि उनकी जेलसी है तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, तो सबसे पहले तो ये मेंटेन करना पड़ेगा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा जिस तरह से चल रहा था वो ठीक था। तो अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो मुझे कुछ प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। दैट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्योंकि ज्यादातर आप इमेजिन करिए एक सीन कि ऑफिस में बहुत सारे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, यू नो यू एंटर एंड यू सी पीपल टॉकिंग अबाउट यू, और यू कम टू नो कि यू नो सो एंड सो वाज सेइंग सो एंड सो थिंग अबाउट यू। तो अब हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम एक एक को जाकर अपनी पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं, एंड समटाइम्स हम भी उसी गेम में चले जाते हैं कि अपनी पॉइंट को प्रूव करने के लिए
1: दूसरे को डाउन करेंगे,
0: दूसरे की यू नो बुराई करने की शुरू कर देते हैं। एंड इफ आई स्टार्ट डूइंग दैट, तो मैंने तो अपनी विशेषता को खो दिया। तो अगर आपको फेथ है कि जो आपके बारे में कहा जा रहा है दैट्स नॉट ट्रू, देन डोंट इवन बॉदर, डोंट बॉदर, बिकॉज यू आर स्पेशल, यू आर इम्पोर्टेंट, everybody wants your quality and that's why they're talking about it, don't bother, keep on working on that quality even more. bilkul bhi is cycle mein jana hi nahi chahiye, because hum kabhi bol kar apni baat ko sidh nahi kar sakte, aur jo baat again if it's the truth agar wo right hai to usko sidh karne ki koshish nahi kare. ek chhota sa phase aayega beech mein jahan aapko feel hoga कि आप अकेले पड़ गए
1: हैं। बहुत ये इसी में सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसी में आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसी को निकालना मुश्किल हो जाता है।
0: तो ये फेस तो आएगा, दैट्स ओके, बट सी अगेन क्योंकि आपके पास वो विशेषता है तभी तो सारे उस तरफ चले गए एंड दे आर सो कॉल्ड जेलस ऑफ व्हाट यू हैव, लेकिन इफ यू नो व्हाट यू हैव मेंटेन इट। तो वो छोटा सा फेज आएगा, लेकिन हमें निश्चय रखना होगा कि ये सिर्फ एक छोटा सा फेज है। अब इस छोटे से फेज में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी स्टेप, ईगो नहीं, अगेन देयर इज अ वेरी थिन लाइन हियर, सेल्फ एस्टीम, ईगो, कि एक सेल्फ एस्टीम मेंटेन करके रखेंगे उस व्यक्ति की क्या निशानी होगी, सेल्फ एस्टीम हाई है, इंटरनल डिस्टर्बेंस कोई नहीं है, कि ठीक है जैसा चल रहा है, मुझे जाकर एक एक को प्रूफ नहीं करना है कि पता है मैंने ऐसा नहीं किया था, वो गलत बोल रही है, वो झूठ बोल रही है, मैंने, आई डोंट नीड टू डू ऑल दैट। और दूसरा, अगर सेल्फ एस्टीम हाई है तो मैं उस व्यक्ति के प्रति जो मेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं, या उन सारे लोगों के प्रति जो मेरे अगेंस्ट होकर एक दूसरी साइड पर हो गए, उनके प्रति कुछ नेगेटिव नहीं सोचूंगी। दैट विल बी द साइन ऑफ अ सोल विच हैज हाई सेल्फ एस्टीम, क्योंकि उस आत्मा को ये पता है कि ये खुद सब दर्द में है। तो जो खुद ही दर्द में है, जो खुद ही कमजोर है और डरे हुए हैं, उनको क्या डराना, वो ऑलरेडी इतने डरे हुए हैं, उनसे क्या नफरत करना या उनको क्या गुस्सा करना जो ऑलरेडी बाहर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इंटरनली वो बहुत डरे हुए हैं।
1: जिस तरह से आपने कहा कि वो एक फेज आएगा जब मैं अकेला पड़ जाऊंगा और उसके बाद फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ऐसे में जो अपॉर्चुनिटीज मिस हुई, कहीं ना कहीं वो पूरे मेरी वर्किंग पे अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि कहीं लोनलीनेस या एक मैं बार बार नहीं जा रहा अपने आप को प्रूव करने, तो मैं अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज ऐसा फील होता है कि मिस होती है।
0: अपॉर्चुनिटीज कभी नहीं मिस होंगी लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे, जस्ट क्योंकि आप अपनी इनर स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाएंगे। उस समय लगेगा, अगेन यू नो ये

0: इल्यूजन्स सारे क्रिएट होंगे कि ये मेरे हाथ से जा रही है, ये अपॉर्चुनिटी मेरी होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि इस समय सारे मेरे
1: मेरे अगेंस्ट
0: अगेंस्ट
1: है, मुझे
0: हैं
1: नहीं बुलाया
0: तो
1: गया
0: ये
1: इस
0: मुझे
1: प्रोजेक्ट
0: नहीं दिया गया काम, ये किसी और को दिया गया. इट्स ओके, मेंटेन दैट पेशेंस वो थोड़े से टाइम के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो व्यक्ति ये मेंटेन कर पाएगा उसका नुकसान हो, ऐसा हो नहीं सकता. दिस इज लॉ ऑफ कर्मा कि अगर आपने पॉजिटिविटी, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल नेगेटिविटी उन लोगों के प्रति, यू नो. एक होता है, क्योंकि इसमें जो थिन लाइन आती है, एक है मेंटेनिंग इनर स्टेबिलिटी और दूसरा है विड्रॉ. ये विड्रॉ नहीं है, ये विड्रॉ नहीं है. आप वही हैं, आप सबके साथ ही हैं, आप इंटरनली सबके लिए वही शुभ भावना रख
1: यू
0: रहे हैं.
1: नॉट हेटिंग देम और यू नॉट डिसलाइकिंग देम कि
0: दैट्स वेरी
1: ओके दे आर
0: इम्पोर्टेंट,
1: बीइंग बैड टू मी, आई डोंट लाइक देम.
0: दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. और वो कौन कर पाएगा जिसको ये फेथ होगा कि मैं राइट हूं, जो मैंने किया वो राइट है, या जो मेरी विशेषता है वो है, इन लोगों को उस विशेषता से प्रॉब्लम हो रही है, मेरी विशेषता में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ज्यादातर डाउट अपने ऊपर जब आने लग जाता है, दैट इज लो सेल्फ एस्टीम. और वो लो सेल्फ एस्टीम किसको होगा, जो खुद को ही नहीं पहचानता और जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कि और लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं. क्योंकि सेल्फ एस्टीम क्रैश होने का कारण, अपने स्वमान क्रैश होने का कारण सिर्फ ये है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं आजकल, मेरा क्या इम्प्रेशन है सबके ऊपर, यू नो. वी थ्रो दिस वर्ड इम्प्रेशन क्या है, तो इट्स मोर इम्पोर्टेंट मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ. तो इफ आई एम ओके विद दैट क्वालिटी, जस्ट कैरी ऑन. एंड इफ आई एम ओके एंड आई कम टू नो कि देर इज अ नेगेटिव अंडर करंट, नेवर माइंड, आई फील कंपैशन कि कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा. इनफैक्ट मैं इनडायरेक्टली भी उनको वो जो चीज है जो वो शायद सीखना चाहते हैं या चाहते हैं, आई कैन शेयर इवन इफ दे डोंट आस्क. नॉर्मली विड्रॉ हम कर लेते हैं,
1: हम
0: अपनी
1: बात ही नहीं करते.
0: विशेषता को अपने तक सीमित रखते हैं एंड हम कोशिश करते हैं कि ये चीज मैं किसी को नहीं बताऊंगे. एक होती है विशेषता, एक होती है कोई स्किल, आपके अंदर कोई स्किल है, कोई टैलेंट है जो आप औरों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप औरों को वो चीज सिखा सकते हैं. लेकिन डर क्या होता है कि अगर मैंने इनको सिखा दी,
1: तो मेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी.
0: आज सारे ऑफिस में मेरी इंपॉर्टेंस इस स्किल की वजह से है, एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर ये जो कंपटीशन आता है. तो हम उस स्किल को अपने तक रखते हैं, जैसे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं किसी को नहीं सिखाऊंगी. अगर कोई पूछ भी लेता है तो उसको गोल गोल घुमाकर इनडायरेक्टली कुछ कर देते हैं, उसको अपना पूरा का पूरा जो आपको आता है वो नहीं सिखाते हैं. दिस इज साइन ऑफ इनसिक्योरिटी. अगर हमें अपने पर कॉन्फिडेंस है, हमें जितना आता है पूरा एंड टू एंड उसको पूरा का पूरा बता देना चाहिए. ये फेथ होना चाहिए, दिस इज फेथ ऑन द सेल्फ. ये पूर्ण फेथ होना चाहिए कि किसी और को सिखाने से मेरा कुछ कम नहीं हो जाएगा, उल्टा वो विशेषता और भी बढ़ती जाएगी. अगर कोई और आगे बढ़ेगा, दिस इज वेन वी अंडरस्टैंड थिंग्स ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल. अगर हम सिर्फ मटीरियलिस्टिक लेवल पर सोचते हैं तो हमारी थिंकिंग क्या होती है कि कोई अगर और आगे बढ़ेगा तो मैं पीछे रह जाऊंगी, बिकॉज वी लुकिंग एट थिंग्स ओनली ऑन दैट लेवल. मटीरियल प्रोग्रेस में भी अगर हमने किसी को आगे बढ़ाया है तो शिव बाबा हमेशा हमें ये बताते, किसी को आगे बढ़ाना मतलब खुद ही आगे बढ़ जाना. एंड ये हमने मतलब हर स्टेप पर इसका अनुभव किया है. तो किसी को आगे बढ़ाना नॉट विद द इंटेंशन कि ताकि हम आगे बढ़ जाएं, नहीं, लेकिन सच में किसी को आगे बढ़ाने का वो फील आना कि सब लोगों को ये आ जाए. जो मुझे आता है आई वॉन्ट टू जस्ट शेयर इट विद एवरीबडी, परमात्मा ने दिया है, आई वुड वॉन्ट टू शेयर इट विद एवरीवन. वो आगे बढ़ेंगे, उनके आगे बढ़ने में मेरा आगे बढ़ना अपने आप समाया हुआ है. बिकॉज अगर हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो उससे मुझे क्या मिलेगा, लॉ ऑफ कर्म, सो मेनी ब्लेसिंग्स, सो मेनी गुड विशेस, जिसको कहते हैं दुआओं का खाता इतना जमा होता है कि वो दुआओं का खाता, अगर हम अपनी विशेषता से चलते तो हम इस स्पीड पर चलते, लेकिन अगर जब हमें इतनी सारी दुआएं मिल जाती हैं तो हम इस स्पीड पर नहीं चलते. वी जस्ट गो,
1: एनर्जी एनर्जी एक और मिल जाती है कि
0: हमें अपनी
1: फोर्स
0: एनर्जी नहीं,
1: मिली,
0: सिर्फ
1: सबकी एनर्जी मिल गई.
0: सबकी एनर्जी मिलती है. और वो जो इतनी सारी एनर्जी हमें सबकी मिलती है, इट जस्ट पुशेस अस वे अहेड इवन इन टर्म्स ऑफ मटीरियल प्रोग्रेस. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि आपको वो मटीरियल प्रोग्रेस मिला, लेकिन साथ साथ आपकी इंटरनल स्टेट बहुत हैप्पीनेस की थी.
1: लेकिन सिस्टर शिवानी, यहाँ एक बात मैं जानना चाहती हूँ कि हमने किसी दूसरे को सिखा दिया इस इंटेंशन से कि सबको आना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने उसी का इस्तेमाल करके मेरे पोजीशन को नीचे कर दिया और ये बहुत बार देखा गया। यही प्रॉब्लम है, तभी लोग जो हैं वो नहीं सिखाते या यू नो अपने पास ही रखना चाहते हैं, कि कहीं ना कहीं वो बाकी सारे तामझाम या जो भी पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं उनका इस्तेमाल करते हुए, जो मैं चाहे मैं इनर स्टेबिलिटी में भी रहा लेकिन वो आगे पहुंच गया, तब मेरा क्या रिएक्शन?
0: अगर मैंने किसी और को किस इंटेंशन से कुछ सिखाया था, उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हुए ये नहीं सिखाया था, देन आई एम ऑलवेज गोइंग टू लाइक कि हमने उनको सिखाया, क्योंकि मेरी भावना है देने की। वी अंडरस्टूड एट एवरी स्टेप कि आत्मा का नेचुरल संस्कार है देना, लेना नहीं, लेकिन हमने आज उसको चेंज कर दिया कि हमें सारा दिन लेना है, देना कुछ भी नहीं है। तो देने के बाद हमेशा अच्छा लगेगा। अब अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है जो आप कह रहे हैं, मे बी इट इज पॉसिबल कि ऐसा हो जाए कि वो व्यक्ति आपसे बहुत आगे चला जाए, बट देन हाउ डज दैट मैटर, विद व्हाट इंटेंशन डिड आई गिव इट, डिड आई नॉट शेयर इट विद दिस इंटेंशन कि आगे बढ़े। एक पेरेंट अपने बच्चे को किस इंटेंशन से सब कुछ सिखाता है, इसे इंटेंशन से सिखाता है कि मेरा बच्चा मेरे से भी आगे चला जाए। तो अगर मैंने भी उस भावना से सिखाया होगा कि ये भी सीखे, ये भी सीखे, ये भी आगे बढ़ जाए, एक टीचर एक स्टूडेंट को किस भावना से सिखाता है? नेवर सेज के आप मेरे को जितना आता है आप उससे कम रहो, नो। एंड फिर वो टीचर को कितनी खुशी होती है, पेरेंट को कितनी खुशी होती है जब वो आगे बढ़ता है बच्चा। तो उसमें कोई उनका नीचे होना नहीं होता है, वो बच्चा हमेशा अपनी सफलता का डेडिकेशन किसको देगा? उन्हीं को देगा, टीचर को देगा। अब इन दिस केस मे बी यू विल नॉट गेट इट, दैट काइंड ऑफ ग्लोरिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इंटरनल
1: डीप विद इन आई थिंक द पर्सन नोज कि क्या,
0: द पर्सन नोज फ्रॉम वेयर आई हैव गॉट, एंड सूनर और लेटर यू विल स्टिल गेट इट बैक इन टर्म्स ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस। लेकिन जहां तक इनर फीलिंग की बात है वो तो आपको ऑलरेडी मिल गई है,
1: बिकॉज़ व्हेन यू गिव इट गोस थ्रू,
0: इट गोस थ्रू यू। अब अगर उसके बाद आप हर्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब यू हैड गिवन इट
1: विद एन इंटेंशन।
0: तो हर कर्म में इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किस इंटेंशन से गिर रहे हैं। अगर आपको डर है कि कहीं आगे निकल जाए फिर मत दीजिएगा, बिकॉज देयर इज अ चांस कि वो आपसे बहुत अच्छा सीख ले,
1: क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी कितनी है।
0: बट दैट्स ओके, व्हाई नॉट। अगर मुझे खुशी हो औरों को आगे बढ़ता हुआ देख, एंड दैट विल हैपन व्हेन आई एम नॉट इन अ रेस। जो उनकी स्पीड उनकी है, मेरी स्पीड अपनी है, दैट्स ओके, आई एम गोइंग टू मूव एट दिस स्पीड, आई लाइक माई सेल्फ एट दिस स्पीड, लेकिन इफ दे गो फास्टर इट्स इज फाइन, आई एम हैप्पी सीइंग अदर कार्स गोइंग अहेड ऑफ मी, देन इट्स फाइन। लेकिन अगर डर है तो फिर नहीं देना, देन कीप इट टू योर सेल्फ, बट इट्स अ वेरी लिमिटेड फीलिंग। आप सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं, अपने लिए ही करते हैं, और इसमें कभी खुशी नहीं अनुभव होती।
1: शिवानी, हमने घर की बात की थी तो मूल्यों की बात की थी, कहीं ना कहीं गिरते मूल्य हम घर में बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें बच्चों के सामने आना है, हमें बच्चों को देने हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं, वहां मूल्य ताक पे रख दिए जाते हैं। अपने मूल्य हम बचाने की कोशिश भी करें ऑफिस पहुंच कर, लेकिन जब माहौल ऐसा देखते हैं तो मूल्य जिनमें करप्शन एक बहुत बड़ी बात आ जाती है, या और भी सारे अगर जीवन मूल्यों को देखते हैं, और हम ये मान लेते हैं कि जो माहौल है उसी के साथ मैं भी उसी में इन्वॉल्व हो जाऊंगा तो तभी मैं जी सकता हूँ, तो ऐसे माहौल में अपने मूल्यों पे कायम रहना वो बहुत मुश्किल आज के वक्त में लगता है, और अपने मूल्यों को सही रूप में पहचानना, ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें।
0: ये तभी हम कर पाएंगे अगर हमने अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज कर दिया है। अगर हम अपने आप को सिर्फ एक शरीर समझते हैं, अगेन सोल कॉन्शियसनेस पर बहुत इम्पोर्टेंट आ जाता है कि अगर हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो हम समझते हैं इतना सा ही तो जीवन है, इस जीवन में जो कुछ मिल जाए यही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो कुछ प्राप्त करना है जल्दी कर लो। सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जस्ट कीप गेटिंग गेटिंग गेटिंग, दिस इज हाउ मच यू हैव टाइम, यू वॉन्ट टू गेट, यू कैन गेट एवरीथिंग। जब ये एटीट्यूड होगा तब हम उसके लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं। तो मतलब हम छोटी से छोटी चीज के लिए भी अपनी वैल्यूज को गिव अप कर देंगे। जब हमें समझ में आ जाता कि ये शरीर है, मैं इसको चलाने वाली शक्ति आत्मा हूँ, आत्मा की वैल्यूज है, आत्मा के गुण है, आत्मा के संस्कार है, खुशी जो है वो मुझे इन मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं मिलने वाली, वो मुझे इंटरनल, जो मैं एक एक कर्म करूंगी, किन वैल्यूज पर बेस्ड करूंगी, वो तब मुझे मिलने वाली हैं। अब मुझे अपनी लाइफ को डिसाइड कर लेना चाहिए कि अगर मुझे एक प्रमोशन, एक मतलब बंगला, गाड़ी, व्हाटएवर दीज थिंग्स, ये सब मिलने वाली हैं एट द कॉस्ट कि मेरी खुशी जाएगी, क्योंकि वैल्यूज को साइड पे रख के प्राप्त की हुई वस्तु मन की स्थिति को खुशी कभी नहीं दे सकता, क्योंकि बीज नेगेटिव था। तो हर एक के लिए अलग अलग है। वी आर नॉट गोइंग टू से हियर और वी आर नॉट हियर टू टेल एनीवन कि दिस इज रॉन्ग और दिस इज राइट। दिस इज फॉर यू टू डिसाइड। अगर आप कहते हैं नहीं जी करप्शन के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, दैट्स योर डिसीजन। एब्सोल्युटली आपका निर्णय है ये। प्रेशर, लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसी वायुमंडल में लोग हैं जो इस चीज के लिए झुकते नहीं हैं। भले आप समझें कि बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन अगर एक भी कर सकता
1: तो सब कर सकते,
0: तो हम सब कर सकते हैं। लेकिन शायद उस एक व्यक्ति को जो इसके अगेंस्ट जाता है उसको थोड़ा सहन करना पड़ता है। शायद उसको वो मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, वो भी इफ यू फील नहीं मिलेगी, शायद नहीं मिलेगी, बट उसके लिए वो इनर सेटिस्फैक्शन शायद ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें अपने लिए और अपने परिवार के लोगों को प्लीज पूछ लीजिएगा एक बार। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मेरी मानसिक स्थिति होगी वो सबको मिलने वाली है। तो अगर कल को मैं परेशान रहूं और बच्चे भी, घर के लोग और भी परेशान रहे, और वो कहें ऐसा किया ही क्यों, एंड आई से आई डिड इट सो दैट आई कुड बाय यू द कार, दे माइट से वी डोंट नीड द कार। So when you take the decision of compromising on your values, take the decision with your family, अपने परिवार, because we had decided कि जो right और wrong हम set करने वाले हैं वो परिवार की राय के साथ मिलजुल कर हम set करने वाले हैं। तो अपने परिवार में, चाहे बच्चे बहुत छोटे हों लेकिन जो भी बड़े आपके साथ हैं, ask them, do we want all this at the cost of values, या क्या हम अपने value system को intact रखें? And 99.9% I would think कि आपको मिलेगा keep it intact. ये हम compromise कर देते हैं ये सोच के, नहीं नहीं नहीं मेरे परिवार को ये चाहिए, मेरे बच्चों को ये चाहिए, अगर मैंने अपने बच्चों को ये नहीं दिया तो वो you know upset हो जाएंगे। नहीं, everybody wants happiness and nobody wants to lose their happiness at the cost of materialistic comforts. हम सोच रहे हैं कि people want happiness with material. It's not like that. I need to talk. और इसीलिए इन बातों की घर में बातें, discussion होनी चाहिए. We should discuss कि values क्या है, happiness क्या है, how much are we ready to compromise, or should we be that kind of family जो stick to our values.
1: और यहाँ stress, इस स्ट्रेस को कोप करना आना चाहिए, ना कि वो स्ट्रेस जो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं।
0: इस स्ट्रेस को एक्चुअली कोप करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई स्ट्रेस नहीं क्रिएट होगा, बिल्कुल नहीं स्ट्रेस क्रिएट होगा, अगर आपने अपनी चॉइस से वो डिसीजन लिया होगा, अगर वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी। लेट्स से ऑनेस्टी या ब्राइब नहीं देना या नहीं लेना, इफ दिस इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी देन एनीथिंग एल्स, यू नो, देन एनी कार और बंगलो, I will not get stressed. Even if my job is at stake, it doesn't matter. क्योंकि मेरे पास वो value है जो शायद आज बहुत कम है लोगों के अंदर, तो वो value कोई ना कोई होगा जो उस value को recognize करेगा, तो मुझे वो tension वाले period से नहीं गुजरना पड़ेगा, if inside I'm very sure. लेकिन अगर मैं कमजोर हूँ, एक बार सच बोला, थोड़ा सा उसका कुछ pressure पड़ा, नहीं नहीं नहीं सच बोलने से तो नहीं चल सकता, झूठ बोल दो, कर दो, देन आई एम नॉट फिट टू डू इट, देन आई विल हैव टू डू जो ऑल द थिंग्स जो सारे लोग कर रहे हैं, एंड देन आई विल हैव टू गेट जो सबको मिल रहा है।
1: इट मींस वही आ जाते हैं कि हाउ मच आई वैल्यू माय वैल्यूज।
0: एब्सोल्युटली, इट्स नॉट अबाउट, ये लेम एक्सक्यूज है, ये एक बहाना है कहना कि सब लोग कर रहे हैं, अगर मैंने नहीं किया, एंड दिस इवन अप्लाइज टू यू नो सोशल एडिक्शंस वगैरह। हम कहते हैं ओ हम जब पार्टी में जाते हैं, सोशल कल्चर में सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं तो मुझे करना ही पड़ेगा, अगर मैंने नहीं किया तो मेरा बॉस मेरे बारे में क्या, एक्सक्यूजेस, एब्सोल्यूट एक्सक्यूजेस। क्या इस बेसिस पर किसी की मेरिट डिसाइड हो सकती है? नथिंग। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, अगर वी वॉन्ट टू डू व्हाट एवरीबडी इज डूइंग, then we will get what everybody is getting, and everybody is getting tension, anxiety and stress. If I want to get something different, that's happiness, I will have to do something different, I will have to be somebody different. That's very important. To agar wo khushi chahiye इट्स इन योर हैंड ऑलरेडी, गवाना नहीं है उसको इन छोटी छोटी बातों के
1: ये
0: लिए।
1: ये जो वैल्यूज की जो बात हम कर रहे हैं, या जिस तरह से जो छोटी छोटी सिचुएशन सामने आती हैं उस पे कैसे आप अडिग रह सकते हैं, अडिग भी रहने की जरूरत नहीं, जस्ट माइंड सेट
0: प्रायोरिटाइज कि ये बोले ये झूठ बोलना ही पड़ेगा, आई एम सॉरी मैं झूठ नहीं बोल सकता, नाउ आई एम रेडी टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंसेज फॉर इट, आपको ये डिसऑनेस्ट कर्म करना ही पड़ेगा, आई एम सॉरी सर ये मैं नहीं कर सकता, नाउ आई एम रेडी टू फेस एनीथिंग एंड देन इट शुड बी एनीथिंग आई एम रेडी टू फेस, बिकॉज ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, ये मैं कर ही नहीं सकता, तो फाइन मे बी इट इज समथिंग अ पार्ट ऑफ द जॉब जो मैं नहीं कर सकता, तो आई एम रेडी टू फेस उसके लिए, लेकिन आई विल नॉट डू इट।
1: कुछ चीजें जो हैं वो अडिग रहनी चाहिए, कुछ चीजें चेंज नहीं हो सकती, उनमें ये है चेंज हमें अपने एटीट्यूड्स को जरूर करना है, अपने थॉट्स को कर सकते हैं लेकिन वैल्यूज को नहीं, क्योंकि यहाँ हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं
0: और यहाँ
1: फ्लेक्सिबिलिटी है, मुझ में फ्लेक्सिबल
0: जहाँ चाहिए वहाँ
1: हो जाता है। शिवानी, ऑफिस में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो अभी भी जिनको इनके बारे में जानना बाकी है, ट्रस्ट की बात आती है, एंगर की बात आती है, और फिर अगेन मेडिटेशनल एस्पेक्ट्स जो हैं कि किस तरह से स्पिरिचुअलिटी इस परिवार में भी एक स्टेबिलिटी ला सकती है, तो अभी बाकी है काम, लेकिन फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं। ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: ऑफिस में जब हम पहुंचते हैं, जब हमने उसे मान लिया, स्वीकार लिया कि वो मेरा परिवार है, फिर जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं, जेलेसी की आज हमने बात की और किस तरह से अपनी वैल्यूज पे हम अडिग रह सकते हैं, और अडिग रहना ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, अगेन इट्स माय चॉइस कि मैं रहना चाहती हूँ, किसी और के कारण मैं रहूं या ना रहूं वो नहीं हो सकता, तो डिसीजन हर बार की तरह मेरे हाथ में रहेगा। कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई सवाल गुनगुना रहा है, तो आपका स्वागत है, आप हमारे साथ शेयर कीजिए उसे, हमें फोन कीजिए या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9999334665, 9999334666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। वक्त है कि आपसे विदा लें, लेकिन इसी वादे के साथ कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में कुछ और रिश्तों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से जब हम ऑफिस में होते हैं तो एक फेथ या ट्रस्ट या विश्वास का रिश्ता होता है, और साथ ही जिस एंगर को हम कई बार सही मान लेते हैं उसे भी क्या सही माना जाना चाहिए, क्या बिना गुस्सा किए भी ऑफिस में काम चलाया जा सकता है, ऐसे ही कई और बातें हैं जो हम अगली कड़ी में जरूर उठाएंगे, तो आप इंतजार कीजिए, मुलाकात करेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें। ओम शांति।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। डिप्रेशन के ऊपर जब हम बात करते आ रहे हैं कि कई तरह के डिप्रेशन होते हैं, क्यों होता है डिप्रेशन, और एक खास बात जो हमें समझ में आई है कि एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वीकारना खुद को और दूसरों को भी, जैसे हैं वैसे ही स्वीकारें, फिर सोचें कि अगर उनमें कोई बदलाव लाया जा सकता है या खुद में भी बदलाव लाया जा सकता है तो किस तरह से लाना है। ये कुछ बातें हैं जो अगर हम अपने जीवन में अपना लेंगे तो सचमुच एक बेहतर जिंदगी की तरफ चल सकते हैं। डिप्रेशन से जुड़े हुए कई ऐसे मुद्दे, कई ऐसे मिथ्स थी जो हमने दूर करने की कोशिश की है। आज डिप्रेशन की ट्रीटमेंट्स के बारे में थोड़ा ज्यादा विस्तार से जानते हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। डॉक्टर गिरीश पटेल, आपका हार्दिक स्वागत।
3: नमस्कार।
2: नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। वेरी वार्म वेलकम।
4: ओम शांति।
2: ओम शांति। आज डॉक्टर पटेल, हम यही जानना चाहते हैं कि हमने ये बात कर ली, डिप्रेशन के कारण जानने की कोशिश की, कहीं ये बात समझ में आई कि जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो सोच है, जो थॉट्स हैं, वो सबसे बड़ा कारण बनते हैं। और कई तरह के डिप्रेशन थे, तीन डिप्रेशन को हमने डिफ्रेंशिएट किया था। लाइफ स्टेट्स की बात की थी कि 6 लाइफ स्टेट्स में जहां खुशी और गम के बीच का जो ना थोड़ी थोड़ी दूरी हो जाती है, तो वो स्टेट ऐसी है कि समझ लेना चाहिए कि डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रीटमेंट्स भी क्या अलग अलग होती हैं, अलग अलग तरह के डिप्रेशन हैं तो क्या ट्रीटमेंट्स के तरीके भी अलग अलग हैं?
3: कई प्रकार के ट्रीटमेंट है, वह सभी ट्रीटमेंट अलग अलग तरह के डिप्रेशन में भी काम करेगी। मैं मूल रूप से तो आपको बताता हूँ कि जो ट्रीटमेंट कौन से प्रकार की है। वर्तमान समय हम देखेंगे तो जो सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ी संख्या में, कहें कि अधिकतर सभी 80-90% पेशेंट्स को दवाइयां दी जाती है, जिसको कहा साइकोफार्मेकोलॉजी, कि मन से संबंधित जो दवाइयां हैं वह दवाइयां भी बहुत बड़ी मदद करती है जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उनको डिप्रेशन से बाहर लाने में। और एक ट्रीटमेंट है जिसको कहेंगे साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी के भी विभिन्न प्रकार हैं, तो वह साइकोथेरेपी भी पेशेंट्स को मदद कर सकती है। और जिसको कहा जाए कि भी कुछ फिजिकल थेरेपीज, बहुत प्रकार की पहले भी थी, कुछ ट्रीटमेंट एब्सोल्यूट हो गई है कि भी ब्रेन में कुछ पार्ट को मामूली सर्जरी भी करते थे, कि जो अभी 99.999% कोई नहीं करता।
2: तो आपने कहा कि सबसे पहले ड्रग्स जो है या दवाइयां देकर,
3: और एक मैं ऐड कर दूं
2: जी,
3: और एक जो ट्रीटमेंट है लोग भी जानते हैं जिसका एक्चुअल नाम है ECT, वह है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी।
2: hmm.
3: इलेक्ट्रिकली कन्वल्जन्स प्रोड्यूस किए जाते आर्टिफिशियली और वह भी मदद करती।
1: वो जो शॉक देते,
2: जो एक्सट्रीम केसेस की बात जब होती थी तब
3: ये चर्चा करेंगे, शब्द ही गलत है, शॉक देना है। पहले शॉक व्यक्ति सुन के उसको शॉक लगता है, इट्स समथिंग नो गुड इवन, देयर आर बोथ द थिंग्स। लेकिन जो वर्तमान समय हम आगे चर्चा करेंगे इस बात,
2: सबसे पहले तो दवाइयों पे आते हैं। दवाइयों का नाम सुनते ही अगर हमें मानसिक परेशानी है या डिप्रेशन है और हमें ये कहा जाए कि भाई आपको तो दवाइयां लेनी पड़ेंगी, तो पहला विचार, मैं मुझे ही कोई कहे कि आपको तो दवाई खानी पड़ेगी तो दवाई से मैं वैसे ही भागती हूँ, क्योंकि आज के सिनेरियो में ऐसा लगता है कि दवाई खाना मतलब हम केमिकल्स को अपने अंदर डाल रहे हैं, हम नहीं चाहते। तो दवाई खाने के नाम से ही लगता है लोग की हैबिट फॉर्मिंग है, मतलब मुझे आदत ही पड़ जाएगी, दवाइयां मत खाना डिप्रेशन की, आप एंटी डिप्रेसेंट पिल्स नहीं लीजिएगा। ये इतने सारे मिथ्स हैं, कांस्टेंट लोग आपको एडवाइस देते जाते हैं, तो क्या ये हैबिट फॉर्मिंग है, क्या ये जरूरी ही होती है, कितनी जरूरी होती है? अगर दवाई नहीं ली गई तो वो डिप्रेशन कहाँ तक लीड कर सकता है? ये तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं एक्चुअली।
3: हाँ। पहला इश्यू आपने बार बार कहा है तो उसका उत्तर देता हूँ कि भी हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। अगर उस ड्यूरेशन के लिए दिया जाए जो आपको जरूरत है, उतने ड्यूरेशन के लिए आप ठीक से रेगुलरली लो और फिर उसे धीरे धीरे कम करो, उसका एक सारा तरीका है, ये डॉक्टर्स अच्छी तरह जानते हैं। वह रूप से डॉक्टर की सलाह के अनुसार लो तो हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। गलती कहाँ होती है कि पेशेंट अपनी मर्जी से लेता रहता है, कभी ज्यादा भी ले लिया, अपनी मर्जी से कम कर दी और तब फिर वो लंबा समय लेता रहे तो हैबिट फॉर्मिंग हो सकती है।
2: तो इलाज कितना लंबा, ये भी एक मिथ बहुत लंबी है कि 2 साल तक इलाज चलता है, 5 साल तक। डिप्रेशन का इलाज ये नहीं होता कि बहुत जल्दी डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगे, लंबा इलाज चलता है, तो कितना लंबा होता है?
3: अब इसमें और एक बात बताऊं जो मूल रूप से इसको क्लेरिफाई करना जरूरी है कि भी मेडिसिन कब जरूरी है। कई ऐसे किस्से हैं, मैं कहूंगा डिप्रेशन में भी करीब करीब 30% पेशेंट्स जो है वो सिर्फ साइकोथेरेपी से भी इससे बाहर आ सकते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी पेशेंट है कि जो अपने आप या साइकोथेरेपी से उनको मदद पूरी नहीं मिल रही है तो वहां मेडिसिन की जरूरत है। चलो ये तो मानते हैं कि भी जो भी मेडिसिन है उसकी कोई ना कोई तो साइड इफेक्ट है ही, बल बहुत कम है। जो वर्तमान समय एंटी डिप्रेशेंट है, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इसके भी कई जनरेशन हो गए, जो प्रेजेंट जनरेशन की एंटी डिप्रेशेंट है वह थर्ड या फोर्थ जनरेशन की एंटी डिप्रेशन में ऑलमोस्ट साइड इफेक्ट नहीं है, तो बहुत ही मामूली साइड इफेक्ट्स है। तो अब डॉक्टर को भी ये जज करना है कि वो साइड इफेक्ट और इसकी बेनिफिशियल इफेक्ट कि पेशेंट की प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ेगी।
2: तो ये किस वक्त जरूरी है, जैसे आपने कहा कि कई बार तो साइको एनालिसिस से ही ठीक हो जाता है, लेकिन कौन सा ऐसा वक्त आ जाता है जब ड्रग्स आर अ मस्ट, अदरवाइज वेयर विल इट लीड टू? अगर दवाई नहीं खाई गई तो इट कैन एक्चुअली लीड टू समथिंग एल्स, तो वो हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा मुकाम डिप्रेशन के उसमें है, मोड़ पर, जब ड्रग्स बहुत जरूरी हो जाती है।
3: एक तो उसकी स्थिति यह है कि जब व्यक्ति अपना जो सामान्य कार्य है कि तैयार होना, ऑफिस जाना, अपना जो भी डे टू डे वर्क है वह करने में भी अगर उसे दिक्कत आने लगी है, वह करने की उसकी इच्छा मर गई है, उसका उत्साह खत्म हो गया है, तो उसे मेडिसिन की जरूरत है। दूसरा, नींद में अगर सीरियस प्रॉब्लम आ रहा है, अपने आप कुछ कोशिश करके उसे अच्छी नींद नहीं आ रही है, तो उस स्टेज पर कहेंगे कि अब मेडिसिन की शुरुआत करनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न आपने बहुत ही अच्छा पूछा कि अगर वह दवाई नहीं ले तो वह कौन सी स्टेज की ओर जा सकता है। एक तो ये डिप्रेशन उसका बढ़ता जाएगा, जो भी उसकी कुछ भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज बची है वह भी कम होती जाएगी, और एक जो बहुत ही डेंजर है डिप्रेशन में है वह है सुइसाइड। ये पेशेंट आत्महत्या भी कर सकता है कि अगर वह स्टेज उसकी बढ़ती जाए।
2: डॉक्टर साहब, सिस्टर शिवानी जो अभी सुइसाइड की बात की कि इट कैन एक्चुअली दवाई नहीं ली जाए तो इट कैन लीड टू सुसाइड, तो अभी हमने जो कुछ दिन पहले ही देखा है कि एक स्टूडेंट ने जो 10th क्लास में 96% मार्क्स लेकर, वो लड़की इतनी मेरिटोरियस स्टूडेंट, हर स्कूल के प्रिंसिपल, पेरेंट्स, सब किसी को पता तक नहीं चला, एंड शी कमिटेड सुसाइड, हैंग कर लिया अपने आप को। ये सिम्टम भी नहीं थे, डिप्रेस्ड रही होगी जरूर वो, क्योंकि तभी उसने इतना बड़ा कदम उठाया, तो ये सिम्टम्स पता ही नहीं चल पाए ऐसे, मतलब क्या होता है कि कभी ऐसा पता ही नहीं चल पाता, जैसे आपने कहा कि जब वो बिल्कुल दिनचर्या के काम करने बंद कर दे, इसका मतलब ये होता है कि आपने दवाई आपको लेनी शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन जब ये बात भी ना एहसास हो पाए तब क्या करें?
3: कुछ केसेस में मैं स्वीकार करता हूं कि ऑल ऑफ अ सडन भी हो सकता है, परंतु अधिकतर वह कोई ना कोई उसके सिग्नल्स मिलते हैं,
2: कोई ट्रिगर ऑफ है कुछ,
3: या तो पेशेंट सचमुच डिप्रेस ना भी हो, जैसे भी ये जो लड़की का किस्सा है,
4: क्योंकि उन्होंने, ये बहन ने जिसने सुसाइड किया, उसने वो सुसाइड नोट में सिर्फ इतना ही लिखा कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ बट आई एम अफ्रेड ऑफ लिविंग इन दिस डर्टी वर्ल्ड, यू नो, और कोई रीजन भी नहीं बताया, मतलब सुसाइड करने का, बस मुझे जीवन इस दुनिया से डर लग रहा है। तो जरूर कुछ ना कुछ तो सोच गई होगी उसके पीछे,
2: कहीं ना कहीं डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा
3: हो सकती है, कोई ऐसा इंसिडेंस जो हुआ उसने रिवील नहीं किया सचमुच कि औरों के साथ, कि जो इंसिडेंस से उसको लगा हो कि डर्टी वर्ल्ड है, इसमें जीना नहीं है,
2: एक्चुअली इंडिकेट्स कि ये कहीं मेजर, यू नो, लाइक डिसिल्यूजनमेंट है,
3: डिप्रेशन समथिंग इन हर डीप इनसाइड देयर वाज समथिंग दिस अब्यूज हो सकता है और कोई बात
2: जो हमने हाँ,
3: कि जो उसने किसी को बताई नहीं
4: लेकिन वो खुद अपने आप को ही फेस नहीं कर पाई
3: होगी हाँ,
2: और काफी लंबे
3: हाँ, का कदम उठा लिया
2: बिल्कुल तो ये कहीं ना कहीं कोई इंडिकेशन कांस्टेंट काउंसलिंग कैन हेल्प एक्चुअली कि कहीं हमें हमारे अंदर जो चल रहा है हो सकता है हमें खुद भी ना एहसास हो रहा हो कई बार हम या हमें खुद को पता होता है कि हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं
3: कुछ तो पता होता ही है यह संभव है कि भी औरों को इतना पता ना चले व्यक्ति को स्वयं तो क्योंकि उसके विचारों में परिवर्तन आ रहा है उसे जो फीलिंग्स आती वह फीलिंग्स में परिवर्तन आ रहा है तो व्यक्ति को स्वयं तो एहसास होता ही है सिर्फ यह संभव है कि कुछ लोग थोड़ा ऊपर से अपने आप को इतना स्ट्रांग दिखाते हैं कि उनके चेहरे पे उनके बिहेवियर में कोई भी ऐसी कमी नहीं आने देंगे कि आसपास के लोगों को पता चले कि वे डिप्रेस्ड हैं।
2: डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि दवाई जो है वो बहुत जरूरी हो जाती है कई केसेस जब ऐसे पहुंच जाते हैं दवाई खाने से एग्जैक्टली होता क्या है यू नो व्हाट एग्जैक्टली चेंजेस जब हमने दवाई खाई तो क्या कुछ बदलाव आता है केमिकल या ऐसा फिजियोलॉजिकल की
3: जो अच्छा प्रश्न है कि जो समझना भी चाहिए ठीक से कि हमारे दिमाग में करीब 800 से ज्यादा केमिकल्स हैं जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं ये जो विभिन्न बीमारियां हैं मानसिक उसमें ये न्यूरोट्रांसमीटर्स में बदलाव आता है कुछ बढ़ जाते हैं कुछ कम होते हैं तो ये दवाइयां हैं वह इस केमिकल इम्बैलेंस को ठीक करती है
2: ओके
3: डॉक्टर्स को भी जब आप पूछते हैं तब अधिकतर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि भाई यह केमिकल इम्बैलेंस है तो मेडिसिन जो है वह केमिकल्स का फिर से बैलेंस लाती है तो इसके कारण मेडिसिन के अनेक फायदे भी हैं
2: कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है वो वापस उस जगह पर पहुंच जाएगा हाँ। जहां पे सही एक आपको मात्रा में पहुंचना चाहिए ताकि एक नॉर्मल जिंदगी जी पाए हाँ।
4: तो जब तक दवाई नहीं लेंगे इसका मतलब
2: यू दैट इम्बैलेंस विल रिमेन
3: नॉट नेसेसरीली अभी दोनों बातें हैं
4: अच्छा काउंसलिंग
3: काउंसलिंग आदि से भी और केमिकल का बैलेंस भी हो
2: डॉक्टर साहब काउंसलिंग पे आएंगे हम लेकिन उससे पहले एक मेजर इशू सिस्टर शिवानी इज ऑल्टरनेट लिविंग एंड ऑल्टरनेट थेरेपीज के बारे में बात होती है कई तरह की थेरेपीज और आ गई है जो ट्रेडिशनल थेरेपी है उसके कहते हैं कि उसके एवज में अगर वो किया जाए तो वो भी हेल्पफुल है तो यहाँ हम चाहेंगे आप बताइए कि क्या वो हेल्पफुल होती है और थेरेपी ना सही लेकिन ऑल्टरनेट लिविंग जिसमें कई सारी और चीजें शामिल हो जाते हैं लाइफस्टाइल जो आ जाता है
3: मैं ये कहूंगा मैं कि भी दो चीजें हेल्प कर सकती है कि नहीं योग आसन मदद कर सकते हैं प्राणायाम कुछ हद तक मदद कर सकता है क्योंकि वो एक प्रकार से एक्सरसाइज भी है और सही प्रकार से है क्योंकि आप जब योग आसन करते हैं तब सही रूप से योग आसन करो तो क्या है हर आसन के बाद रिलैक्सेशन करना है तो उसके बाद आपको रिलैक्सेशन भी मिल रहा है ठीक से ध्यान स्पिरिचुअलिटी से परिवर्तन हो रहा है प्राणायाम से भी आपके रेस्पिरेशन में चेंजेस आ रहे हैं कि जो ब्रेन के ऊपर भी उसकी इफेक्ट होगी तो वह डेफिनेटली मदद करेगा परंतु और जो अल्टरनेटिव थेरेपीज है उसमें सिस्टमेटिक रिसर्च नहीं की गई अलग अलग किससे कोई बता देगा
2: डॉक्टर साहब ये बात तो हुई कि योग जो फिजिकल एस्पेक्ट है फिजिकल तरीके से वो भी हेल्प कर सकता है हाउ अबाउट मेडिटेशन एक्चुअली वो उसकी मदद कितनी वो कितनी मदद कर सकते
3: मेडिटेशन योग आसन से भी ज्यादा मदद करेगा क्योंकि ये बीमारी की शुरुआत ही मन में हुई है तो मेडिटेशन वह मन को ठीक करेगा हमारे विचारों को ठीक करेगा और विशेष जो मेरा ब्रह्मा कुमारी इसके साथ अनुभव है इतने वर्षों का जिसमें देखा है कि राजयोग का अर्थ ही है विचारों में परिवर्तन लाना और जब हम विचारों में परिवर्तन लाते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर्स पर भी चेंजेस आते हैं वो भी बैलेंस होने लगते हैं तो इसके कारण मेडिटेशन सबसे अच्छा है और एक जो मेडिटेशन का फायदा है कि हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाता है और जब हम एटीट्यूड को चेंज करते हैं तो भी डिप्रेशन से बाहर निकलना सहज है
2: बिल्कुल कहीं ना कहीं ये पूरी सारी चीजें यू नो इकट्ठे साथ साथ काम करके हमें एक अच्छे रास्ते पर लेकर जा सकते हैं
3: बहुत बड़ा फायदा देखा गया है मेडिटेशन का कि हमें लोगों का भी सपोर्ट मिलता है आमतौर पर आप देखिए
2: कम्युनिटी सपोर्ट
3: कि भी राजयोग सेंटर पर जो जाने वाले भाई बहन हैं उनके द्वारा आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है और लोग आपकी बातों को सुनते भी हैं।
2: बिल्कुल सिस्टर शिवानी, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब मेडिटेशन कैंप्स में जाते हैं या सेंटर्स पे जाते हैं या लाइक माइंडेड पीपल होते हैं जहाँ पॉजिटिव वाइब्स हमें हर कदम पर नजर आ रही है, तो उसका पूरा इम्पैक्ट अगर कोई डिप्रेस्ड है तो कितना हो सकता है? एंड एक्चुअली इट रियली मैटर्स,
4: इट्स लाइक गिविंग ऑक्सीजन, यू नो, आप बिल्कुल जैसे एकदम अनकॉन्शियस है, आपको ऑक्सीजन दे दो तो चलने लग जाते हैं। तो वो सेंटर पर आने से एक वायुमंडल वैसा बना होता है पॉजिटिव एनर्जी का, तो यू गेट वेरी यू नो चार्ज्ड। दूसरा है, जब हम सेंटर पर जाते हैं हम और लोगों से मिलते हैं जो हमारी ही तरह प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लाइफ के चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। वो सेंटर पर रह नहीं रहे हैं, वो एक आश्रम लाइफ नहीं लीड कर रहे हैं। नो, घर बैठ के लगता है जो आश्रम में रह रहे हैं उनके लिए बहुत इजी है, घर में रह कर देखें। लेकिन वहाँ जब हम जाते हैं तो हम हजारों लोगों से मिलते हैं जो घरों में रह रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, बट देर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन देयर लाइफ। वो मेडिटेशन को कैसे अपने जीवन में अप्लाई करके क्या परिवर्तन आया है, दैट इंस्पिरेशन ब्रिंग्स अबाउट अ लॉट ऑफ चेंज। जब आप किसी को देख लेते हो ना कि किसी ने कर लिया, तो देन आई स्टार्ट फीलिंग, अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इतने लोग कर सकते हैं, देन इवन आई कैन डू।
2: बिल्कुल, बहुत प्रेरणा
4: एक्सचेंज भी होता है ना, हर एक का, आप छा आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम था कैसे ओवरकम किया, देन आई गेट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम यू। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑन द जर्नी अलोन, आई एम ऑन द जर्नी विद अ लॉट ऑफ पीपल, तो यात्रा इंटरेस्टिंग हो जाती है।
2: People who are actually in the same scenario, positive vibes देते हुए।
4: और जैसा संग वैसा रंग, ये तो हमें पता ही है। तो अभी हम बहुत ज्यादा अगर चिंता और इस तरह के लोगों के संग में रहते हैं जो हमें रहना ही पड़ेगा, वी कांट, तो उसका भी हम पर असर तो पड़ता ही है। लेकिन फिर थोड़ा समय निकाल कर अगर हम 15-20 मिनट के लिए भी ऐसे संघ में चले जाएं, तो वो भी अपना इम्पैक्ट हमारे ऊपर छोड़ देते,
2: तो वो पूरे दिन के लिए आपको तैयार कर देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, फिर से दवाइयों पे आते हैं क्योंकि दवाइयों से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी मिथ्स हैं, खासकर ये कि जब साइकैट्रिक प्रॉब्लम है या एक डिप्रेशन है, और डिप्रेशन जैसा कि आपने एक बार पहले भी कहा था कॉमन कोल्ड की तरह है आज के वक्त में, लेकिन डिप्रेशन को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता। जैसे ही ये कहा जाए कि आप डिप्रेस्ड हैं या आपको डिप्रेशन है, आप दवाई लेने भी जाएं, डॉक्टर कहते हैं आप दवाई लीजिए, केमिस्ट्री कह देगा कि एंटी डिप्रेसेंट मत खाइए, एंटी डिप्रेसेंट हैबिट फॉर्मिंग है, आपको साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे बहुत ज्यादा। क्या ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या है ऐसी चीज उनके अंदर जो हमें मना किया जाता है कि भाई आप ये मत खाइए?
3: पहले तो बाद में बताऊंगा कि भाई ये जो अप्रोच है ना वही गलत है। कि भी केमिस्ट डॉक्टर तो नहीं है, उसको थोड़ा भी मालूम नहीं है कई बार, तो उसने तो सिर्फ एक दो किस्से देखे। और सारी साइकेट्री में मैंने जो अनुभव किया है कि करीब 80-85% पेशेंट ठीक हो जाते हैं,
2: लेकिन कहते हैं
3: अच्छे लोगों को भी।
2: अच्छा, एक और मिथ, एंटी डिप्रेसेंट पिल्स जो हैं उनसे नींद आती है, वो सुला देती है,
4: ये सबसे बड़ी मिथ है, क्योंकि आप फील करते हैं कि आप पहले से भी ज्यादा लेजी फील कर रहे हैं।
2: तो इज इट लाइक दैट?
3: मे बी नहीं कनोप्रिया जी, हम एक एक चीज को ले, 3-4 इश्यूज है, एक एक इश्यू को ले तो वो क्लैरिफाई भी होगा। सबसे पहले जो इश्यू है कि केमिस्ट को नॉलेज नहीं है। हुआ क्या है जनरली कि जिनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, अच्छे अच्छे लोगों को भी थी, मैंने देखा है अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को भी डिप्रेशन आया है, कुछ अच्छे पॉलिटिशियंस को, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी डिप्रेशन आया है, और फर्स्ट टाइम ही उन्हें तकलीफ हुई, उन्होंने ठीक से ट्रीटमेंट ली, 5-6 मास में वो बिल्कुल ठीक हो गए। ऐसे जो 80-85% लोग है वो किसी को बताते नहीं है कि मुझे तकलीफ, एक व्यक्ति को भी, पड़ोसी को भी नहीं बताएंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था। परंतु दूसरे जो 15-20% लोग कि जिनको वो ठीक नहीं हुआ है, उसके कई कारण है जिसकी भी चर्चा करनी चाहिए, कि जिन्हें वो रिपीटेड अटैक्स आ रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, जो क्रॉनिक पेशेंट्स बन रहे हैं, वो दुनिया भर में उसकी पब्लिसिटी होती है, भले वो न भी कहे, परंतु जो लोग देखने वाले सबका, अरे ये डिप्रेस्ड है, 5 साल से डिप्रेस्ड है, 15 साल से डिप्रेस्ड है, ये दवाइयां ले रहा है, कितने डॉक्टरों के पास जा रहा है, वो और वह पब्लिसिटी दुनिया भर में होती है, तो इसलिए इस प्रकार की नेगेटिव मान्यता है। तो और जिनको पूरा नॉलेज नहीं, आदि केमिस्ट को तो नॉलेज है ही नहीं। और ये आपकी बात सच, अभी थोड़े दिन पहले की ये पेशेंट की बात है, जब मैंने मेडिसिन दी वो केमिस्ट, तो नहीं नहीं तुम बिल्कुल खाओ नहीं, ये तो एंटी, हालांकि वो सबसे सेफेस्ट मेडिसिन।
2: अच्छा, नींद आती है क्या बहुत ज्यादा खाने से?
3: ये भी बात की भी, ये नींद की दवाइयां नहीं है, नहीं, कुछ एक स्पेशल है कि भी जो नींद के लिए ही वह मेडिसिन बनाई गई है, कि भी जिनको नींद नहीं आती है, एंटी डिप्रेशन नींद की दवाइयां नहीं है, परंतु जो साइकियाट्री की पुरानी दवाइयां है, अब ऐसे अगर हम सिंपल वे में उसको डिवाइड करना हो सभी को समझ में आ जाए, इसलिए एक तो है कि भी पहले 1957 में पहली बार एंटी डिप्रेशन मार्केट में आई, उसके बाद कहेंगे कि भी 80s तक की जो दवाइयां है, और उसके बाद फिर सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन की मेडिसिन भी आई, तो जो पुरानी दवाइयां है उसमें थोड़ी नींद की प्रॉपर्टी ज्यादा है, उसमें कुछ कॉन्स्टिपेशन होने की भी संभावना है, मुंह सूखता है, इस प्रकार के उनके सिम्टम्स है। जो प्रेजेंट सेकेंड थर्ड जनरेशन एंटी डिप्रेशन है उसमें करीब करीब कोई भी नींद की प्रॉपर्टी
1: इवॉल्व होती गई ना,
3: आपको हाँ डे टाइम में ही लेनी है। कुछ दवाइयां ऐसी है कि जो आपको सवेरे नाश्ते के बाद तुरंत लेनी है।
1: एक्चुअली अगर हम उसके अंडरलाइन जो एरिया है वो ये समझ लें कि इट इज द केमिकल बैलेंस जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है उसे बैलेंस करने की कोशिश है। हम बाकी दवाइयां भी तो लेते हैं, बीमार जब होते हैं हम, कोई हमें बुखार हो जाता है, वायरल फीवर में कितने वायरल जब होता है तो कितनी कितनी प्रॉब्लम होती है, कितने हम बीमार, कितना उठा ही नहीं जाता, तब भी तो हम कितनी दवाइयां खाते हैं।
3: They also have side effect.
4: हाँ, बेनेड्रिल पी लो तो स्लीपी लगता है,
1: एंटीबायोटिक्स तो इतना आपका स्टमक इतना अपसेट कर देते हैं कितने टाइम तक,
3: तो बैक्टीरिया को खत्म करते हैं।
1: हाँ, तो वो जब हम वो ले सकते हैं तो हम ये क्यों नहीं
3: ले सकते हैं? और थोड़ा टाइम लेना है इसमें ना, कुछ बातें जो एडवाइस प्रॉपरली देनी हो तो मैं एक तो ये कहूंगा कि भाई एक ही साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट लो, क्योंकि साइकेट्री एक है ना छोटी सी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड नहीं है, जो छोटी सी फील्ड है तो अच्छा साइकेट्रिस्ट सब मेडिसिन को जानता है, भल उनको आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ये काम नहीं कर रही है, नहीं आप इसको भले चेंज करो, ऐसा भी आप कहे तो वह ट्राई करेगा, और सफिशियंट समय के बाद आप समझते हैं कि इफेक्ट नहीं हो रही है तब भले चेंज करो। कई बार पेशेंट एक के पास गया बस 10 दिन में दूसरे के पास जाता
1: है। यहाँ पे एक मैंने आपने कहा कि एक ही साइकियाट्रिस्ट रखे, तो एक ये बात भी बहुत है कि साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट सिर्फ बातें बना के आपका पैसा बनाते, अपना पैसा बनाते हैं, ये बहुत बड़ी मिथ अपने दिमाग में हम सब लोग लिए घूमते हैं कि फिजिक मतलब अगर हमें कोई प्रॉब्लम है हम किसी MD के पास जाते हैं या किसी जनरल फिजिशियन के पास भी जाते हैं तो वो तो हमारा तो हवा मीटर लगाएंगे, कई नब्स देखेंगे, काफी सारी और चीजें देखेंगे, जो साइकियाट्रिस्ट है वो एक घंटा हमसे बात करेंगे, हमसे पैसे ले लेंगे और उसके बाद सिर्फ इसी बात का, और बार बार बुलाएंगे। ये मिथ भी मैं चाहती हूँ कि क्लियर आज आप करें कि
3: एक तो जो आपने कहा कि भी साइकियाट्रिस्ट को जैसे भी और डॉक्टर को स्टेथोस्कोप लगा करके या तो कुछ और फिजिकल चेकिंग करके पता चलता है कि कौन सी बीमारी है, साइकियाट्रिस्ट को आप जो सिम्टम्स बताएंगे, जो आपको प्रश्न पूछेगा, आपके उत्तर देंगे, उसके आधार से उसको निर्णय करना है कि कौन सी बीमारी है। बल्कि कुछ चेकअप की जरूरत है, ब्लड प्रेशर चेक करना है और कुछ चीजें वो चेक करने की जरूरत है, अन्यथा आपकी बातों से उसे परफेक्ट डायग्नोसिस करना है, तो इसलिए वह जरूरी है। और अच्छा साइकियाट्रिस्ट अगर एक घंटा आपको देता है और ठीक से साइकोथेरेपी दे रहा है तो वो फिजिशियन से बहुत बड़ा है। आपका MD फिजिशियन तो 2 मिनट में आपको उसने चेक किया, आपसे फीस ले ली, है इसका भी इतना ही क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन की कमी नहीं।
1: That's what I'm saying, you know, this is a mindset which we all have. ये माइंडसेट तोड़ना बहुत जरूरी है कि थेरेपिस्ट जो साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट कितने इम्पोर्टेंट होते हैं।
3: तो वो जो कर रहे हैं वो वर्धन ज्यादा ही अच्छा कर रहे हैं। तो एक तो जैसे मैंने कहा ना कि ये ना खरीदारी करना, जैसे शॉपिंग होता है ना कि भी एक दुकान में गए आपने भाव ताल किया आपको पसंद नहीं आया दूसरे दुकान में गए, ऐसा नहीं करिए, एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए और सफिशियंट टाइम दीजिए। ये मैं मानता हूं कि अगर कोई साइकियाट्रिस्ट आपको टाइम नहीं देता है, कहीं बहुत बिजी आपको 1-2 मिनट भी नहीं देते हैं और आप समझते हैं कि भी मेरी बात कोई ठीक से समझ नहीं रहे हैं, तो आप भले चेंज भी करना चाहे तो करें, परंतु एक सफिशियंट टाइम देना जरूरी। दूसरी बात कि उसकी राय के अनुसार नियमित दवाई लो, आप अपना चेंजेस नहीं करो। आज एकदम लोग परिवर्तन कर देते हैं कि भी 2 दिन ली फिर अभी तो मैंने दवाई आधी कर दी है कहते, तो उसकी इफेक्ट ही नहीं होनी। स्पेशली जो एंटी डिप्रेशेंट है उनका एक लेवल है, बल उल्टा उस लेवल में साइकियाट्रिस्ट धीरे धीरे आते हैं, 2-3 सप्ताह में जो फुल क्लिनिकल डोज होना चाहिए वहां तक पहुंचते हैं, और वह क्लिनिकल डोज करीब आप 2 मास कम से कम 2 से 2.5 मास लो, तब वह केमिकल्स का बैलेंस फिर से आता है और आपको जो सही इफेक्ट होने लगेगी वह इफेक्ट होगी
2: 2 महीने के बाद मिनिमम,
3: 2.5 महीने के बाद, और वो भी क्लिनिकल डोज पे।
2: बिल्कुल।
3: उल्टा लोगों में मिथ यह भी है कि भी हर बार जाते हैं ना मेडिसिन को थोड़ी थोड़ी बढ़ा देता है, पहले कहा था 1 लो 2 सप्ताह के बाद, गए कहते 2 लो, अभी कहता 3 लो, परंतु उसको तो पता था कि भी कम से कम 3 टेबलेट की जरूरत है, वो जो क्लिनिकल डोज है वहां तक, फर्स्ट डे नहीं दे सकता। फर्स्ट डे देता तो आप शायद उसको टॉलरेट नहीं कर पाते।
2: बिल्कुल। तो ये डॉक्टर साहब बहुत सारी और भी बातें हैं, आपने कहा था ECT वाली जो एक थेरेपी है, और सबसे बड़ी बात साइकोथेरेपी, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। दीज आर फ्यू एस्पेक्ट्स जिसको अभी हमने नहीं छुआ है, अपनी अगली कड़ी में हम और इसके बारे में जानेंगे, और ये जो ड्रग्स के साथ जो ट्रीटमेंट है वो कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में और डिटेल में जाएंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि वक्त हो चुका है तो डॉक्टर गिरीश पटेल एंड सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बिल्कुल, अगर प्रॉब्लम है, अगर डिप्रेशन है, उसकी ट्रीटमेंट भी उतनी ही जरूरी है। हमने इतनी सारी बातें की थी कि डिप्रेशन क्यों होता है, लेकिन ये जानना कि ट्रीटमेंट कितनी जरूरी है, और सबसे बड़ी बात जो आज डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया कि सही साइकियाट्रिस्ट और पूरा फेथ रख के पूरी डोज लेकर अगर बीमारी है तो उसकी पूरी दवाई लेनी भी जरूरी है, ये बात आज अगर हम गांठ बांध लें तो कहीं ना कहीं हमारी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। आपके पास कोई सवाल है जिसका आप जवाब चाहते हैं तो आप हमें फोन पर या फिर ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। तो आपको बता दें कि अगली कड़ी में डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के बाकी तरीके और खासकर साइकोथेरेपी कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है और किस तरह बहुत मदद कर सकती है डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए, इस पर खास चर्चा करेंगे। आज अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें इतना ही, अगली कड़ी में होगी फिर मुलाकात। नमस्कार।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है, या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मित्रांशिवाय आयुष्यापूर्णच हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर
1: करायचं.
0: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं.
2: लकडी की काठी, काठी पे घोडा.
0: मनात बीट्स वाजल्या की शरीर आपोआप फिरकतं. त्याच सोबत
3: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध.
0: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा.
1: पहला नशा, पहला खुमार.
0: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
4: आप सुन रहे हो पुनेरी आवाज 107.8 FM. मैं हूं आरजे शिवप्रिया. आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर. श्रुति हो, मनुष्यों के जीवन में जब भी कठिनाइयां आती है तब मनुष्य परमात्मा से कहता है कि परमात्मा कृपा करो, संकट से निकालो. लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मैं तुमको संकट से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता हूं, उस रास्ते पर चलना तुम्हें ही है. परमात्मा कहते हैं तुम्हें सबसे पहले अपने आप पर कृपा करनी है. अगर हम परमात्मा के दिखाए रास्ते पर चले ही नहीं, सिर्फ कृपा मांगते रहे, तो हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती. भगवान के दिखाए हुए रास्तों पर हमें चलना है. सही राह दिखाना, यही परमात्मा की कृपा है. लेकिन उस राह पर चले ही नहीं, सिर्फ कृपा मांगते रहे, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा. हम कृपा मांगने तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं, लेकिन हम खुद अपने साथ क्या करते हैं? कभी खुद पर खुद कृपा करने का हमने सोचा ही नहीं. बाहर वाले लोग हमारा इतना नुकसान नहीं कर सकते जितना हम अपना खुद का नुकसान करते हैं. सुबह से रात तक हम कितना अपने मन को निगेटिव व्यर्थ विचारों में बिजी करते हैं. भूतकाल में लोगों के व्यवहार, कर्मों को देख देख कर जो मन में हमने घाव बनाए हैं, सोच सोच कर उस घाव को भरने की कोशिश ही नहीं करते. कई सालों तक उस घाव को खुदेड़ खुदेड़ कर याद करते रहते हैं और घाव ताजा करते रहते हैं. घायल रहने की जैसे आदत सी बन गई है. सुखों की बातें ज्यादा याद नहीं आती. किसी ने कभी दुख दिया, वही बार बार क्यों याद आता है? क्योंकि हमने अपने मन के घावों को भरा ही नहीं. दुख देने वालों ने हमारा इतना नुकसान नहीं किया जितना हर बार अपने घावों को खुदेड़ कर याद कर हम बार बार दुखी होकर हमने अपना नुकसान कर लिया. दूसरे कैसा व्यवहार करेंगे ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह तो हमारे हाथ में है ना. दूसरों से प्यार से बात करने की उम्मीद रखने के बजाय अपने आप से ही प्यार से बात करने की उम्मीद रखी होती तो क्या हम दुखी होते? दूसरे हमसे अच्छा व्यवहार करें इस उम्मीद के बजाय क्या हमने अपने आप से अच्छा व्यवहार किया? दूसरे हमारे बारे में क्या बात करते हैं इस पर ध्यान ज्यादा आ जाता है, लेकिन मैं अपने बारे में क्या बात करती हूँ, क्या सोचती हूँ? दूसरों को जज करने में, समझने में जिंदगी चली जाती है, लेकिन खुद को समझना भूल जाते हैं. दूसरों से अच्छी बातों की व्यवहार की अपेक्षा के बजाय क्यों ना मैं अपने आप से अच्छी बातें करूं, अच्छा व्यवहार करूं। अपने को समझने में, अपनी कमी कमजोरी खत्म करने में समय लगाऊं, अपने आप को बेहतर बनाने में समय लगाया जाए। आज तक हमने ऐसा कुछ भी तो अपने साथ नहीं किया, सिर्फ अपने आप को याद दिलाते रहे कि दूसरों ने हमारे साथ क्या किया, लेकिन एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मैं अपने साथ क्या कर रही हूं। अपने मन के घावों को भरना, अपने मन में अच्छे संकल्पों को क्रिएट करना, दुनियावी बातों से मन को हटाना, निगेटिव व्यर्थ बातों से मन हटाकर सकारात्मक श्रेष्ठ बातों में मन को लगाना, अपने मन का सच्चा मित्र बनना, अपने मन की उदासी को दूर करने के लिए ज्ञान की अच्छी खुराक देना, बार बार मन को भूतकाल के दर्द में जाने से रोकना, वर्तमान में कुछ नवनिर्माण के काम में बिजी रखना, यही तो है ना अपने आप पर कृपा करना। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिड़के बोलना है, कुछ भी हुआ चिड़के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, बहुत से लोगों को एकांत में रहना बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि बाहर का शोर खत्म होते ही मन का शोर शुरू हो जाता है और हम अपने ही मन के शोर से दूर भागना चाहते हैं, इसीलिए एकांत हमें पसंद नहीं आता। लेकिन मन के शोर को दबाने से या बाहर की दुनिया में भटकाने से मन के घाव नहीं भरेंगे। जैसे ही एकांत मिलेगा ये फिर शोर करने लगेगा और तब तक करेगा जब तक हम इसके घाव नहीं भरते। मन के घाव भरते हैं परमात्मा के ज्ञान और परमात्मा के याद से। हम बार बार भूल जाते हैं कि हम कलयुग में हैं। कलयुग में सतयुग जैसा व्यवहार तो मिलेगा नहीं। गर्मियों में स्नोफॉल की उम्मीद करना बेकार है, गर्मी में गर्मी ही पड़ेगी। कलयुग में सभी बीमार हैं। बीमार लोगों से सतयुगी व्यवहार की अपेक्षा करना बेवकूफी है। कोई क्रोध के कीटाणु से बीमार है, कोई लोभ से बीमार है, कोई नफरत से बीमार है, कोई स्वार्थ के कीटाणु से बीमार है। किसी के अंदर ईर्ष्या के जर्म्स इतने फैल गए कि बेचारा वो खुद ही खुश नहीं रह पाता। किसी में काम वासना के कीटाणु हैं, अपने चारों ओर सिर्फ बीमार ही बीमार नजर आते हैं। किसी में भय के कीटाणु हैं, इनसिक्योरिटी के कीटाणु हैं। जब ये कीटाणु बढ़ जाते हैं तो वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करता है और हम परेशान होते हैं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, और दुखी होकर बार बार हर्ट होने की बीमारी हम खुद को दे देते हैं। बार बार दुखी होना यह भी भावनात्मक बीमारी का रूप लेता है। आजू बाजू सारे ही पेशेंट है, अगर हर एक के विकारों के कीटाणु हम देखने लगे और उसका चिंतन करने लगे तो यह कीटाणु हम में भी आएंगे और हम भी बीमार हो जाएंगे। ऐसे कलयुगी विकारी दुनिया में अपने आप को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? परमात्मा कहते हैं बीमार लोगों को माफ कर दो, कमजोर लोगों को दुआ दो, इनके प्रति शुभ भावना रखो। सुनने के बाद थोड़ा मुश्किल तो लगता है कि जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया उन्हें माफ करना, दुआ देना, उनके प्रति शुभ भावना भी रखना। लेकिन परमात्मा ने हमें बीमारी से बचने का रास्ता बताया है। माफ नहीं करेंगे तो दुखी होते रहेंगे, दुआ नहीं देंगे तो बद्दुआ देकर खुद को भी बीमार करेंगे। शुभ भावना नहीं रखेंगे तो बदले की भावना रख खुद का भी नुकसान करेंगे। खुद की खुशी, शांति, एकाग्रता सब गवा देंगे। परमात्मा ने रास्ता तो बता दिया, लेकिन सिर्फ कृपा मांगने से कुछ नहीं होगा। इन रास्तों पर हमें चलना होगा। अगर हम इतने कमजोर हो गए हैं जो परमात्मा के दिखाए हुए रास्तों पर चल ही नहीं पाते, हमारे कदम लड़खड़ाते हैं, तो परमात्मा कहते हैं, बच्चों मुझे याद करो, स्वयं को शरीर के भान से मुक्त कर आत्मा समझ परम आत्मा को याद करो, तो तुम्हें शक्ति मिलेगी और तभी तुम सदमार्ग के रास्तों पर चल पाओगे। ज्ञान हमें रोशनी दिखाता है कि इस राह पर चलना है, और परमात्मा की याद हमें उस राह पर चलने की ताकत देती है। बिना ताकत के हम चल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम भी तो कभी ना कभी नफरत के कीटाणुओं के कारण बीमार थे। जब जब किसी ने हमारे साथ बुरा किया, तब तब हमने भी तो उससे नफरत की। पहले वो बीमार थे, फिर उनके संपर्क में आकर हम भी तो बीमार हुए। शक्ति घटाई, अब शक्ति बढ़ानी है तो परमात्मा को याद करना होगा। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ RJ शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, देहधारी मनुष्यों की यादों को भुलाकर एक परमात्मा को याद करना, यही अपने ऊपर की गई सबसे बड़ी कृपा है। मन की दुखों की आदत सी हो गई है, बार बार दुख देने वालों को याद करता है, और जो सुखों का सागर परम आत्मा है उसे याद करना भूल जाता है। कई जन्म हमने कलयुग में लिए हैं, कई जन्मों में दुख देखे हैं, कई बार सुना भगवान को याद करो, लेकिन मन और बुद्धि से भगवान को याद करना तो हमें आता ही नहीं था। मन भगवान के बारे में विचार करे और बुद्धि भगवान के स्वरूप को देखे, इसी को यथार्थ याद करना कहते हैं। कमाल है ना मन की, दुख देने वाले को याद करता है, पर सुख देने वाले, प्यार देने वाला, साथ निभाने वाला परम पिता परमात्मा को याद नहीं करता। मनुष्यों को याद करने से दुख मिलेगा, भगवान को याद करने से सुख मिलेगा। अपने मन को परमात्मा की तरफ मोड़ना, यही है अपने ऊपर सच्ची कृपा करना। मन हमारा बच्चा है और ये बच्चा कलयुग में रहते रहते बीमार भी हो गया है, कमजोर भी हो गया है, घायल भी हो गया है, इसीलिए शोर करता है। टीवी मोबाइल देकर हम इसका शोर थोड़ी देर के लिए बंद तो करते हैं, लेकिन बेचारे के घाव नहीं भरते। कब से घायल है, हम मरहम नहीं लगाते, कब से बीमार है, परमात्मा ज्ञान की दवाई नहीं खिलाते। कमजोर होकर रोने लगता है तो हम अपने ही मन को चुप नहीं कराते, उसे घंटों घंटों रोने देते हैं। किसी की दुख भरी यादों को याद करना, किसी के बुरे व्यवहार को याद कर दुखी होना, यह भी तो मन का रोना ही है। पुरानी बातों को याद करके जो निगेटिविटी मन में कई सालों से पकड़ रखी है और उसी से वो खुद को ही घायल कर रहा है, हम उससे वो निगेटिविटी छीन कर सकारात्मकता का खिलौना अपने मन को नहीं देते। औरों ने जो किया सो किया, अपनी अपनी बीमारी के कारण, लेकिन हमने अपने आप को ठीक करने का, खुश रखने का कोई भी उपाय क्यों नहीं सोचा? परमात्मा कहते हैं कलयुग के अंत में सभी के अंदर की बीमारी बढ़ेगी, क्रोधी व्यक्ति और क्रोधी बनकर उल्टे कर्म करेगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत के कीटाणु इस दुनिया में बढ़ेंगे, अंत में सब अति में जाकर फिर इस कलयुग का अंत होना है। कलयुग में विकारों के कीटाणुओं का तूफान चारों ओर है। अगर अपने आप को बीमारी नहीं करना है तो ज्ञान का मास्क और परमात्मा याद की इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई लेनी पड़ेगी। संसर्गजन्य बीमारी बाहर फैली हुई है तो खुद की केयर करने की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। जैसे अगर नॉर्मल दिन होगा तो घर दिन में एक या दो बार साफ किया तो भी चल जाता है, लेकिन अगर धूल मिट्टी का तूफान चल रहा हो तो घर बार बार साफ करना पड़ता है। सतयुग में तूफान ही नहीं था तो वहां केयर करने की जरूरत नहीं थी। द्वापर में एक दो बार साफ करना पड़ता था, लेकिन कलयुग में तो तूफान बार बार आते हैं। कलयुग में खुद को बार बार साफ करना पड़ता है। क्या पता कौन से बीमारी का जम हम अपने साथ ले आते हैं। अपने मन को बार बार साफ करना अर्थात परमात्मा द्वारा प्राप्त ज्ञान सुनना, जितने बार मन मैला होगा दूसरों के कीटाणुओं का चिंतन करके, उतनी बार ज्ञान सुनकर मन को साफ करना पड़ेगा। परमात्मा के याद की दवाई खिलाकर मन की शक्ति बढ़ाना पड़ेगा, ताकि मन बार बार बीमार ना पड़े, बार बार रोए नहीं, बार बार शोर नहीं मचाए। यही है अपने आप पर सच्ची कृपा करना। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, a new way of responding, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं दुख के कीटाणु हमेशा गंदगी में पनपते हैं। जो दिल साफ होगी, अर्थात जो दिल सबको क्षमा करेगी, सबको दुआ देगी, सबके प्रति शुभ भावना रखेगी, ऐसे साफ स्वच्छ दिल में दुख के कीटाणु नहीं पनपते। जब हम क्षमा करना सीख जाते हैं तब हमारा मन साफ होता जाता है। जब हम दुआ देते हैं, शुभ भावना रखते हैं, तब हमारा मन स्वच्छ होता है। जहाँ नफरत होगी, ईर्ष्या होगी, स्वार्थ होगा, वहां दुख के कीटाणु जन्म लेंगे। गंदगी में हम कभी सुकून की सांस नहीं ले सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह गंदगी है। जब हम इनसे छूटने का प्रयत्न करते हैं तब हम अपने ऊपर कृपा करते हैं। हर मनुष्य चाहता है कि वो शांत रहे, खुश रहे, लेकिन इन विकारों के कीटाणु ने उसके अंतर मन में प्रवेश कर लिया है और ये कीटाणु उसे शांत, खुश रहने नहीं देते। जब हम परमात्मा को याद करने लगते हैं तब हमारे अंदर के ये कीटाणु मरने लगते हैं और हमारे अंदर के आत्मा के ओरिजिनल संस्कारों का उदय होता है। ज्ञान, प्रेम, शक्ति, सुख, पवित्रता, आनंद, शांति का। परमात्मा के याद के बिना हम इन कीटाणुओं से छुटकारा नहीं पा सकते। हमें ऐसी दुनिया में रहना है जहां विकारों के कीटाणुओं की बीमारी चारों ओर फैली हुई है। अगर हमने अपना ध्यान नहीं रखा तो हम भी बीमार हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ हर दिन कोई ना कोई तो आएगा ही दुख देने, कटु वचन बोलने, निंदा करने, गुस्सा करने। परमात्मा कहते हैं तुम्हें कलयुग में रहते हुए अपने सुंदर व्यक्तिमत्व की मूर्ति तैयार करनी है। मूर्ति तैयार हो रही है तो छैनी हथौड़े के वार तो होंगे ही, अर्थात बीमार लोगों द्वारा गुस्सा, कटु वचन, निंदा, अपमान, मिलेगा ही। परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम्हें कलयुग में सब कुछ सहन करना है। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, सर्दी, गर्मी सब सहना है, क्योंकि सहनशीलता का फल सतयुग में बहुत ही मीठा मिलता है। सहनशीलता भी हम में तब आएगी जब हम परमात्मा को याद करेंगे। बिना परमात्मा याद के हम छैनी हथौड़े के घाव सह नहीं पाएंगे और टूट के बिखर जाएंगे। परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम्हें टूटना नहीं है, सहन करना है। कभी भी खंडित मूर्ति की पूजा भी नहीं होती और गायन भी नहीं होता। हमें परमात्मा के लिए ऐसी मूर्ति बनना है जो खंडित ना हो। थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर हम रोज ज्ञान सुने और परमात्मा को याद करें तो हम परमात्मा के लायक तो बन ही जाएंगे। पुरुषार्थ तो बहुत बड़ा है खुद को बदलने का। कभी मन में जरूर आएगा कि कर पाएंगे या नहीं, लेकिन मन को समझाना है। परमात्मा ने रास्ता दिखाया है, इन रास्तों पर चलकर खुद पर खुद ही कृपा करनी है। चलते चलते कभी गिर भी जाएंगे, तब भी खुद को फिर से ऊपर उठाना है और फिर से चलना है। अपयश भी मिलेगा, कभी कभी लगेगा कि सहन नहीं होता। किसी के कटु वचन, किसी का गुस्सा, हम जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन अपने मन को समझाना है कि सामने वाला बीमार है, इसलिए तो ऐसा कर रहा है। अगर हम भी रिएक्ट करते रहेंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे। अपने मन को खुद ही समझाना पड़ता है। सच्चाई राह मुश्किल जरूर है, लेकिन इन्हीं राहों पर परमात्मा का असीम प्यार, कृपा और मंजिल मिलती है। लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, आपका आत्मविश्वास तोड़ने की भी कोशिश करेंगे। कभी कभी तो आप हार कर सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार को रिएक्ट भी कर दोगे, लेकिन फिर वापस अपने आप को ही समझा कर खुद को ही परिवर्तन करने के लिए तैयार करना है। सामने वाला तो नहीं बदलेगा, अब बदलना हमें ही है। लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश तो करते रहेंगे, आपका आत्मविश्वास तोड़ने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब की परवाह नहीं करनी। अगर परवाह करनी है तो पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की करनी है। लोगों को खुश करने की, उनसे अच्छाई का सर्टिफिकेट पाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना जरूर ख्याल हो कि जब मैं परमात्मा के सामने जाऊं तब मेरा सर झुका हुआ ना हो। यही है अपने ऊपर की गई सच्ची सच्ची कृपा। श्रोते हो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुश रहो।
3: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
4: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
3: 12 साल विश्वास के। विकास के, जन कल्याण के।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किसके पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: कहते हैं कि जलियांवाला बाग की मिट्टी पर गिरने वाला खून उन लोगों को अपनी तरफ बुलाता था जिनके सीने में आजादी की तमन्ना आग की तरह रोशन थी। 12 साल के एक बालक ने भी उस बाग से मिट्टी उठाकर अंग्रेजों से बदला लेने की सौगंध खाई थी। उस बालक का नाम था भगत सिंह। इंकलाबी परिवार से नाता रखने वाले सरदार भगत सिंह ने स्वतंत्रता आंदोलन को न सिर्फ एक नई दिशा दी थी बल्कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया था। भगत सिंह समय से आगे की सोच रखने वाले क्रांतिकारी थे। उन्होंने नौजवान भारत सभा का निर्माण करके पंजाब में क्रांति का आह्वान किया था। चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी संघ का निर्माण किया और सशस्त्र क्रांति के द्वारा देश को स्वतंत्र गणतंत्र के रूप में देखने का ख्वाब देखा था। अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया और सांडर्स का वध कर दिया। इसके अलावा अंग्रेजों के काले कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने असेंबली हॉल में बम फेंके। बम फेंकने के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन जब ब्रिटिश हुकूमत को ये पता चला कि भगत सिंह सांडर्स की हत्या में शामिल थे तो उन पर फिर मुकदमा चलाया गया। अदालती कार्यवाही के दौरान भगत सिंह ने अपने बयानों और 61 दिन के आमरण व्रत से मुकदमे को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। फिर रातों रात करोड़ों हिंदुस्तानियों की आंख का तारा बन गए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। भगत सिंह की शहादत ने लोगों के मन पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि शहीद शब्द उनके नाम के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया।

0: क्या बात है, आज बच्चा पार्टी बड़ी उधम मचा रही है।
1: एग्जाम जो खत्म हो गई है।
0: ओह, तब तो तुम्हारे मजे ही मजे हैं अब है।
2: दादाजी आज हमको बाहर ले चलो।
0: अरे नहीं भाई, आज तो मुझे बहुत काम है। ऐसा करते हैं अपन परसों चलते हैं। ओहो, अब तुम लोग मानने वाले तो हो नहीं है। चलो ठीक है, गजबीय काका के ढाबे चलते हैं।
2: दादाजी आज एक बात बताना तो भूल ही गई।
0: वो क्या?
2: इसको आज प्राइज मिला है।
0: ओ, किस लिए मिला है?
3: इसने देशभक्ति गीत गाया था।
0: चलो चलो, हमको भी सुनाओ बेटा।
2: चलो चलो।

वाह वाह बच्चों, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा गाया तुम लोगों ने, बहुत अच्छा। पता है तुम्हें ये गीत राम प्रसाद बिस्मिल का लिखा हुआ है और भगत सिंह और उसके साथी इसे बहुत गाया करते थे।

0: लो, ढावा भी आ गया बात करते करते।
1: चलो चलो चलो बच्चों, हाँ धीरे धीरे गाड़ी से उतरो, हाँ हाँ धीरे धीरे।
0: अरे छोटू उस्ताद।
2: हाँ मालिक, आया आया आया।
0: अरे भाई ये गजबीये काका नहीं दिख रहे हैं, कहाँ हैं?
2: अरे गजबीये काका गए हैं, 2-3 दिन हो गए ना, गांव गए ना अपने।
0: ओ फिर तो तुम्हारे मजे मजे होंगे।
2: हाँ मालिक, हाँ हम लोग के काय के मजे, हमारी तो कोई छुट्टी।
0: अच्छा सब काम ठीक ठाक चल रहा है ना?
2: एकदम एकदम ठीक।
0: चलो ये ठीक है। अच्छा बच्चा पार्टी, तुम लोग क्या क्या खाओगे?
3: दाल तड़का, पनीर की सब्जी, खीर।
2: अरे वाह, तुम लोग की परीक्षा खत्म हो गई क्या? तभी।
0: अच्छा छोटू उस्ताद इनका ऑर्डर ले ले भाई, है जल्दी लगवा दे।
3: दादाजी हमें भगत सिंह के बारे में बताओ ना।
0: हाँ बच्चा पार्टी, मैं तो जानता हूँ तुम लोग मानने वाले नहीं हो। अच्छा चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें भगत सिंह के बारे में बताता हूँ। अरे बच्चों, जैसे तुम जिद कर रहे हो ना कहानी सुनाने के लिए, वैसे ही जब भगत सिंह छोटे थे तो वो भी जिद किया करते थे अपनी चाची से कहानी सुनाने के लिए, और खूब कहानियां सुना करते थे। लेकिन उनकी चाची देशभक्ति की कहानी सुनाया करती थी। कहानी सुनते सुनते भगत सिंह कहा करते थे कि मैं भी बड़ा होके अंग्रेजों का सफाया करूंगा।
4: भारतीय क्रांतिकारियों की प्रथम पंक्ति में एक से बढ़कर एक महान व्यक्तित्व हुए, जिनमें से एक थे भगत सिंह, शहीदों के शहीद भगत सिंह। 11 नवंबर 1907 को जिला लायलपुर में सरदार किशन सिंह जी के घर जन्मे भगत सिंह का उन्मुक्त बचपन घर के देशभक्तिपूर्ण वातावरण को आत्मसात करता रहा और उसके लक्षण भी दिखने लगे।
5: बेटा भगत, ये क्या कर रहे हो?
6: बंदूके बो रहा हूँ।
7: अरे पुत्र, बंदूके बोके तू क्या करेगा?
6: इनसे जो बंदूके होगेगी उनसे मैं अंग्रेजों का सफाया करूँगा।
7: हाय मेरा पुत्र, इतनी चिंता करता है मेरी। मैं बड़ा होकर अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल दूंगा।
4: बचपन से ही मेधावी बुद्धि के मालिक भगत सिंह 9वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते देशभक्ति की भावना के रंग में इतने रंग चुके थे कि जलियांवाला बाग की घटना सुनकर स्कूल से सीधे अमृतसर घटना स्थल पर पहुंच गए और वहां प्रतिज्ञा करके लौटे कि उन्हें देश की आजादी के लिए लड़ना है, और पिता को सूचित कर चल पड़े इस कठोर डगर पर। पहले सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया, फिर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई।
8: साइमन कमीशन,
9: गो बैक, गो बैक।
8: साइमन कमीशन,
9: गो बैक, गो।
0: ये सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ये।
10: हाँ हाँ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।

0: यू बड़े इंडियंस जुलूस निकालोगे, आंदोलन करोगे, यू डॉट इंडियंस।
1: हम तुम्हारी मनमानी नहीं चलने देंगे, साथियों आगे बढ़ो,
2: भाग जाओ वरना गोली चलाई जाएगी।
3: साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक।
2: चलाओ लाठियां।
4: जी साहब।
2: खदेड़ दो सबको, मारो।
3: साइमन कमीशन गो
5: बैक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।

0: जी आप ठीक है ना लाला जी? हम इन अंग्रेजों का अत्याचार नहीं सहेंगे लाला जी।
1: राजगुरु जल्दी आओ, लाला जी के सिर से खून बह रहा है।
0: भगत सिंह, लाला जी के सिर से खून बह रहा है। लाला जी आप ठीक है ना? हम इन अंग्रेजों का अत्याचार नहीं सहेंगे लाला जी। लाला जी आप ठीक है? लाला जी,
2: आई डिक्लेयर दैट द ब्लो स्ट्रक एट मी विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
0: लाला जी
1: क्या हो रहा है? लाला जी को अस्पताल जाना पड़ेगा जल्दी।
3: लाला जी,

0: जालिमों ने लाला जी की, ये राष्ट्र का घोर अपमान है।
1: हाँ, ये राष्ट्र का घोर अपमान है।
2: घोर अपमान है,
1: हम नहीं सहेंगे।
2: हम नहीं सहेंगे अब।
3: हाँ, पंडित जी ठीक कहते हैं।
1: हाँ, इन्होंने लाला जी ही नहीं 30 करोड़ भारतीयों पर लाठी बरसाई है। हम इन अत्याचारियों का दमन करेंगे।
0: हाँ भगत सिंह, हम इन अंग्रेजों को इस देश से निकाल कर रहेंगे।
1: हाँ, निकाल कर रहेंगे।
2: हाँ।

0: लाला लाजपत राय की शहादत पर श्रद्धा के फूल अर्पित करते हुए भगत सिंह और साथियों ने जो प्रण किया उसे पूरा करने के लिए तयशुदा स्थान पर पहुंच गए।
1: अगर नहीं किया तो हमारी क्रांति अधूरी रह जाएगी। हमें ये काम करना है राजगुरु। बस इशारा होते ही
2: गोली चलानी है।
1: बिल्कुल, और ध्यान रहे निशाना चूकना नहीं चाहिए।
2: भगत सिंह बिल्कुल नहीं चूकेगा।
1: तैयार तो है हम, बस निशाना सही लगे।
2: हाँ भगत सिंह, इशारा हो चुका है।
1: बिल्कुल हाँ ठीक, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तुम ध्यान रखना। हाँ आगे बढ़ो, चलाओ गोली।
2: हाँ
1: चलाओ गोली, चलाओ राजगुरु, चलाओ गोली।
3: अगर नहीं किया तो हमारी क्रांति अधूरी रह जाएगी। हमें ये काम करना है।
1: भागो राजगुरु, भागो सब यहाँ से।
2: हाँ भगत सिंह
1: जल्दी।
2: हाँ।
1: सब अलग अलग निकल जाओ।
2: हाँ। निकलो निकलो।
4: काम हुआ भगत सिंह?
1: हाँ पंडित जी, काम तमाम हो गया।
4: ये लो साइकिलें, थाने की तरफ हलचल बढ़ेगी। जल्दी इस तरफ को निकलो। भगत सिंह तुम दुर्गा भाभी के साथ कलकत्ता की रेल पकड़ो। भगवती चरण ने सब इंतजाम कर दिया है।
1: ठीक है
4: राजगुरु
2: जी।
4: तुम भी साथ जाओगे दोनों भेष बदल कर।
2: जी।
4: ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, वहीं मिलेंगे।
1: ठीक है पंडित जी।
2: जी।
0: स्वतंत्रता के आंदोलन को तीव्र गति देने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, जयदेव कपूर और सभी साथी सकुशल कलकत्ता पहुंचे और वहां अगले कदम पर विचार विमर्श हुआ।
1: पंडित जी, सांडर्स वध तो संपन्न हुआ, क्यों ना असेंबली में बम के धमाकों के साथ अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई जाए।
5: हाँ, हम भी यही चाहते हैं।
4: हाँ भगत सिंह, यही ठीक रहेगा, पर सारी योजना क्या होगी ये बताओ।
1: असेंबली जाकर सरकारी नुमाइंदों के सामने बम फेंके जाएं, वहां पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के पर्चे बांटे जाएं।
4: बिल्कुल सही योजना है।
5: हाँ हम सब समर्थन करते हैं।
1: साथियों, देश हमारा है और हक कानून इन अंग्रेजों के, जमीन हमारी है और पैदावार इनकी, नदियां हमारी है और वाटर टैक्स ये ले, हमारे लिए न वकील न दलील और ना ही अपील। पंडित जी, हमारे कानों में हर पल ये गुलामी काली की तरह गूंजती रहती है।
4: भगत सिंह, सोने के प्याले में ढका हुआ सत्य है ये आजादी, विस्फोट करना ही होगा। सांप केंचली मारकर बैठा है हमारी आजादी पर।
2: पंडित जी, दुनिया के किसी ताकतवर ने आसानी से दी है कभी आजादी? उससे अधिक ताकतवर बनना ही पड़ता है।
4: ठीक कहते हो राजगुरु, हम काकोरी कांड के क्रांतिकारियों को नहीं छुड़ा पाए, न हम साइमन कमीशन को वापस भेज पाए और लाला जी को भी खो बैठे।
1: लेकिन साथियों, हम कमजोर नहीं हैं। लाला जी की शहादत ने हमें और मजबूत किया है। असेंबली में बम फेंकना तय हुआ समझे,

0: जिंदाबाद।
1: मैं और बटुकेश्वर दत्त बम फेंकेंगे असेंबली में। केंद्रीय असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड सेफ्टी बिल दोनों पास नहीं हो पाए, तो वाइस रॉय के विशेष अधिकार से इसे पास कर दिया गया है। कितनी तानाशाही है सुखदेव।
2: हाँ भगत सिंह, और इसकी घोषणा 8 अप्रैल को होगी।
1: हाँ सुखदेव, यही दिन तय करते हैं, 8 अप्रैल।
3: और मैं एंट्री पास का बंदोबस्त करता हूँ।
2: स्थिति और स्थान का जायजा लेना भी बहुत जरूरी है जयदेव कपूर।
3: यह सब मेरे जिम्मे छोड़ दो।
1: तो तय रहा सब?
0: हाँ तय रहा।

8 अप्रैल 1929 का दिन था, केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया।

0: उन डरता लोगों को पकड़ के लाओ।
1: बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है।
2: हम किसी का नुकसान करने के इरादे से नहीं आए हैं। सरकार को इन धमाकों से भी कुछ समझ में ना आए तो ये पर्चे पढ़ लिए जाएं। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति की हत्या करना आसान है, मगर विचारों की नहीं। हम लाला जी की हत्या का और दोनों बिलों का विरोध करते हैं। हम देश की आजादी के लिए हर तरह का बलिदान देने को तैयार हैं। हम आजाद होकर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। ये रहे हमारे हथियार, हमें शौक से गिरफ्तार करें।
3: भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने गिरफ्तारियां दे दी। इसके बाद 7 मई 1929 को भगत सिंह की मांग के मुताबिक जज साहब के सामने उनके बयान हुए।
4: भगत सिंह

0: तुमने सड़न में बम फेंका?
1: सच है जज साहब, हमने बम फेंके।
0: सार्जेंट हैरी ने आपसे पिस्तौल छीनी?
1: असत्य, हमने भरी हुई पिस्तौल खुद टेबल पर रखी।
0: इट मीन्स तुम मानते हो कि तुमने कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक किया?
1: जी नहीं जज साहब, हमने कोई अपराध नहीं किया। ना हमारा ऐसा कोई उद्देश्य था और ना ऐसा कोई परिणाम हुआ। हमने सिर्फ अंग्रेजी सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध किया है।
0: तो फिर तुमने बम क्यों फेंका?
1: जज साहब, अपनी व्यथा प्रकट करने के लिए दहाड़े हैं हम। हमारे बमों से खाली बेंचों को नुकसान जरूर पहुंचा है, मगर किसी व्यक्ति को खरोंच तक नहीं आई। हमारे बम सिर्फ धमाका करने वाले थे। अगर हमारी नीयत मानव रक्त बहाने की होती तो हम उसमें और तीखे रसायन डालते और उन्हें खाली बेंचों की तरफ ना फेंकते। हमारे बमों ने अपने ध्येय से अधिक कुछ नहीं किया। सरकार को चेतावनी देना हमारी जिम्मेदारी थी, जिसे हमने पूरा किया। जज साहब, हम अपने कार्य के अनुसार दंड भुगतने को तैयार हैं, और हमने अपनी मर्जी से अपने आप को खुद सरकार के हवाले किया है।
0: क्या यही है आपकी क्रांति?
1: जी हाँ, यही है हमारी क्रांति। इसका उद्देश्य है साम्राज्यवाद का विनाश हो, सार्वभौमिक शक्ति का सूत्रपात हो, स्वतंत्रता और लोक प्रभुता की स्थापना हो। इनकलाब जिंदाबाद।

0: अपनी गिरफ्तारी का अंजाम जानते थे भगत सिंह और अपने बचाव के विरुद्ध भी थे, सो उन्होंने अदालत के कटघरे को ऐसा मंच बना लिया जहां से वे आजादी के संग्राम में कूद पड़ने के लिए देशवासियों का आह्वान कर सकें। जेल यात्राएं सहते हुए उन्होंने लंबी भूख हड़ताल भी की। उसी दौरान उन पर सैंडर्स वध का मुकदमा चला तो उन्होंने सच्चाई के साथ इसकी जिम्मेदारी स्वीकार की। स्पेशल कोर्ट में भी मुकदमा किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा तो स्पेशल ट्रिब्यूनल बना। पेश होने के लिए जब लारी में बिठाकर उन्हें लाया जा रहा था तो लारी में देशभक्ति की भावनाएं हिलोरे ले रही थी।
1: शहीदों की चिताओं पे जुड़ेंगे हर बरस मेले,
2: शहीदों की चिताओं पे जुड़ेंगे हर बरस मेले,
1: शहीदों की चिताओं पे जुड़ेंगे हर बरस मेले,
2: शहीदों की चिताओं पे जुड़ेंगे हर बरस मेले।
1: वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा,
2: वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा।
1: कामयाबी पर कभी हिंदोस्ता होगा,
2: उरूजे कामयाबी
3: ऑर्डर ऑर्डर
2: हिंदोस्ता होगा,
1: उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदोस्ता होगा,
2: उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदोस्ता होगा।
3: ऑर्डर ऑर्डर।

0: आशना होगा।
1: No need of nuisance here.
2: न्यायाधीश महोदय, आपको हमारा देश प्रेम न्यूसेंस लगता है क्या? आप अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं करते? हो सकता है मातृभूमि आपके लिए मिट्टी पत्थरों के बेजान टुकड़े हों, लेकिन हम अपनी मातृभूमि को माँ का दर्जा देते हैं। वंदे
0: मातरम,
2: वंदे
0: मातरम,
2: वंदे
0: मातरम।
2: जज साहब, ना आप हमारी भक्ति भावना को मार सकते हैं और ना हम इसे आपके पैरों तले रौंदता हुआ देख सकते हैं। नतीजा जल्द ही हमारे पक्ष में होगा जज साहब।
1: ऑर्डर ऑर्डर।
0: नतीजा तो हमारे हक में ही होगा।
1: ऑर्डर ऑर्डर।
3: इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
1: ऑर्डर ऑर्डर।

0: हमारी देशभक्ति पर एतराज है तो हमें आपके फैसलों पर एतराज है। हम यह अदालती तमाशा हरगिज नहीं देखना चाहते। बहुत से हम अदालत का बहिष्कार करते हैं। इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद,
0: इनकलाब
1: जिंदाबाद।
2: नारे की गूंज न्यायाधीशों को विचलित कर देती है। भगत सिंह के अदालत के पूर्ण बहिष्कार के फलस्वरूप बिना वकीलों, दलीलों और गवाहों के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया।
3: भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी की सजा दी जाती है।
4: इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद,
5: इंकलाब जिंदाबाद।

0: दिसंबर 1930, जेल में रात्रि का समय। भगत सिंह से मिलने आए हैं शिव वर्मा।
1: अरे भगत सिंह, तुमसे मिलने कोई आया है भाई?
2: अरे शिव वर्मा, बेड़ियों के गीत बड़े मधुर सुनाई दिए, आओ गले मिलने।
3: अरे यार, गले मिलने ही तो आया हूँ भगत सिंह, शायद आखिरी बार, शायद आखिरी बार तुम सलाखों के बाहर बाहें फैला दो और मैं सलाखों के अंदर कर लेता हूँ बाहें। पर मिलने की भूख तो रह ही जाएगी दोस्त।
2: हाँ शिव वर्मा, हमारे दिल भी एक साथ ना धड़के, सरकार को खतरा हो जाता है। ले जा रहे हैं ना तुमको दूसरी जेल में।
3: हाँ, चलो मिलने की इजाजत तो मिली।
2: सोचता था क्रांति का नारा देश के कोने कोने में गूंज उठे। और आज इस काल कोठरी में उसकी गूंज सुन रहा हूं। जीवन का कुछ तो मूल्य हुआ।
3: हाँ भाई, इनकलाब का भरपूर जवाब भी तो मिला है, हैं?
2: इस छोटे से जीवन का इससे बढ़कर मूल्य क्या होगा कि ये देश पर कुर्बान हो।
3: हाँ भगत, सही कहा तुमने।
2: सुनो शिव वर्मा, मैं तो मुक्त हो जाऊंगा कुछ ही दिनों में, लेकिन तुम सब इस राह में थक कर बैठ मत जाना। इस क्रांति की लौ को जलाए रखना जब तक देश में आजादी का उजाला ना फैल जाए।
3: हाँ भगत सिंह, मैं क्या, सारा देश याद रखेगा, सारा देश। अच्छा दोस्त, चलूं।
0: 23 मार्च 1931 का दिन आजादी के दीवानों को फांसी पर चढ़ाया जाना था, पर भगत सिंह की निर्भीकता, प्रतिबद्धता और सहजता तो देखिए। भगत सिंह ने अपने वकील प्राणनाथ से लेनिन का जीवन चरित्र मंगवाया पढ़ने के लिए।
4: कैसे हो भगत सिंह?
2: वकील साहब, प्रसन्न हूं। पुस्तक लाया?
4: हाँ, ये लीजिए। भगत सिंह, क्या मैं आपकी आखिरी इच्छा पूछ सकता हूँ?
2: वकील साहब, जीवन में एक ही इच्छा थी कि देश की स्वतंत्रता के लिए जीऊं और मर मिटूं। आखिरी इच्छा भी यही है, फिर जन्म लूं तो भी देश पर कुर्बान होने के लिए।

0: आएगी फसलें बहार, वकील साहब जरूर आएगी, आजादी दूर नहीं है, उम्मीद रखिए।
1: भगत सिंह जी, फांसी का हुक्म हो चुका है, चलिए।
0: रुको, जरा रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, चलिए।
1: हथकड़ियां लगाओ इन्हें।
2: जी साहब।
0: हमारे हाथों में हथकड़ियां ना लगाई जाएं, हम चेहरे भी नहीं ढकेंगे, हम आजादी के दीवाने मौत से खुद हाथ मिला रहे हैं। फांसी हमारे लिए सजा नहीं, आत्म बलिदान है। चलो, दिल से निकलेगी ना वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबुए वतन आएगी।

निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चली होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं, द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी, वेलकम।
2: ओम शांति।
1: वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू।
1: पावरफुल सोल की आप बात कर रहे थे, तो एक तो उसके बारे में मुझे आपसे पूछना था, दूसरा एक लाइन मैंने पढ़ी उसको शेयर भी करना था। लाइन कहती है, ऑथेंटिक पावर इज बिल्डिंग समथिंग इनसाइड ऑफ यू। ऑथेंटिक पावर इज बिल्डिंग समथिंग इनसाइड ऑफ यू विच यू कैन नॉट लूज एंड दैट नो वन कैन टेक फ्रॉम यू।
2: सुपर।
1: विच यू कैन नॉट लूज एंड विच नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू।
2: लुक एट दिस लाइन, ऑथेंटिक पावर
1: और इनसाइड वर्ड है। और अभी तक ये इनसाइड वाला वर्ड जो है ना, मुझे थोड़ा सा हिला दिया। हाँ। क्योंकि मैं पावर और शक्ति हमें बाहर ही देखा ना बचपन से लेके, आप मंदिर में भी जाते थे तो शक्ति तेरे पास है भगवान।
2: हाँ।
1: देवी शक्ति तेरे पास है।
2: हाँ।
1: माँ तेरी शक्ति है, गुरु शक्ति दे।
2: हाँ।
1: गाड़ी पावरफुल, मतलब हर चीज बाहर।
2: और अपने जीवन के लिए भी जब शक्ति देखी, डेफिनेशन ऑफ अ पावरफुल पर्सन जब हमने देखा, तो हमने अपने अचीवमेंट्स में ही पावरफुल को देखा।
1: अचीवमेंट्स, पोजीशन, कुर्सी,
2: वो सारी हमारी अचीवमेंट्स है ना वो। चाहे वो हमारी एजुकेशन है, जितनी डिग्रीज हमारी बढ़ती गई, जितनी वेल्थ एंड प्रॉपर्टी बढ़ती गई, जितनी पोजीशन बढ़ती गई, उसको हमने पावर का शब्द दिया कि दिस पर्सन इज पावरफुल, राइट। अब ये लाइन इतनी ब्यूटिफुल है, ऑथेंटिक पावर। ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन, ट्रू,
1: जो आप कह रहे थे ना, रियल सोल की असली क्वालिटी।
2: क्योंकि जो सत्य, जिसको कहते हैं ना सत्य शक्ति, द ट्रू पावर विच नो वन कैन शेक एंड विच यू कैन नेवर लूज। क्योंकि जो बाकी पावर्स ये हमने अभी देखी कि धन की शक्ति, पोजीशन की शक्ति, आपकी रोल की शक्ति, ये तो हिल सकती है ना कभी भी।
1: कुर्सी भी हिल जाती है, पैसे भी हिल जाते हैं, आदमी की पोजीशन, हेल्थ,
2: इवन फिजिकल पावर अगर हम देखें तो एज के साथ चेंज हो जाती है, वेरिएबल है।
1: बट सिस्टर, अगर किसी को पैरालिसिस हो जाए, क्या गई रही पोजीशन, क्या रहा पैसा, क्या रही हेल्थ, क्या रहा घर का बड़ा, क्या रहा ऑफिस का बड़ा, है ही नहीं कुछ।
2: राइट, तो एनीथिंग विच इज आउटसाइड, जो चीजें बाहर हैं, वो वेरिएबल है, शेक हो सकती है। आज जैसे हम कहते हैं कुर्सी की पावर, तो जब तक कुर्सी है तो वो पावर है। पोजीशन गई, ताकत गई, कंट्रोल गया, दूसरों के ऊपर प्रभाव डालने की जो शक्ति थी वो गई। तो ये सारी जो
1: शक्ति के साथ आदत भी,
2: आदत प्रभाव डालने की औरों के ऊपर, वो आदत नहीं जाती। लेकिन सी दैट इज व्हाई इट्स सो डिफिकल्ट टू गिव अप पोजीशन।
1: अच्छा, मैंने बोला आदत भी गई, वो तो आदत नहीं जाती,
2: नहीं जाती ना। आदत।
1: अब रिटायर्ड जनरल्स होते, आर्मी के रिटायर्ड कर्नल्स होते,
2: पोजीशन जाती है, आदत नहीं जाती, और इसीलिए बहुत डिफिकल्ट होता है।
1: इसलिए बार बार सुनाते रहते थे हमारे, हम उस जमाने में ये था, हमने वो किया था।
2: डिफिकल्ट ना, आप उस शिफ्ट को देखें कि आपकी पोजीशन चेंज हो गई। जो लोग कहना मान रहे थे, कंट्रोल में थे, दे वर बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ पोजीशन, नॉट पावर ऑफ द पर्सन। एक होता है मैं
1: कुर्सी की शक्ति, हाँ, तुम्हारी नहीं।
2: यस, एक है मैं आपकी रिस्पेक्ट के लिए, आपको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ इसलिए आपका कहना मानती हूँ, दैट इज पावर ऑफ द पर्सन।
1: राइट।
2: एक है आपकी इतनी शक्ति है कि आप कुछ कहते हैं उसका प्रभाव मुझ पर पड़ता है एंड आई वॉन्ट टू डू इट। एंड द अदर थिंग इज कि आप पोजिशन में है और मुझे आपका कहना मानना पड़ता है, मुझे मानना ही होगा।
1: और आपके पहले मैं किसी और का मानता था,
2: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट,
1: और आपके बाद मैं किसी और का मानूंगा।
2: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिस दिन आप उस पोजीशन से जाएंगे, मैं आपका नहीं मानूंगी। एंड जिस दिन मैं आपका नहीं मानूंगी क्योंकि आपकी पोजीशन चली गई, या आज भी पोजीशन में रहते हुए मैं अगर कभी नहीं मानू तो उसका इफेक्ट आपकी मन की स्थिति पर पड़ेगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पोजिशन की पावर एंड वो ऑथेंटिक पावर. वो जो आपने पढ़ के अभी सुनाया कि ऑथेंटिक पावर इज समथिंग इनसाइड ऑफ यू, इस लाइन को हमें आज पकड़ लेना चाहिए.
1: ऑथेंटिक पावर इज
2: समथिंग इनसाइड ऑफ यू
1: विच
2: नो वन कैन शेक, नो वन कैन टेक अवे. इट विल ऑलवेज बी योर्स, इटर्नल.
1: मतलब मेरे कोई पैसे ले जा सकता है, मेरी बीमारी हो सकती है, मुझे कुछ भी हो सकता है, लेकिन दैट इंटरनल ऑथेंटिक पावर नो वन कैन शेक और टेक इट अवे फ्रॉम यू.
2: राइट,
1: इट्स इटर्नल.
2: राइट, लेकिन आज क्योंकि हमने उस ऑथेंटिक पावर पे फोकस नहीं किया, एनी वन एंड एवरी वन इज एबल टू टेक इट अवे फ्रॉम मी.
1: मीन्स
2: आज मैंने उसको पावर ही नहीं समझा. पहली बात,
1: उसको क्या पावर नहीं समझे, उसको

0: ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, एक संस्था किसको हम कहेंगे कि पावरफुल है, जिनका प्रभाव अनेकों पर पड़ता है। जैसे आपने कहा ना, एक फोन किया और काम हो गया, मतलब
1: प्रभाव के अलावा दे कैन डिक्टेट टर्म्स,
0: इन्फ्लुएंस है ना, यू आर एबल टू क्रिएट एन इन्फ्लुएंस ऑन अदर पीपल। एक ऑर्गेनाइजेशन को आप पावरफुल कब कहेंगे, जब वो कुछ ऐसा करेंगे या ऐसा करते हैं जिसका प्रभाव, दे आर एबल टू क्रिएट अ चेंज, उसका प्रभाव पड़ता है। अब ये सब चीजों को हमने पावर कहा, ये प्रभाव जो हम औरों के ऊपर डाल पाते थे उसको हमने प्रभाव किया, लेकिन मेरा अपने ऊपर प्रभाव,
1: मेरा अपने ऊपर प्रभाव थोड़ा ही,
0: अभी अगर हम चेक करें कि बाहर के प्रभाव हमें पता है कि क्या होता है, ठीक है, जैसे धन की शक्ति का प्रभाव, इकोनॉमी पावर है, साइंस की पावर है, रिलीजन की पावर है, पॉलिटिक्स की पावर है, ये सब पावर्स हैं एंड पावरफुल शक्तियां हैं, ये धन की शक्ति, विज्ञान की शक्ति, धर्म की शक्ति, राज्य की शक्ति, ये सब शक्तियां हैं। इन सबको शक्ति क्यों कहा गया, इनको इसलिए शक्ति कहा गया क्योंकि इनका प्रभाव अनेक आत्माओं पर पड़ता था। आज धन आ जाए, आपकी जीवन बदल जाएगी, राइट? धन बढ़ता जाता है, आपका जीवन जीने का तरीका बदलता जाता है, तो धन का प्रभाव है आपके जीवन के ऊपर। देश की इकोनॉमी पर, देश का पूरा चलने का तरीका डिपेंड करता है, प्रभाव है धन की शक्ति का। विज्ञान की शक्ति का प्रभाव हम सारा दिन देख रहे हैं, इट हैज जस्ट चेंज्ड द वे वी लिव आवर लाइव्स, इट हैज चेंज्ड इट कम्प्लीटली। धर्म की शक्ति का प्रभाव देखिए, धर्म के नाम पे युद्ध हो जाते हैं। धर्म हमारी बहुत सारी बिलीफ्स और कल्चर्स को इन्फ्लुएंस करता है, मिलियंस ऑफ लोगों की, बिलियंस ऑफ लोगों की एक्चुअली। दैट्स व्हाई इट सेज धर्म कितनी बड़ी शक्ति है। पॉलिटिकल पावर, आज एक लॉ बनेगा देश का, मिलियंस ऑफ लोगों के जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। संबंधों में शक्ति है, एक आत्मा का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, दूसरे का जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। दैट्स पावर ऑफ रिलेशनशिप्स। ये सारी वो पावर्स हैं जो बाहर हैं। आज पावर ऑफ मीडिया देखें कि मीडिया किसी को ऊपर उठा सकती है, मीडिया किसी को नीचे गिरा सकती है, मीडिया पूरी दुनिया का नजरिया बदल सकती है, सोचने का तरीका बदल सकती है। पावर ऑफ मीडिया, पावर ऑफ मार्केटिंग, जब बाहर की ये पावर्स हैं सारी, ये उसी चीज को पावर कहा जाएगा जो इतने अनेक आत्माओं पर प्रभाव डालेगी, एंड जिसका मतलब उसका कंट्रोल है उनके ऊपर, पावर टू इन्फ्लुएंस दैट चेंज। अब एक पावर है हमारे अंदर, पर्सनल पावर, ठीक है। पर्सनल पावर का प्रभाव किस पर पड़ेगा, हमारी पर्सनल पावर का प्रभाव, धन का प्रभाव किस पर पड़ता है हमने देखा, विज्ञान का प्रभाव किस पर पड़ता है हमने देखा, रिलीजन का प्रभाव किस पर पड़ता है, मेरी पर्सनल पावर का प्रभाव किस पर पड़ेगा,
1: मेरे अपने ऊपर,
0: मेरी हर सोच फीलिंग के ऊपर।
1: ओके, मेरा अपना प्रभाव,
0: मेरा अपना इन्फ्लुएंस है ना अपनी एवरी थॉट एंड फीलिंग के ऊपर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माय पर्सनालिटी।
1: थॉट का इन्फ्लुएंस मुझ पे
0: साइकिल में आएगा ना, वेरी ट्रू। पावर ऑफ माई पर्सनैलिटी, दैट्स पर्सनल पावर, पावर ऑफ माई पर्सनैलिटी। जैसे सपोज आप अपनी पर्सनैलिटी को देखिए, ठीक है, एज विल बी योर पर्सनैलिटी सो विल बी योर एवरी थॉट।
1: उल्टा भी हो सकता है ना सिस्टर, जैसे मेरी सोच है,
0: जैसे आपकी सोच थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वैसे आपकी पर्सनैलिटी बन गई।
1: और ओरिजिनल मुझे आप समझाइए कि सबसे पहले जब मैं पैदा हुआ, तब कुछ तो पर्सनालिटी संस्कार लेके पैदा हुआ, उन संस्कारों के अनुसार मेरी थॉट्स भी मिलती जुलती हुई,
0: राइट,
1: पसंद ना पसंद हुई,
0: राइट,
1: कि जैसे जैसे जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते
0: एक पर्सनालिटी बनी ना,
1: बन गई
0: कुछ। अगर जब तक हम उसको चेंज नहीं करते, अभी वो पर्सनालिटी है।
1: मतलब इसको क्लियर कर लेते हैं कि पिछले जन्म से कुछ लेके आया था, अभी कुछ एक्वायर किया, मेल मिला के एक बन गई।
0: पिछले जन्म से लेकर आए, जिस देश में पैदा हुए, जिस वातावरण में पैदा हुए, जिस परिवार के अंदर पैदा हुए, सोशल कंडीशनिंग डिपेंडिंग ऑन आपका पर्सनालिटी बन गई। तो कैसे हुआ, जैसा हम सोच रहे थे वैसी हमारी पर्सनालिटी बन गई। अब जैसी हमारी पर्सनालिटी बन गई, वैसी हमारी हर सोच चलती है,
1: और जैसी सोच चल रही है वैसे कर्म करेंगे।
0: हाँ, तो हर प्रभाव देखो किस पर पड़ेगा। सपोज किसी की पर्सनालिटी अहंकार वाली है,

0: तो उसकी हर परिस्थिति में सोच कैसी होगी? किसी की पर्सनालिटी शांति वाली है तो उसकी हर परिस्थिति में सोच कैसी होगी?
1: सही बात।
0: किसी की पर्सनालिटी कहेंगे ये बड़ी गुस्से वाले, मीन्स पर्सनालिटी कैसी है? गुस्से वाली है। वो गुस्से वाली पर्सनालिटी हर सोच पर कैसे प्रभाव डालेगी? सो वंस दैट पर्सनालिटी गेट्स क्रिएटेड,
1: ये सोच आप स्वयं की कह रही हैं ना,
0: हमारी अपनी,
1: हाँ।
0: फिर उसका प्रभाव औरों पर भी पड़ेगा।
1: अच्छा,
0: मेरा तो पड़ेगा ही ना औरों के ऊपर,
1: बच्चों
0: लेकिन
1: पे या थोड़ा
0: आसपास
1: वीकली
0: जो भी होगा। लेकिन सबसे डीप इम्पैक्ट क्या हो रहा है जो हम देख रहे हैं कि वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो के वॉट ऑल इज पावर, क्योंकि वी नीड टू नो विच पावर कैन इम्पैक्ट वॉट एंड क्रिएट वॉट। तो बाहर की सब पावर्स की हमें नॉलेज है कि उनकी क्या पावर है, वो क्या कुछ को इन्फ्लुएंस कर सकती है और क्या परिवर्तन ला सकती है इस दुनिया के अंदर, वो हमें सारी नॉलेज है। अब सिर्फ ये एक पावर की नॉलेज चाहिए कि ये जो पर्सनल पावर है ये मेरी हर थॉट पर इन्फ्लुएंस करती है, और जैसे जैसे ये मेरी हर थॉट पर इन्फ्लुएंस करती है ये मेरा भविष्य बनाती जाएगी ना। सी राइट नाउ एज विल बी योर पर्सनैलिटी, परिस्थिति आई आपकी उसी अनुसार सोच क्रिएट होगी।
1: करेक्ट।
0: और फिर जैसे आपने अभी कहा, जैसी सोच क्रिएट करेंगे
1: वैसे कर्म करेंगे,
0: वैसा कर्म करेंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल निश्चित कर देंगे।
1: और जो मतलब वो उस फल को डेस्टिनी कहते हैं।
0: डेस्टिनी मतलब माय फ्यूचर ना,
1: तो मैं ही बना रहा हूँ,
0: मैं ही बना रहा हूँ।
1: और सबसे पहले गया वो थॉट पे चला गया, सीड
0: विद माय पर्सनल पावर, दिस इज सो इम्पोर्टेंट।
1: सो फाइनली फ्रॉम पावर टू डेस्टिनी,
0: टू डेस्टिनी,
1: दैट मींस दैट आई हैव द पावर टू चेंज माय डेस्टिनी।
0: एग्जैक्टली, नाउ दिस इज वेरी
1: इम्पोर्टेंट।
0: दिस
1: इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग, मैं सोचा भी नहीं था कि ये बात निकल जाएगी।
0: बिकॉज इट इज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज हम हर एक कहता है मुझे पावरफुल होना है, वो देखो कितने पावरफुल है, मुझे भी उनकी तरह पावरफुल बनना है। क्यों हम पावरफुल बनना चाहते हैं? क्योंकि पावर मीन्स द अबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। लेट से अ सिंपल थिंग कि सपोज मेरा आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो मैंने कुछ कहा या संबंध में कुछ एनर्जी क्रिएट हुई और आपने वो चीज कर दी, ठीक है। सो आई फील आई एम पावरफुल टू इन्फ्लुएंस समवन। वी सी दिस पावर द होल डे। पोजिशन मेरी ऐसी है सपोज कि आज मेरा एक डिसीशन, मेरी एक साइन एक कागज के ऊपर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के 1,00,000 लोगों के जीवन पर प्रभाव डाल देगी, दिस पावर। तो ये सारी पावर्स हमें बाहर दिखाई देती है एंड हम सब पावरफुल बनना चाहते हैं, लेकिन एक्सटर्नल हर एक का रोल अलग अलग है। लेकिन हर एक अगर ये देखे कि मेरी पर्सनल पावर मेरी हर थॉट पर इन्फ्लुएंस करती है, मेरी हर थॉट मेरे कर्म पर इन्फ्लुएंस करती है, मेरा हर कर्म मेरा भाग्य डिसाइड करता है, तो मेरी पर्सनल पावर कितनी होनी चाहिए? आज अगर मैं आत्मा कमजोर हूं, वीक हूं, मेरी अपने पर पावर नहीं है, तो मेरी हर थॉट की क्वालिटी क्या होगी? जिसको हम कहते हैं वीक थॉट, थॉट में पावर ही नहीं है, कितना कमजोर संकल्प क्रिएट किया, कहेंगे ना ऐसे, थोड़ा शक्तिशाली संकल्प क्रिएट करो, कितना कमजोर थॉट क्रिएट किया। तो जब थॉट कमजोर क्रिएट हुई तो कर्म भी कैसा होगा?
1: वो भी कमजोर होगा।
0: भाग्य कैसा बनेगा?
1: कमजोर।
0: सो लेट अस लुक एट दिस ऑथेंटिक पावर, दिस इज वेयर ईच वन ऑफ अस कैन बी पावरफुल। एंड ये शक्ति इटर्नल है, ये शक्ति के लिए हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, ये शक्ति कभी हिल नहीं सकती, ये शक्ति हमारे से कोई छीन नहीं सकता, ये वो शक्ति है, ये है पर्सनल पावर। इससे भी और एक लेवल डीपर अगर हम जाएं, वो है स्पिरिचुअल पावर। एक होती है पर्सनालिटी की पावर जो हमारी हर थॉट बिलीफ पर इन्फ्लुएंस करती है, जिसको हम कहेंगे थॉट पावर, थॉट पावर जैसे कहते हैं। लेकिन उससे भी थोड़ा और गहराई में अगर हम देखें, स्पिरिचुअल पावर जो हमारी कॉन्शियसनेस पर डिपेंडेंट है, वो कॉन्शियसनेस जो आज हम में से मेजोरिटी यूज नहीं कर रहे उस पावर को, वो जो पावर है थोड़ी देर के लिए भी, थोड़ी देर के लिए अभी भी अगर हम ट्राई करें, थोड़ी देर के लिए भी अगर हम उस पावर को कनेक्ट करते हैं, उस पावर में हमारे पास इनर पीस है, उस पावर में हमारे पास कैपेसिटी है अनकंडीशनल प्यार करने की किसी से, उस पावर में हमारे पास कैपेसिटी है अनकंडीशनल एक्सेप्ट करने की किसी भी आत्मा को और किसी भी परिस्थिति को. ये हर आत्मा की स्पिरिचुअल पावर है. एवरी सोल हैज दिस पावर.
1: तो इन ये अगर पावर्स के अनुसार मैं चलूं तो दैट इज कॉल्ड बीइंग शक्ति.
0: दैट इज कॉल्ड बीइंग शक्ति. एंड एवरी सोल हैज दिस पावर एंड वी आर नॉट यूजिंग इट. वी आर नॉट यूजिंग आवर ओन पावर एंड वी वॉन्ट टू यूज पावर्स ऑफ पोजिशन. ये अगर हम इस पावर को यूज करना शुरू करें, हमारी इनर कॉन्शियसनेस जो है, जो हमारा जिसको कहेंगे ना कोर, सी हम कोर है एंड उसके ऊपर लेयर लेयर लेयर लेयर लेयर लेयर लेयर इतनी सारी लेयर्स बनी ना जीवन के अंदर. लेकिन वो जो कोर है, सपोज आप एक एग्जाम्पल लेते, आपके अंदर पावर है हर आत्मा को वो जो है जैसी है उसको एक्सेप्ट करने की. आपके अंदर पावर है. एवरी सोल हैज दिस पावर. ठीक है, अगर आपको उस पावर के बारे में पता नहीं है अपने, ठीक है, वो है बट यू आर नॉट यूजिंग दैट पावर, तो आप किसी की भी छोटी सी बात पर अफेक्ट हो जाएंगे क्योंकि आप चाहते हैं कि वो आपको रिस्पेक्ट किस चीज के लिए करे. फॉर योर पावर ऑफ पोजिशन. हम चाहते हैं उसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं की, उसने मेरा कहना नहीं माना और हम डिस्टर्ब हो गए क्योंकि हम पोजीशन की पावर के हिसाब से बाहर से कंट्रोल और रिस्पेक्ट मांग रहे थे. और उस क्षण हमने ये नहीं रियलाइज किया कि मेरे पास आंतरिक शक्ति कौन सी है कि पावर आई कैन एक्सेप्ट दिस सोल एज दे आर. बट वो कोर इतना डीप है कि बहुत समय से हम उस कोर से बहुत दूर हैं क्योंकि हम पोजीशन के लेवल पे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं. हम पोजीशन के नाम पे रिस्पेक्ट,
1: बैड मैनर्स को भी एक्सेप्ट कर लें.
0: किसी की बैड मैनर्स को क्या करें?
1: एक्सेप्ट कर लें. वो कोई कुछ भी बोल दे और मैं हीरोइन ही, तो दैट इज नॉट पावर, दैट इज वीकनेस. सपोजिंग अ पर्सन इज वेरी, बहुत गाली गलौज करके बात करता है, व्हाई शुड आई एक्सेप्ट?
0: व्हाट शुड यू डू?
1: I don't want to accept that person.
0: Means what should
1: I'll just make him shut up or I'll tell him not to speak to me or tell him to get out or I'll get out.
0: Achha. Means hum us situation se kya karenge?
1: Ya to hat jayenge, usko hata denge.
0: Kinara karenge.
1: Huh.
0: Right? Ab kinara karna matlab samne wale vyakti ki baat ka mujh par prabhav nahi padna chahiye. Kinara kar liya maine apne aap ko usse. Ek hota hai hum physically kinara kar lete hain. कि आप मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे, मैं उठ के चली जाऊंगी.
1: बस
0: उठ के तो चली गई लेकिन मन अंदर, मन
1: वो तो वही है, अभी तक चल रहा है कि ये सवाल ऐसा बोला.
0: किनारा कहाँ
1: किया? इसलिए उठ के गया, मैं इसलिए उठ के चला
0: गया. किनारा कहाँ किया? और एक हो सकता है मैं यही बैठू, आप बोले जो आपको बोलना है और मैंने किनारा कर लिया.
1: दैट्स ऑल्सो रॉन्ग ना.
0: ओके, व्हाई इज दैट रॉन्ग?
1: अगला आदमी कुछ भी बोलता जाए, दुनिया सुन रही है, चार लोग बैठे हैं.
0: ठीक है, अब एक मिनट.
1: और लोग बोलेंगे कि ये एक्चुअली सच्चा होगा, ये जो बोल रहा है अगला आदमी, इसके ऊपर तो इसलिए एक्सेप्ट करके बैठ गया. कि एक आदमी सपोजिंग मुझे बोला कि तुमने चोरी की, ये किया, वो किया, इतना घूस खाया, इतना करप्शन किया, और मैं सुनता जाऊं. और मतलब 10 आदमी जो सुन रहे हैं मेरे आसपास,
0: पहले 10 आदमी को बाद में देखते हैं, पहले अपना और उनका देखते हैं. ठीक है, कि कोई हमें कुछ कह रहा है.
1: बट एक्सेप्टेंस मीन्स कि मैं उसको मैं सच मान रहा हूँ.
0: एक्सेप्टेंस मीन्स आपके लाइन्स, आपका सेंटेंस मेरी मन की स्थिति को टच नहीं कर सकता.
1: रोज मेरे पास चिट्ठियां आती हैं, फलाने क्लब के सेक्रेटरी ने इतने पैसे खा लिए, इस सोसाइटी के क्लब ने वो सेक्रेटरी ने वो खा लिए, इसने हमारे कार्ड्स में चोरी की, इसमें फलाना ये किया, एक दूसरे पे इतना सब कुछ आता है. अगर वो उसको एक्सेप्ट कर ले तो दैट मीन्स हाँ मैं चोर हूँ.
0: एक्शन लेना, सोल्यूशन ढूंढना, डिस्टर्ब होना, बहुत फर्क है.
1: आपका जो शब्द था एक्सेप्टेंस, उसकी
0: एक्सेप्टेंस का मीनिंग क्या है?
1: एक्सेप्टेंस को आप शक्ति कह रहे हैं.
0: एक्सेप्टेंस,
1: और मैं कह रहा हूँ कि एक्सेप्टेंस यहाँ पर कमजोरी है.
0: आपने कुछ मुझे कहा, वो सत्य है या नहीं है वो भी सेकेंडरी.
1: चलो,
0: मेरे मन की स्थिति डिस्टर्ब हुई means I'm not using my spiritual power. I have the power to remain stable. I have. But I'm not using that power. I'm getting disturbed and then working towards the solution. ठीक है, solution चाहे कुछ भी हो. क्या हम उसी सोल्यूशन की तरफ स्टेबल रह के नहीं वर्क कर सकते थे? लेट्स से चलो और भी सिंपल करते हैं,
1: वर्क कर सकते थे लेकिन क्यों करें?
0: क्योंकि हमने पहले देखा पिछले एपिसोड्स में कि हर बार डिस्टर्ब होने से,
1: अच्छा, अपने मन की अशांति से कुछ बॉडी में से केमिकल्स बनते हैं जिससे अपनी हेल्थ भी खराब होती है, अपना भी नुकसान होता है, वातावरण का भी होता है,
0: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरी अपने ऊपर कंट्रोल
1: और मेरी एनर्जी डिप्लीट होती है और मेरा सोल वीक होता है, मैं वीक हो जाता,
0: मैं आत्मा कमजोर हो जाती हूँ।
1: ओके,
0: ये बात नुकसान कितने हुए मेरे, नुकसान कितने हुए मेरे, ये हमेशा याद रखना होगा। हम आज 10 रुपए का नुकसान नहीं होने देते अपना, नहीं नहीं इसमें मेरा नुकसान हो जाएगा, इसमें मुझे फायदा होगा। सारे फायदे और नुकसान तो याद रहते हैं,
1: पैसों के
0: किसी भी चीज का नुकसान और फायदा याद है सर। अपने फायदे और नुकसान, आज एक दूसरे पावरफुल व्यक्ति से भी, कोई जो पोजिशन ऑफ पावर में है उससे भी हम कहते हैं इससे पहचान बना के रखनी चाहिए। क्यों पहचान इससे बना के रखनी चाहिए? पावरफुल व्यक्ति है उससे पहचान बना के रखनी चाहिए और अपनी पावर से पहचान नहीं है। लुक दिस, द मोर आई एम लुकिंग फॉर
1: अपनी पावर की नॉलेज हमको ना स्कूल में मिली ना कहीं क्लास में पता चली, तो हम कैसे करेंगे?
0: अभी यूज करेंगे ना, है कहीं से लानी नहीं है, बनानी नहीं है, क्रिएट नहीं करनी है, सिर्फ यूज करनी है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट दिस इज पावर। That's why you know that line should be our mantra for today. It's like
1: authentic.
0: Mantra, authentic power dhoond rahe na. Authentic power is something inside of you which no one can shake, no one can take away. Agar ye sara din ye mantra hote hain jeevan jeene ke. To kehte na mantra jaap karna hai. Jaap karte raho is mantra ka. To mantra ka jaap karna matlab wo mantra aapka jeevan ka jeene ka tarika ban jaye. Mantra jaap sirf मंत्र जाप सिर्फ एक शब्द नहीं होता है, जिसको हम शब्द का तो उच्चारण कर रहे हैं लेकिन सोच और कर्म में फिर वही कमजोरी चीज कर रहे हैं। मंत्र मीन्स वो शब्द जो हमारे मन को पावरफुल बना दे, थॉट्स को, कर्म को पावरफुल बना दे,
1: जब हम हमारे मन को तार दे।
0: इसीलिए लोग कहते हैं ना मंत्र में शक्ति है, लेकिन मंत्र में शक्ति है मतलब फिर वो मंत्र वैसा हो जो हमें वो शक्तिशाली बना देना। सिर्फ मैं एक तरफ से तो एक शब्द का उच्चारण करती जाऊँ, थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा वहां से तो मैं हो गई रिएक्ट, तो वो मंत्र नहीं था मेरे लिए फिर। तो इसको आज मंत्र बनाते हैं और इसको पकड़ के रखना है। ऑथेंटिक पावर इज समथिंग इनसाइड ऑफ मी, नॉट आउटसाइड ऑफ मी। इसको कोई हिला नहीं सकता, इसको कोई ले नहीं सकता, एंड ये इटर्नल है। जब हम कहते हैं पावर, हम सोचते थे पावर वो जो दूसरों को कंट्रोल कर सके। इस लाइन से हमें समझ में आता है पावर वो जिसका अपने ऊपर कंट्रोल हो।
1: दिस इज ब्यूटिफुल, लेकिन ये थॉट टोटली ऑपोजिट ऑफ माय थिंकिंग है।
0: हमें लगता था पावरफुल वो जिसका लोग कहना माने, पावरफुल वो जो खुद खुद का कहना माने। This is powerful.
1: It's a beautiful way of ending this episode, sister. Powerful वो जो खुद खुद का कहना माने, और आज तक हम समझते आ रहे थे कि powerful
0: वो जिसका दुनिया कहना माने। Powerful हम समझते थे वो जो औरों पर प्रभाव डाले, लेकिन powerful वो जो अपनी सोच पर प्रभाव डाल के अपना भाग्य बदल दे।
1: इस पे मैं डिबेट तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है, समझ में भी आ रही, लेकिन थोड़ा सा और इस पे चर्चा करना चाहूंगा इस पे अगले एपिसोड में। एक छोटा मेडिटेशन कर लें।
0: Sure. Let's sit back. अपने आप को देखें। I the being. I am a powerful soul. आज दिन तक बाह्य शक्तियों का प्रभाव देखा। हर एक शक्ति ने अनेकों का जीवन परिवर्तन कर दिया, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है, द पावर ऑफ माई कॉन्शियसनेस, the core, the inner truth. ये शक्ति मेरी हर सोच, फीलिंग, कर्म और मेरे भाग्य पर प्रभाव डालती है. This is true power, genuine power, which is mine and no one can take it away from me. आज सारा दिन मेरे जीवन का मंत्र है ये. I am a powerful soul. मैं शक्तिशाली आत्मा. मेरी हर सोच, हर शब्द, हर कर्म मेरी चॉइस के. I am in control of myself. Om Shanti.
1: Om Shanti. Thank you so much.
0: Om Shanti.
1: Thank you.
2: External powers are physical power of the body, power of knowledge, role, position, achievement, and wealth. These external powers are variable and temporary. Authentic power is building inner power, which you cannot lose and no one can take away from you. Respecting a person, being influenced by them, and following them is because of power of that person. Having to respect a person and obeying what they say because of their position is not power of the person. It is power of their position. Power means the ability to influence future change. Economic power, scientific power, religion power, political power are powers because they have the ability to influence people's lives. Our personal power influences our every thought, feeling, and karma, and thereby our destiny. Spiritual power is our own consciousness of inner peace and unconditional love. This inner power, when realized, is what gives command of our inner state of being.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: एक बहुत प्यारा इंसान दलित महमूद, मैं बहुत पसंद करता हूँ उनके करीबन सारे गाने, मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। इंसान तो मैं क्या बताऊँ कि शायद ही कोई आदमी मुझे मिला जो दलित साहब के गाने दिल से नहीं पसंद करते और उनको दिल से नहीं पसंद करते।

नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप एकताहित रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का मैं रखूंगा कहां, इस कदर प्यार रखने के काबिल नहीं मेरा दिल मेरी जान। मुझको इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों, मुझको इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों, सोच लो दोस्तों इस कदर प्यार कैसे संभालूंगा मैं तो कुछ भी नहीं। यार प्यार एक शख्स का भी अगर मिल सके तो बड़ी चीज है जिंदगी के लिए। आदमी को मगर ये भी मिलता नहीं, ये भी मिलता नहीं। मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, ये मेरा हक नहीं मेरी तकदीर है। मैं जमाने की नजरों में कुछ भी न था, मैं जमाने की नजरों में कुछ भी न था, मेरी आंखों में अब तक वो तस्वीर है। इस मोहब्बत के बदले मैं क्या नजर दूं, मैं तो कुछ भी नहीं। इज्जतें शोहरतें चाहतें उल्फतें कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, आज मैं हूं जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों कि मेरे कल की खातिर ना कुछ भी रहे। आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो, आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो मेरे कल के लिए। कल कल जो गुमनाम है, कल जो सुनसान है, कल जो अनजान है, कल जो वीरान है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं।

लग जा गले ए लग जा गले दुनिया चले छम छम छम छम छम छम छम ए गर्ल हम तुम पे दिल निसार करता है रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है।

किस्मत छा रही है क्यों रात की स्याही, किस्मत छा रही है क्यों

0: आ मोहिनी, आज हम और तुम दोनों मिलकर रसराज की रंग भरी सुराई में तूफान उठा दें। इससे इतना रस छलक पड़े कि उस जमाने की प्यास बुझ जाए जिसमें हम और तुम जी रहे हैं।
1: हाँ रचो जितने गीत रचना चाहते हो, जब तक रचते रहोगे मैं उन्हें सुर में गूंथ कर नाचती रहूंगी। देखें पहले शब्द थकते हैं या भाव।
2: कारी कारी कारी अंधियारी थी रात, एक दिन की बात, जब सघन गगन से घन गरज उठी, सावन की घटा घूंघट में छुपा कर चपल चपल बिजली की छटा, एक नार करके सिंगार, एक नार तीखी तलवार, या थी वो कटार करके सिंगार, चली उस पार जहाँ थे उसके किसन मुरार, चमक झुम झुम, रमक झुम झुम, चमक झुम झुम।

सनन सनन पवन चले, झनन झनन झांझर बोले, अमृत घोले दिल न डोले, कामिनिया चले हौले हौले, नयन झुके पग न रुके, बेला मिलन की न टले, अचरा ढले दीपक जले, पिया मिलन गोरी चले, छुम छुम छुम छमक छमक, झुम झुम झुम छमक झमक, छुम

गिरे बरसात उठे घन घोर घटा करे शोर पपिया पी है कहाँ मेरा पी है कहाँ कहे गोरी के प्राणों का प्राण पपिया सन में लगन लगी मन में अगन जगी बंद किए दोना नैना उगारे प्यार पुकारे सो प्रीत किनारे चली है वो सांसों की डोर सा

मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं जन नन मोर मुकुट सर कानों में कुंडल कर में मुरलिया

लहराय रही सिगिसात सिगिसात सिगिसात सिगिसात सिगिसात शरमाय रही सिगिसात सिगिसात सिगिसात सिगिसात मुस्काय रही पलकाय रही सिंह।

धुओं पर धूम गई सारे सारे पे गगर या मोहनी मोहन की और ही धुम किता धुम किता धुम किता धुम किता मर गई कृष्ण कन्हैया नट खट ने राधा की कन्हैया थाम लई राधा ने पुकारा राधा ने पुकारा हाय दई कोई आओ सखी कोई आओ सखी फिर हाथ छुड़ा कर बोली हटो नीला फिर हाथ

कैसे समझाऊं, बड़ी ना समझ हो कैसे समझाऊं, बड़ी ना समझ हो।

अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए।

0: गुलगुले भाई गुलगुले, मजे मजेदार बने, मिर्ची मसाले के जोर खूब बने तैयार है, है, है।
1: दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी
2: यो यो यो यो
1: दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी।

0: सुबेदार सुबेदार पीते घुड़ाखू पीते पीते चिलम चली वारे तमाखू तेरे घूंघट में फिक फिक घूंघट में फिक फिक घूंघट में फिक फिक हे हे
1: बोगी बोगी बोगी बोगी बोगी बोगी
2: यो यो यो यो
1: बोगी बोगी बोगी बोगी बोगी बोगी
2: यो यो यो यो
0: देखो चला रे चला रे चला हाय मेरा मन
2: तेरी गोरी गोरी प्यारी प्यारी पांकी चितवन
0: देखो चला रे चला रे चला हाय मेरा मन देखो वो चला रे मेरा मन
1: हे बोगी बोगी बोगी बोगी बोगी बोगी।

जब घुमाया प्यार का ये बल्ला, अरे लैलाओं के टेंट में मच गया फिर तो हल्ला। जो भी गेंद आई तो चौका ही फटकारा, पर होश हमारा